तो सफर लंबा तुझे होने वाली बरसात है फिर साथ अकेली लड़की फिर

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिषमयन पी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। और आज ज्ञान के पीरों से छुआ कर कुछ ऐसी बातों को लाई जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश, हमारा पूरा विश्व ही आज बहुत आगे निकल रहा है। आज अगर हम देखते हैं तो शिक्षा की वैल्यू बहुत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा विषय आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता। कहा जाता है कि शिक्षा से अंधियारा दूर होता है। विद्यार्थी विद्या अध्ययन से पहले प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है, अस्तु मां सद्मय तमसो मां ज्योतिर्मय। कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेता है और समाज का सुशिक्षित व्यक्ति कहलाता है। लेकिन क्या जीवन का अंधेरा मिटा? अध्ययन पूरा करने के बाद जब वह गृहस्थ में जाता है तो सिर्फ प्रार्थना के शब्द ही परिवर्तित होते हैं, बाकी सब तो वही का वही होता है। अब वह मंदिर में जाकर कहने लगता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि इतना समय उसने जो शिक्षा पाई उससे उसके जीवन का अंधियारा मिटा नहीं है, प्रकाश उसके जीवन में आया नहीं है। कभी कभी वह ऐसे भजन भी गाता है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ जी। इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों आंखें होते हुए भी उसे गलत और सही की पहचान नहीं हो रही है। शिक्षा से उजियारा जीवन में आया नहीं है। फिर यदि वह व्यापार के क्षेत्र में आता है तो फिर कुछ धर्मों दान पुण्य के लिए कुछ पैसा निकालता है। वह समझता है कि धंधे में मेरे से कुछ पाप झूठ बेईमानी आदि होते हैं तो धर्माओं निकालने से वे हल्के हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मूल्यों को लेकर विश्वापन भी क्यों है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वो कौन सी ऐसी शिक्षा है जो सचमुच जीवन का अंधकार मिटाए और वास्तविक रोशनी लाए। केवल धन कमाने की रोशनी नहीं, लेकिन मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से कर्म मेरे लिए व समाज के लिए सुखदायी है और किन कर्मों से समाज से जो समाज में हमारी व्यवस्था बिगड़ती है, ऐसी रोशनी ऐसी समझ मिले, वह शिक्षा कौन सी है, उसका स्रोत कहाँ है। वर्तमान शिक्षा की ढांचे अगर हम देखें, हाँ वर्तमान शिक्षा के ढांचे में हमने मानव के लिए उपयोगी सर्व सामग्री पाठ्यक्रम में समाहित की है, लेकिन मूल्यों को लेकर आज भी शिक्षा में पिछड़ापन क्यों रह गया है, यह एक गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं जो सुना फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योति ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपनी आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता। कहा जाता है कि विद्या ददाति विनियम का रस चखा ही नहीं, एक बाइक सवार जो है युवक को अति शीघ्र अपने गंतव्य पर पहुंचना था। रास्ते में चौराहे पर लाल बत्ती को पार करने लगा तो ट्रैफिक पुलिस ने रोका। गुस्से में आकर युवक ने तुरंत पुलिस को गोली मार दी कि मुझे जाने से क्यों रोका गया, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था। यह घटना एक स्कूल के कार्यक्रम में प्राचार्य ने सुनाई और कहा, बहन जी पहले के जमाने में हत्या जैसा घृणित कर्म करने से पहले इंसान उसके बुरे परिणाम के बारे में हजार बार सोचता था कि यदि मैंने ऐसा किया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे जेल हो गई तो आदि आदि। बहुत बार तो परिणाम सोचकर ही वह घृणित कर्म को कैंसिल कर देता था, परंतु आज कर्म करने के संकल्प और उसे कर डालने के बीच का फासला ही समाप्त होता जा रहा है। ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि सुशिक्षित युवा भी बिना सोचे समझे गलत कर्म कर बैठते हैं। आज तो धीरज, सहनशीलता या दीवारों की शोभा मत बढ़ा रहे हैं। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि शिक्षित होकर हमारा अहम कुछ और मूर्ख होता जा रहा है। मैं जब चाहूं जो चाहूं वह करूं, यह प्रवृत्ति सिद्ध करती है कि हमने शिक्षा के फल विद्या ददाति विनियम का रस चखा ही नहीं है। एक बार एक विद्यालय में मूल्यों पर विद्यार्थियों को कुछ सुनाने के बाद जब विद्यालय के संचालक महोदय से मिले तो उन्होंने विचार दिया कि आपकी शिक्षाएं धार्मिक है, इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सर्वथा अनुपयोगी है। अगर कहा जाता है कि अगर ये शिक्षा अनुपयोगी है तो देखा जाता है कि कुछ समय के बाद एक बार एक अखबार में खबर आई कि उसी विद्यालय के वही संचालक महोदय गांव वालों के द्वारा स्कूल में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। अब बताइए विद्यालय के लिए अनुपयोगी कौन सी बातें हैं? तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपनी आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्व जो आत्माओं का धर्म एक है और वह है शांति। जब हम कहते हैं हम धर्म निरपेक्ष है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है, यह बात ठीक है कि दैहिक धर्मों की भीड़ में से किसी एक धर्म के सिद्धांत को हम पढ़ाएं तो विद्यालय में एकता और सामंजस्य नहीं रह पाता, परंतु देर से परे आत्मा का भी तो धर्म है जो सबका एक है, उसे तो अपनी शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य रूप से शामिल किया जा सकता है। जैसे संपूर्ण जगत का मालिक एक है, सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है, धरती एक है, उसी प्रकार सारे विश्व की सर्व आत्माओं का धर्म भी एक है और वह है शांति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को हर समय हर स्थान पर शांति की ही कामना रहती है। जैसे जल का धर्म शीतलता है, वैसे ही आत्माओं का धर्म शांति है। कोई व्यक्ति 24 घंटे शांति में तो रह सकता है, पर 24 घंटे अशांति में रहना असंभव है। आध्यात्मिक शिक्षा की ही हमें क्या लगता है कि सच्ची शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। शांति ही अन्य सभी गुणों की जननी है। शांति और समृद्धि तब आती है जब जीवन में पवित्रता हो। पवित्रता के लिए यह ज्ञान हमारे हर श्वास श्वास में रचा बसा कि हम एक पिता के बच्चे आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। जहाँ भाई भाई की भावना विकसित हो जाती है, वहाँ हिंसा, लूट, काम, क्रोध, लोभ सब रह ही जाती है। हाँ, उसके बिना रह ही नहीं पाते। शिक्षा का उद्देश्य है, मतलब इसका जो उद्देश्य है भी तो यही है ना कि वह समाज को, व्यक्ति को विकार मुक्त बनाए। शिक्षा को तीसरा नेत्र कहा गया है। वेद कहता है नास्ति विद्या सम चक्षु, अर्थात विद्या अद्वितीय नेत्र है। इन दो आंखों से जो नहीं दिखता वह विद्या रूपी नेत्र से दिखता है। विद्यावान व्यक्ति को समाज का सच दिखाई देता है। वह समस्याओं को ऊपर से नहीं, जड़ से पकड़कर समाधान सोचता है। आज की समस्याओं की जड़ है दैहिक दृष्टि, दैहिक आकर्षण। इनसे जो पार ले जाए वही सही शिक्षा है। इस अर्थ में आध्यात्मिक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है, जो भौतिक जगत में रहते भी मानव को बुराइयों से अछूता रहना सिखाती है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसती रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे समीना जी से, जो सिंगापुर से हमारे बीच आई हैं। आप पिछले एक साल से ये प्रोग्राम देख रही हैं और इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं।
1: समीना, आपसे बात करते करते हमें ऐसा लग रहा है कि जिस मिराकल को हम ढूंढ रहे थे, ज्यादातर जब भी हम बात करते हैं, खासकर सचिव निगम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो बात हमेशा करते हैं चमत्कार हुआ। तो अगर हम आपको देख रहे हैं और जिस तरह से आपके जीवन की बातें हमारे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो परिवर्तन जो है वो काफी क्लियर दिखता जा रहा है। अगर हम सिचुएशंस को भी लें, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो आज भी उनसे जूझ रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको गुस्सा आता है, तो आप वो गुस्सा अभी भी अंदर अगर होता भी है तो वो बाहर नहीं आता है, उस तरह से नहीं करता, एंड देन यू अंडरस्टैंड द फ्यूटिलिटी ऑफ इट। आपको लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या क्यों, कोई फायदा नहीं होगा उसका। ऐसे ही सिचुएशंस को अगर हम देखें जब पहले आप जी रहे थे, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, और फिर जब ज्ञान मिला और जब प्रोग्राम के द्वारा ही आपने बहुत कुछ समझा, तो फिर जो वहां एक आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट होके सिचुएशन कैसे बदलते गए, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने
2: मैंने जैसे बहुत सारी फैमिलीज में फ्यूज होते हैं, यू नो, और कभी कभी फ्यूज इतने हो जाते हैं कि यू नो टेबल पे बैठकर रिकंसाइल भी नहीं हो पाते हैं, फिर जाते हैं वो कोर्ट केसेस में। हमारे साथ भी ऐसा ही है, तो इतनी इंटीमेट फैमिली के अंदर ऐसा हुआ, एंड देन यू नो अभी तो कोर्ट में गए। पहले क्या होता था कि जब यू नो हमारे साथ गलत होता था या हमारे यू नो हमें चीट किया गया या जो भी, तो गुस्से के साथ ऑलमोस्ट उस आदमी के लिए और या उन आदमियों के लिए हमारे मुंह से बद्दुआएं निकलती थी कि हमारे
1: गलत
2: यू नो जिस तरह से हमें सफर करना पड़ा एक दिन आप भी ऐसे ही सफर करोगे। That's completely gone. अभी बिल्कुल भी ऐसा एक बार भी हमें नहीं लगता। एक्चुअली हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो बोलेंगे

0: देखो उनके साथ भी ऐसे ऐसे नो आई डोंट प्रे फॉर दैट ऑल्सो उनके साथ भी ऐसा ना हो.
1: बट क्यों? क्योंकि क्योंकि वो राइटियम सा जब होता था जब आपको ये लग रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी होना चाहिए. यू नो वो नेचुरल रिएक्शन उस वक्त हमारा होता था. यू नो टिट फॉर टैट एंड वी यूज टू जस्टिफाई कि ये सही है. तो अब क्या आपको कौन सा वो थॉट है? एक्चुअली हम बार बार इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई एक थॉट है जो ट्रिगर करता है कि नहीं कुछ नहीं होता उसके साथ नहीं होना चाहिए.
0: इट इज बिकॉज अगर मैं इतनी नेगेटिविटी वहां फेंकूंगी तो मुझे ऐसा लगता है वापस वो बूमरैंग होके मेरे ऊपर ही आएगी. मुझे वो करना ही नहीं है. मुझे ना तो किसी को नेगेटिव एनर्जी देनी है ना तो एक्सेप्ट करनी है जैसे मैंने पहले भी कहा. तो अगर मैं इस तरह से किसी के ऊपर मैंने बदवा दी है तो फिर वो वापस टर्न होके मेरे ऊपर भी आ सकते. मुझे ये नहीं करना है. उन्होंने जो किया सो किया. That's a different thing. On the contrary, मैं तो हमेशा blessings उनको भेजती हूँ कि जिस तरह से I have stumbled upon and मुझे ये ज्ञान मिला है और मुझे ये knowledge मिला है. I hope कि somehow or the other उन्हें भी ये knowledge मिले.
1: लेकिन वो अभी भी situation आपके साथ
0: है. Of course, मैं I'm going through it. We are going, my husband and myself, we are going through it. We are going through it. But our mindset has changed.
1: So we just talked about this. Shivani, apni abhi series mein hum ye baat kar rahe the. Ki situations jab aa jati hain, tab hum uske saath ya to hum usko hit karte hain ya hum uske saath beh jate, carried away ho jate hain. So agar hum aaj aapko dekhe, hamare sabhi darshakon ke samne ek live example ye hai.
2: Because our whole series, this series, we were talking on self-management. And humne yehi baar baar discuss kiya ki situation hai, lekin wo mere control mein nahi hai. Like you said, किसी ने कुछ गलत किया और उसका कोर्ट केस भी चल रहा है. नाउ दिस इज अ सिचुएशन एक्स व्हिच इज देयर आउटसाइड. वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. तो आई कांट चेंज. अभी पहले क्या होता था, हम गुस्सा करके और डिस्टर्ब होकर हम सोचते थे कि हम सिचुएशन को किसी तरह से चेंज कर दें, हम उन लोगों को ठीक कर. नाउ आई नो कि देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज इन माई कंट्रोल एंड दैट्स माई रिस्पॉन्स. अब नॉलेज शायद पहले भी थी लेकिन करने की पावर नहीं थी. अब वो अपने अंदर जब शक्ति भरती गई तो वो करना भी इजी हो गया. एंड आई थिंक अनदर रीजन व्हाई इट कम्स फॉर इट इज नाउ बिकॉज प्रोबेबली मनी इज नॉट एवरीथिंग.
0: यस,
2: दैट ऑल्सो मेक्स ऑल द डिफरेंस.
1: एंड यू नो
2: इट मेक्स अ बिग डिफरेंस.
1: पिछली बार जो होता होगा वो अब सारा सारा दिन बैठे रहे कि यूजुअली अगर हम देखें इतनी बड़ी चीज कुछ हो रही होती है जिसपे सब कुछ मेरा दारोमदार होता है, मैं सब कुछ छोड़ के उसी पे बार में.
2: लेकिन सब कुछ मेरा दारोमदार मतलब सब कुछ मतलब क्या?
1: मैंने माना
2: सब कुछ मतलब मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी. अब मुझे समझ में आया कि मेरा सब कुछ मतलब क्या. मेरा सब कुछ मतलब पहले मेरी शांति, मेरी खुशी. तो अगर इट्स नॉट दैट वी विल से ओके ठीक है मेरा सब कुछ आप ये ले जाओ. नो, आई विल डू वट एवर आई हैव टू डू to work on it, to protect what is my right. Lekin at least meri shanti aur khushi to na main us cheez ke liye gawa do na. So I think if you maintain this thing, you will have stability in doing what you have to do again.
0: But also because when you have a relation with the divine, the almighty, jo relation abhi hai, I feel that okay, shayad wo ek darwaza band ho jave ya wahan se nahi aave, लेकिन अपॉर्चुनिटीज वो दूसरी तरफ से भी मुझे देगा ही. ये मुझे कॉन्फिडेंस है.
2: लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी तभी दिखाई देती है जब हम दर्द में नहीं होते.
1: बिकॉज में धुंध में ही
0: बिकॉज वी आर नॉट या बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड इट एंड वी आर सेइंग ओके इफ दिस इज इट देन देयर विल बी समथिंग. यू हैव टू हैव एब्सोल्यूट लाइक यू से अनकंडीशनल लव. आई ऑल्सो से अनकंडीशनल फेथ इन हिम दैट आई विल नॉट wiver from there that he will do only what is right for me.
2: But like what she said, the first step is accepting the situation. And that's what we've been talking, ki situation ko resist nahi karna, reject nahi karna, usse andar aur bhi dwand chalta hai. Pehli cheez hoti hai situation ko accept karna. Now what do I have to do? And then see, this is an example. I mean, everything that we spoke about in all our last episodes, you've just come and shared with your own personal experience.
0: Right. I only am here to talk about myself. That's why I feel that if I'm so ordinary a human being, and if it can happen to me, then there are so many people out there whose life can be changed. Unki zindagi badal sakti, that is for sure, because हम तो बहुत आम इंसान हैं. नाइदर मैं तो ना कोई गुरु हूँ, ना कोई कभी ना मैं कभी रिलीजियस भी नहीं थी. यू नो कुछ नहीं, जस्ट अ वे ऑफ लाइफ जो चेंज हो जाती है.
2: वे ऑफ थिंकिंग जो चेंज हो जाती है.
1: पहला थॉट प्रोसेस
0: जो

0: चेंज हो जाता है एंड वो थॉट प्रोसेस से देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट.
1: समीना, जैसे आपने कहा कि यू हैव नॉट बीन रिलीजियस लेकिन आप प्रेयर्स तो कर
0: ही रहे थे,
1: तो ये जब प्राप्ति हुई, जब आपको परिवर्तन दिखा और डिवाइन के साथ एक कितना खूबसूरत रिश्ता. अब इनफैक्ट आपसे बातें करते करते मुझे लगता है बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो भी उतने ही अभिभूत और शिव बाबा के साथ जो रिश्ता, जो कई अभी भी शायद तलाश रहे हैं या उस तरफ बढ़ रहे हैं, दे कैन फील नाउ.
0: प्रीवियसली व्हेन आई टू प्रे इट वॉज ऑलवेज अ प्रेयर कि मुझे ये चाहिए. एंड जो रटा हुआ हम जो आइदर श्लोक है हमारी जो दुआएं हम जो रटे हुए हैं सब पढ़ लेते और हम मांग लेते हमें ये चाहिए. दिस इज द चेंजेस कि जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते तब हम लोग शांत बैठते, बिल्कुल क्वाइट, बिकॉज हमने तो जो बोलना था वो बोल दिया. उन्हें डिवाइन फोर्स जो हमें कह रहा है वो भी तो सुनना है. दैट ओनली कम्स इन क्वाइट, दैट यू सिट. It is not easy in the beginning. It was only 5 minutes, 10 minutes, but as you become quiet and as you achieve that quietness inside of you, it can now I can almost sit up to 40 minutes, and I'm very shocked at myself because मैं इतनी हिलती हूँ, मैं इतनी फिजिटी हूँ और मैं एक सेकंड बैठ नहीं पाती हूँ. तो मुझे खुद को लगता है कि मैं कैसे इस तरह से 40 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट, वॉट एवर जितना टाइम होता है वो कैसे मैं बैठ जाती हूँ और कैसे मैं इतना ध्यान कर सकती हूँ.
1: और बहुत सुंदर आपने बात कही कि हम प्रेयर्स में अपनी बात तो बार बार कह देते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें शायद पता ही नहीं था कि वहां से जवाब भी तो आएगा. अब जब साइलेंस में इंतजार कर रहे हैं उनका कि वहां से जवाब आएगा,
0: नॉट इमीजिएटली, लेकिन जब माइंड बिल्कुल साइलेंट होता है और कोई थॉट्स नहीं होता है, I'm on the right track or not, but I feel that when your mind is completely unclogged, कुछ नहीं होता है वहां, कोई rubbish नहीं होता है, कोई thoughts नहीं होता है, तब I feel that he is also seeing me clearly. I think मैं भी उनको साफ दिखती हूँ, you know, smoke glass से नहीं दिखती हूँ,
1: क्लैरिटी
0: से वो भी मुझे देख पाता है कि ये है कौन, ये क्या, कौन सी आत्मा है. दिस इज हाउ आई फील.
2: दैट्स बिकॉज द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन हैज गॉन. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. गॉड कैन ऑलवेज सी यू, इट्स जस्ट दैट वी गेट टू सी हिम बेटर नाउ. जो डस्ट थी वो उनके आगे नहीं आई हुई थी, लेकिन डस्ट हैड डेफिनेटली कम इन फ्रंट ऑफ मी, एंड डस्ट इज ओनली माय नॉइज ऑफ थॉट्स. यू नो, जो आपने कहा क्लॉगिंग जो हो जाती है, तो इट्स इधर उधर की संकल्प, थॉट्स, इमोशंस, वो सब है. तो इफ यू आर एबल टू साइलेंस दैट, देन यू आर एबल टू फर्स्ट सी योर सेल्फ एंड देन यू आर एबल टू कनेक्ट टू हिम, एंड देन द आंसर इज डजंट हैव टू कम इमीडिएटली, बट द आंसर कम्स.
0: यस, इन सम आई कैनॉट एक्सप्लेन, बट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर एक इंसिडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ कॉल आ जाएगा. ऑल्सो वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइटनेस, विच ही कीप्स सेइंग, बिकम लाइट, डोंट कैरी बर्डन ऑफ थॉट्स. सो वंस यू बिकम लाइट यू फील ऑल्सो दैट आई फील नाउ दैट आई हैव बिकम, आई हैव, देर आर थिंग्स जो हमारे प्रीवियसली जो हुआ है हमारे साथ बुरा हुआ है, जिस किसी ने कहा है या वॉट एवर हैपन, थोड़ा बहुत तो वो रहता है बिकॉज आई एम सो ह्यूमन, यू नो. बट now I've like you've always said that whatever is not necessary, try and delete it immediately, you know. So I do be conscious about it and say, okay, this is not important.
1: Finish it out, delete.
0: You know, if somebody said something to me also that's hurtful, it's not important, get it out. So you feel lighter, you feel better.
1: Right. So hum apne apne sabhi darshakon ke sath ek baar phir share kare ki hum Samina ji ke sath jo ki khas Singapore se aayi hui hai hamare sath, wo इसी प्रोग्राम के एक दर्शक के रूप में जुड़ी थी, लेकिन अब हमारे परिवार का एक हिस्सा बनती जा रही है, जैसे आप बन गए हैं और हम उनके साथ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. समीना, अगर हम देखें लाइफ में जो परिवर्तन हुआ, एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बात ये भी जनरली कही जाती है जो बहुत से लोग अपने मन में कई बार सोचते हैं कि फैमिली लाइफ के साथ साथ रहते हुए अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते, जैसे अब आप कह रहे हैं कि 40 मिनट्स मेडिटेशन में बैठ रही हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि सारा दिन ना फिर ध्यान में ही बैठे रहेंगे, ये सारा ये अलग ही हो जाएंगे, या मतलब फैमिली से दूर हो जाएंगे. आपका अपना अनुभव ने क्या कहा कि क्या हुआ, मतलब
0: एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिसकंसेप्शन जो ब्रह्म कुमारी के साथ ही है, दैट जो भी उनकी बातें सुनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब यू नो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा

0: नहीं है, बिकॉज मैं माउंट आबू भी गई है, जब मैं वहां से विदाई भी ले रही थी उन सीनियर ब्रदर्स के साथ, दे ऑल सेड गो इन हैप्पीनेस एंड स्टे हैप्पी इन योर फैमिली, नोबडी सेड स्टे हियर, नोबडी सेड कम बैक, किसी ने नहीं कहा कि आ जाओ वापस यहीं पर रहो, ऐसा कुछ नहीं है. एंड यू नो इवन इन रिलेशनशिप्स यू नो अगर देखा जाए तो इनफैक्ट रिलेशनशिप्स उन लोग कहते हैं स्ट्रेंथन करो, ना कि वीक करके तोड़ के चले जाओ. इट्स वो मिसकंसेप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि लोग अगर लोग कोई छोड़ के चले जाते तो दैट इज देयर अप टू देम कि वो उनकी चॉइस है. ये कोई नहीं कहता वहां पे कि आप लोग सब छोड़ छाड़ के वहां पे आ जाओ, और मुझे छोड़ना भी नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली, आई वॉन्ट टू बी विथ माई फैमिली, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट. ध्यान में बैठना, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आर लाइफ. हम लोग चार चार घंटे टीवी देख लेते हैं तो 40 मिनट्स मेडिटेशन में बैठना क्या प्रॉब्लम कोई है? आई डोंट थिंक सो. आई वुड रादर टेक आउट टाइम, दिस इज माई प्रायोरिटी. हम सब अपने लिए वक्त निकालते हैं फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, दिस इज माई प्रायोरिटी. That I want to spend some time. But it's giving me, it's benefited me. So I don't see, I've not heard anybody in the family complain.
1: They will not complain when there's a transformation. यहाँ result दिखाई देगा कि आपके अंदर इतना change आ रहा है, तो they will say it's good. This thing is working for her. तो वो इसलिए फिर मना नहीं करेंगे. But did it clash with your, let's say, religious beliefs?
0: No. Not at all, because I am. There's nothing religious about this belief system or this the way of life that you all are teaching, because it's not telling me to stop being a Muslim. I've not stopped being. I've become a better Muslim, because when I pray with single-minded thought that I am this time with God. So, ulta. ये तो हमें फायदा देता है. एंड इट्स अनदर थिंग दैट यहाँ पे ना कोई मंत्र है या कोई पूजा करनी है या नथिंग, इट्स जस्ट टेलिंग यू अ वे ऑफ लाइफ, दैट्स ऑल. दे जस्ट टेलिंग यू दैट यू कैन मेक योर लाइफ बेटर, दैट्स ऑल वे डूइंग, इज नथिंग रॉन्ग इन दैट यू नो. अगर मुझे कहा जाता कि यू नो अगर आप मंदिर में जाओ ये पूजा करो 10 दिन तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, तो शायद मैं ना करूं, बिकॉज इट इज नॉट माय बिलीफ सिस्टम. बट यहां तो देयर इट डजंट क्लैश विद एनीथिंग, सो आई फील दैट ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स मेड मी अ बेटर मुस्लिम टुडे.
1: बट डिड अदर्स हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? डिड योर फ्रेंड्स फैमिलीज और व्हाटएवर?
0: आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ इज योर पेरेंट्स एंड योर स्पाउस, यू नो. Huh? Those are the two most important people. My mother, she had a little problem because she, उन्हें ये मेरी में mistake थी कि मैंने उनको समझाया नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ. वो समझे कि मैं जब meditate कर रही हूँ तो मैं कुछ जाप कर रही हूँ या ऐसा कुछ. उनको समझ में नहीं आया कि मैं सिर्फ शांत बैठी हूँ. तो जब she understood this, then she also stopped saying anything to me. Of course, my husband, तो beginning से almost from the beginning, he's been with me on this journey. He also meditates. Before he leaves for work and after he, when he comes back, just before he sleeps in the night, both of us, you know, are quiet for that time. That's all. There is nothing more happening. So it's just a way of life. Your thought process is changing and you're meditating. That's all we do. Nothing more. Then let me make it clear, there is no religious things happening anyway.
2: Samina, it has been amazing jab aap sabne jo baat ki aur jo aapka jis tarah ki personality aa rahi hai, you come across as a very very loving person aur jis tarah ki attachments family ke sath rahi hongi aur you know like aap ek mother hain, ek wife hain, ek daughter hain, daughter in law bhi hain, jis tarah se aapke parivar ke bare mein baat hai, to aapka relationship apne pure parivar ke sath kitna strong bindings ka tha jo hum kehte hain, supposedly wo kaisa raha hai?
0: Okay, there was always love, but we always loved and we were attached. This is one very important thing that came up. That you have to love unconditionally, love completely. You know, dil khol ke pyar karo. Lekin attach, thode detached raho. In the sense ke, jab hum bahut zyada attached hota hai, to jab wo insaan girta hai, to aap uske saath girte ho. This is something that I learned, that when the person, जब इंसान गिरता है तो तुम्हें संभलना चाहिए,
2: क्योंकि आप साथ साथ गिर रहे हो.
0: अगर तुम भी साथ गिरोगे तो सब गिर जाएंगे. तो that's happened very many times with my husband, that अगर if he's having a problem, then I don't go down in depression with him. I stay where I am so that I can help him out. There's no point in two of

0: diving into the pool at the same time. So, hame detached in that sense, ki hame stable rehna hai.
1: Lekin aap jo pehle bahut zyada attached hai, to ek kahin na kahin pure parivar ko ye aadat bhi ho jati hai, ki main rohungi to wo roega hi roega, ya main karungi, main problem mein aaungi, to mummy ko problem aayegi na, mummy bhi to problem mein aayegi aayegi. They get so much used to of it. To ab aapke mein jo parivartan aaya, ki aap utne problem mein nahi aate the, कहीं आपके कहीं बच्चों को या हस्बैंड को या किसी को ऐसा लगा कि अब मम्मी मेरी केयर नहीं करते?
0: नो, आई डोंट थिंक सो. इनफैक्ट आई टेल माई मदर दिस बिकॉज हम लोग अलग रहते हैं. मेरी मदर इंडिया में है, मैं सिंगापुर में. एंड शी वरीज ऑल द टाइम. आई सेड डोंट वरी फॉर मी, प्रे फॉर मी, मेडिटेट फॉर मी, सेंड मी ब्लेसिंग्स. आपके वरी करने से मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका प्रेशर बढ़ेगा, मुझे और प्रॉब्लम
1: होगा. मैं हेल्प थोड़ा कर सकती हूँ वरी करना. शी विल यूज टू से कि कैन आई हेल्प, नॉट वरी अबाउट यू.
0: एंड आई सेड डोंट वरी. इफ यू आर कंसर्न्ड, यू नो, इफ आई एम सपोज इफ आई एम सिक ओवर देयर, या इफ आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी विच योर वाइफ, देन सिट इन दैट टाइम एंड सेंड मी ब्लेसिंग्स. यू नो, वो पॉजिटिव मेरे लिए काम करेगा, वो नेगेटिव वरीज मेरे लिए कुछ नहीं करते.
1: लेकिन अब जो आपका बच्चा कभी पेन में जाता है, या आपका हस्बैंड कभी पेन में जाते हैं, पेन किसी भी चीज को लेके, कोई भी थॉट प्रोसेस को लेके, अब आपका रिएक्शन कैसे स्टेबल रह पाता है? यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग वाई वी आर टॉकिंग, बिकॉज यही एक बहुत अभी भी बात होती है कि जैसे ही हम सारी चीजें अपने ऊपर तो कर रहे होते हैं, जैसे ही हमारे अपने पे आने लगती है चीजें, जो हमें समझा होता है वो कहीं ना कहीं यू नो लाइक हमें सोचना पड़ता है उसके ऊपर.
0: नो, एक्चुअली पेन के साथ ही, बट स्पेशली बिकॉज बोथ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग ओवरसीज, तो जब वो पास नहीं होते हैं, दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट उसके साथ प्रॉब्लम में वो भी चले जाते हैं. ओ माई गॉड, अभी क्या होगा, ऐसा हुआ वैसा. आई एम कंसर्न्ड, यू नो, इट हैसल्स मी बिकॉज दे आर माई चिल्ड्रन. यू नो, आई हैव ब्रॉट देम इनटू दिस वर्ल्ड. But I will first think, now what should we do? You know, there's no point in reacting immediately. But now ye situation hai, abhi karna kya hai? You know, so in fact it works out more positively, because if you go in the trouble with them, then you are not helping them, neither you're helping yourself. But if you become a little bit detached and think, now how should we handle this, then I think you can give them more. I think jo results nikalte hai usme se, they are more positive. And if I have really some situation jahan I don't know an answer, mujhe pata hi nahi ki what I should do, ye bhi theek lag raha hai, wo bhi theek lag raha hai, I really don't know what to choose, then I will leave it to the divine. I just sit down in meditation. I said, jo bhi wahan se jawab aayega, jo bhi situation banegi, I am going to accept, because I cannot control this. This is beyond me. And whatever works out, it usually works out okay.
1: Fine. Finally, it's the best.
0: Finally, it works out okay. Yes. But then such a big example of detachment. Lekin wahi humne program pe bhi kitni baar discuss kiya ki jab hum detachment theory mein डिस्कस करते हैं तो जो फर्स्ट एक इमेज आता है डिटैचमेंट का, दैट लुक्स लाइक अ वेरी रूखा पर्सन, यू नो, जिसको बिल्कुल कंसर्न नहीं है किसी के लिए. एंड इवन नाउ स्पिरिचुअलिटी डिटैचमेंट, दीज टू वर्ड्स गो हैंड इन हैंड. यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल फील कि स्पिरिचुअल मार्ग पर जाएंगे तो हम लोगों से डिटैच्ड हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट वी बीन शेयरिंग अगेन एंड अगेन, कि लोगों से नहीं डिटैच होंगे, परिस्थिति और लोगों के प्रभाव से डिटैच हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस से डिटैच हो जाएंगे, और इन्फ्लुएंस से डिटैच होंगे तो दर्द में नहीं आएंगे, स्टेबल रहेंगे, और स्टेबल रहेंगे तो फिर उनकी आप हेल्प कर सकते हैं. एंड देन यू हेल्प देम टू कम आउट ऑफ पेन. ऑल्सो बिकॉज अटैचमेंट समटाइम ब्रिंग्स पोजेसिवनेस. इट्स एन ओनरशिप, यू नो.
1: And you don't own anything.
0: Actually, you know, you can't own your husband, you can't own your children. They're there because they love you. That's all. So if they want to go away, I will not be able to help that. They will go away anyway. But if they love me honestly, then they will be with me. There's no question about that. And for me, this is more important.
1: That means the relationship should be, you know, कि हम स्नेह का एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज कर रहे हैं. सो इवन इफ दे गो अवे, लेट्स से दे जस्ट गो ऑन देयर ओन एंड देयर नॉट देयर, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज चिल्ड्रन गो अवे वंस दे ग्रोन अप, द पेरेंट ऑन द अदर साइड इज जस्ट इन पेन. अब वो मेरे साथ नहीं है, अब मेरा क्या, अब मेरी वो परवाह भी नहीं करते हैं, क्योंकि यू आर यूज्ड टू दोज चिल्ड्रन जस्ट रनिंग अराउंड यू.

0: for about 15, 20 years, and you are their center of living. And aapki puri jeevan wo unke around revolve karti hai. And suddenly, you're that identity. Sara problem hota hai identity crisis ka. Ki I am a mother. So wo wali identity suddenly crash ho jati hai. Ki there is no one running around me and looking up to me for everything. And then we say, ab to mere paas koi bhi
1: nahi hai.
0: Ab mere jeevan ka.
1: No, on the contrary. This is the time. This is the time that I feel it's a new, everything is new. You have to keep on seeing it that way. So, okay, we had a very good time with them and they're growing up. They were with us. Now they've gone off. Now it's a relation that I'm going to work on with my husband, that we do things together. This is a new thing. And when the kids come back and they want to stay back with us, that will be a new thing. So you just take life as it comes. Let the flow just be there. Wonderful. Don't resist the flow.
2: Very good.
1: Change.
2: Good. Wonderful. But it was amazing to have you with us. In fact, Sister Shivani, ye jo hamara ek prayas tha aur ye hua ki Sameera ji yahan thi aur Singapore se yahan aayi hui thi. आप सबके साथ और हमारे साथ भी ऐसा लगता है कि परिवार के हम सदस्य बैठ के बातें कर रहे हैं. और एक बार मुझे किसी ने कहा था कि मुझे याद है कि एक वो राइटर्स की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हमें आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है. वो बहुत बड़ी राइटर थी. उन्होंने कहा कि मेरे लिए पहले ये बहुत मुश्किल था ये सोच पाना कि दो औरतें बैठकर बात कर रही हैं और वो बातचीत आधे घंटे तक कर रही हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बैठ के देख सकती हूं. लेकिन आज आप लोग हमारे परिवार का, हमारे ड्राइंग रूम का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गए हो. तो हम आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि ये परिवार इतना बढ़ता जा रहा है, हमें आपने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, थैंक यू सो मच. लेकिन ये परिवार शिव बाबा का है, परमात्मा का परिवार है. जितना बढ़ता जाएगा, जितने लोग और जुड़ते जाएंगे, उतना ही प्यार बढ़ता जाएगा. इनफैक्ट उसे शिवानी, इनफैक्ट इसी को हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं. जैसे समीना जी आज हमारे साथ आई, अगर बाकी लोग भी जो शेयर करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे कि हाउ विल इट हेल्प, यू नो व्हाट विल रियली हैपन.
0: एक्चुअली आई थिंक इट्स वेरी गुड इज वन कि अगर जैसे आज समीना जी हमारे साथ हैं, इट वुड बी नाइस कि और भाई बहने भी अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी यात्रा, अपना परिवर्तन और अपना अनुभव औरों के साथ शेयर करते हैं, तो वन द फर्स्ट पर्सन हु बेनिफिट्स इज द पर्सन ऑन दैट सीट. सी वंस यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट जस्ट गोज थ्रू यू ऑल ओवर अगेन. तो जब आप शेयर करते हो, वो पहले आपके अंदर पक्का हो जाता है. एंड दूसरा, आपसे आज लाखों लोग प्रेरणा लेंगे. Many people, because they will see her and they will say, if she can do it, I can do it. You know, and that becomes, you know, so you become the source of inspiration for millions of people today. And इसीलिए हम शायद इस प्रोग्राम के माध्यम से अब अपने सारे भाई बहनों को इन्विटेशन देते कि मोस्ट वेलकम, प्लीज कम ओवर. हम सबसे भी मिलने का, हमें भी उनसे मिलने का चांस मिलेगा. और उनके द्वारा वो अगर अपना एक्सपीरियंस औरों के साथ शेयर करते हैं, आई थिंक द फैमिली विल जस्ट कम क्लोजर एंड क्लोजर. इट विल बी अ वेरी गुड जर्नी.
2: जितनी बड़ी होती जाएगी, उतने और क्लोज भी होते जाएंगे. तो समीना, थैंक यू सो मच. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. शांति शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत में आप भी रहे. और बहुत वही बात की ऐसा लगता है कि हम कभी रुके नहीं और कभी बिछड़े नहीं. हर बार ये लगता है जब भी हम ये यहाँ से भी विदा ले रहे होते हैं. थैंक यू सो मच एम शांति. तो जो भी दर्शक या परिवार के सदस्य इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि ईमेल पर हमें अपना अनुभव लिखकर भेजें कि क्या आपने अनुभव किया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा. और आप अपना छोटा सा एक परिचय भी हमें भेजें ईमेल पर, तो फिर हम आपको वापस कॉल बैक करेंगे. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-996-355, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. अब एक निगम ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में बहुत सी और बातें करते रहेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में। कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खास जिया करते हैं। कोशिश हमारी ये है कि जीवन के हर पल को उत्सव के रूप में जिए, लेकिन कई बार मुमकिन नहीं हो पाता। कई मोड़ ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, खासकर तब जब हम विक्टिम्स बन जाते हैं। डिप्रेशन की इस जो पूरे एस्पेक्ट पर हम बात करते आ रहे हैं, उसमें हमने विक्टिम्स के ऊपर बात की थी कि किसी हादसे के अगर हम शिकार हो जाते हैं तो किस तरह से डिप्रेशन का एक पूरा दौर चलता है, उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कार्मिक थ्योरी भी काम करती है, और कहीं ना कहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट का जो पूरा एस्पेक्ट है वो भी काम करके हमें उस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकाल सकता है। आज इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति। हमने डॉक्टर पटेल कई तरह के विक्टिम्स के ऊपर बात की थी पिछली कड़ी में, अगर हमें याद हो देखें तो हमने इनफैक्ट रेप विक्टिम्स के एस्पेक्ट को भी लिया था कि किस तरह से माफ करके फिर ही हम भूल पाएंगे और भूल के जिंदगी को आगे बढ़ाना है। आज हम शुरुआत करते हैं एक मेल से। सिस्टर शिवानी, इतने मेल्स आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो टच कर रही हैं, एहसास हो रहा है। एक ये मेल आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ये चाहती है कि नाम आप ना लें मेरा, लेकिन ये कह रही है कि मैं पिछले 20 सालों से मैरिड हूं और कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम चल रही थी हस्बैंड से। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि हस्बैंड जो है वो क्यों मुझे विक्टिमाइज करते थे, क्यों मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे, जबकि हमारी लव मैरिज थी, हम एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते थे, वो उनके फैमिली फ्रेंड थे। और कुछ वक्त पहले ही उन्हें ये बताया है उनके हस्बैंड ने खुद कह के कि ये जो लेडी है इनके फादर ने बचपन में या जो भी जिस भी उम्र में ये मिले होंगे, 12th में होंगे, इनके हस्बैंड को विक्टिमाइज किया था। ही वॉज अब्यूज्ड बाय हिज फादर इन लॉ। इट वॉज अ मेजर शॉक फॉर द गर्ल ऑल्सो, फॉर दिस लेडी ऑल्सो। एंड शी सेज कि अब मैं इतने डिप्रेशन में हूं, मेरे को अपनी पिछले 20 साल की जिंदगी भी याद आती है कि मैं किससे गुजरी कि, और मेरे हस्बैंड भी अगर इससे गुजरे तो वो बहुत पेन में गुजरे। एक तरफ मेरे फादर हैं, एक तरफ मेरे हस्बैंड हैं, एंड मैं क्या करूं, इतना मेजर डिप्रेशन मुझे सीप इन कर गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं विक्टिम हूं, मेरे हस्बैंड विक्टिम है, या कौन विक्टिम है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
2: कहीं इतना मल्टी फैक्टोरियल इनफैक्ट ना, कहीं इश्यूज को देखना पड़ेगा इसमें। एक तो जो उनके हस्बैंड है उनकी पर्सनालिटी डिफेक्टिव, मे बी बिकॉज ऑफ अब्यूज, लेकिन पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं वो परवर्जन आया है कि जिसके कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब ये महिला को क्या करना चाहिए, रादर नो शी हैज अ गुड सिचुएशन इनफैक्ट, कि हस्बैंड के प्रति एक सिंपैथेटिक अगर एटीट्यूड हो कि भी उनके सामने ऐसा व्यवहार हुआ इसके कारण उसके नेचर में ये बातें आ गई, और साथ साथ में भल जो भी हुआ है उससे तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, फादर की जो टेंडेंसी थी तो उसके बारे में ज्यादा सोच करके डिप्रेस होने से फायदा नहीं है, उल्टा इस सारी सिचुएशन को कुछ हद तक एक्सेप्ट करे, हस्बैंड के प्रति एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड वास्तव में करे, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखे, उसके साथ डील करे। उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है, जो उसके हस्बैंड है उन्हें अगर ठीक से काउंसलिंग कराया जाए तो सारे सिचुएशन का एक पॉजिटिव आउटकम हो
1: मुझे लगता है कि लेडी से ज्यादा शायद हस्बैंड को ही बातचीत की।
2: हाँ, बात नहीं, लेडी को भी जरूरत है, ये नहीं उसको जरूरत नहीं है, बिकॉज नो शी माइट हैव अ डिफरेंट गिल्ट भी हो सकती है, मेरे फादर ऐसे, नो दैट गिल्ट फीलिंग कैन बी देयर, शी माइट हैव अ फीलिंग ऑफ रिवेंज ऑल्सो, मेरे हस्बैंड ने

0: पहले क्यों नहीं बोला, 20 साल पहले बोल देते तो हम उसको रिजोल्व कर लेते ठीक प्रकार से. तो लाइक नो शी ऑल्सो नीड गुड डील ऑफ कॉन्फिडेंस.
1: फीलिंग ऑफ हेट्रेड ऑल्सो फॉर द फादर
0: इज पॉसिबल. या फादर के प्रति हेट्रेड
2: एक्चुअली वही क्या अल्टीमेटली शी शुड एक्सेप्टेड दैट इट कैन बी इट माइट बी अ कार्मिक डेथ समवेयर.
1: नहीं वो तो है ही, मतलब उसके बिना तो ऑब्वियसली वो हुआ ही नहीं है. वो तो है ही एक कार्मिक अकाउंट, लेकिन अब उसको कैसे यू नो सेटल करना. एक होता है हमारे साथ कुछ होता है वो एक हमारा कार्मिक अकाउंट है, एक है हम एक कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं, दूसरा होता है हम नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते जाते हैं. यू नो दिस इज वेरी डीप. हमें ये नहीं पता चलता कि कब हम एक पहले किसी अकाउंट को सेटल कर रहे हैं या हम एक नया अकाउंट अब क्रिएट कर रहे हैं जिसको फिर हमें आगे जाके सेटल करना पड़ेगा. तो जो भी हमारे साथ बाह्य परिस्थिति आती है, सपोज दिस और एनीथिंग, इट्स अ कार्मिक अकाउंट विच आई एम सेटलिंग. लेकिन अब उसको जब वो सामने मेरे सिचुएशन आती है, अब मेरे अंदर किस तरह की थॉट्स जेनरेट होती है अपने प्रति और दूसरे व्यक्ति के प्रति. जैसे भाई साहब ने कहा कि गिल्ट फीलिंग जनरेट हो सकती है, हेट्रेड फीलिंग, तो इस तरह के फीलिंग्स का अब निर्माण होना दूसरे के प्रति, ये एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट हो रहा है. यू नो तो अब अगर मैंने किसी के प्रति हेट्रेड की फीलिंग जनरेट की, फिर उसको भी मुझे सेटल करना पड़ेगा आगे. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी से दैट वी आर सेटलिंग अ कार्मिक अकाउंट, दैट मीन्स द माइंड शुड बिकम still, you know, still. That's why we said forgive and forget, because forgive and forget ही एक साधन है जिससे the mind can become still. कोई एक नई और energy account नहीं create हो जाए सामने वाले व्यक्ति के साथ. And the husband should also understand that it's not the wife's fault. ये सबसे बड़ी बात है कि भले वो ठीक है उनकी बेटी है, लेकिन फिर भी two different individuals. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई कमजोरी थी तो वो इसका दोष नहीं है. ये भी नहीं है कि इसके अंदर भी कोई कमजोरी है. यू नो सो डोंट कनेक्ट द टू. ये जो उन्होंने किया कि इतने साल किसी और के लिए अपने अंदर भरी हुई नफरत उनके ऊपर निकालते गए. फादर के लिए भरी हुई नफरत अपने अंदर, उसको निकाल नहीं पाए, उसको चैनलाइज कर दिया तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया.
2: यहाँ यही बात सामने, ये एक इससे जुड़ी ये बात निकलती है कि जब चाइल्ड अब्यूज होते हैं तो दे डोंट इवन रियलाइज यू नो हाउ लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट उस पूरी जो इंसिडेंट हुआ है उसका, क्योंकि कहीं कोई आउटलेट नहीं मिला. अब चाहे वो बड़ा हादसा था जो हमने पिछली बार बात की थी कि भाई कोई रेल एक्सीडेंट हुआ, कोई आग लग गई, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक आउटक्राई भी हुई, कहीं हमारी आउटक्राई हुई, हमें एक आउटलेट मिल गया, हमने रोए और सब कुछ हो गया, निकल गया, गुस्सा भी कर लिया. इवन रेप विक्टिम ऑल्सो हैज यू नो वन वे वन आउटलेट इज लाइक मेरे साथ गलत हुआ है. चाइल्ड अब्यूज में तो ये देखा गया है कि वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है. इवन बच्चा जो है वो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता खुद को भी कई बार कि मेरे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेशन में भी कई बार होता है. व्हाट टू डू अबाउट दैट.
0: नहीं नहीं मेजर तो क्लोज रिलेशन में ही होता है. नहीं इट हैज बीन सीन नो मे बी मोर देन 75% वो क्लोज रिलेशन ही है. सबसे पहले तो बच्चे को ये ट्रेन करना कि बेनो एक सिंपैथेटिक लविंग टच एंड अब्यूजिव टच व्हाट्स द डिफरेंस. बच्चे अधिकतर रिकग्नाइज भी करते हैं. इवन वी नीड टू ट्रेन हैम. वह एक बात. दूसरी बात जो बच्चों में दिक्कत आती है कि पेरेंट्स कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते. मैंने ऐसे कई केसेस डील किए. समझो भी मामा ही अब्यूजिव है, भी माँ का ही भाई, और बच्चे ने जाके माँ को कहा तो माँ एक्सेप्ट ही बोल, फिर बेटे को चांटा लगा दिया कि भी मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, और तो बच्चा एकदम ही शांत हो जाएगा और पहले से ही डर होता है. तो इसलिए बच्चों को सुनना, उस बात को ठीक से एनालाइज करना कम से कम कि भी क्या बात है. और अधिकतर नहीं तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा. बड़े शायद हो सकते हैं कि और कोई फायदे के कारण कुछ झूठ बोले, किस पर ब्लेम लगाए, परंतु बच्चा ऐसे ही ब्लेम नहीं लगाएगा.
2: तो वही तो उस बात को सीरियसली लेने के डरता भी है वो बच्चा जो है. उसमें वो हिम्मत ही नहीं है कि वो वहां तक जा पाएगा बच्चा, माँ तक भी जा पाए. सो वो जो पूरा इंसिडेंट है, माँ बाप को कितना केयरफुल ये भी रहना चाहिए कि कहीं मेरा बच्चा चुप तो नहीं हो गया. कई बार ये देखा गया है कि वो बच्चा चुप हो जाता है.
0: हाँ जी.
2: तो डज इट रियली हेल्प उनसे कंटिन्यूस पूछते रहना
0: या तो उनके साथ ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करना कि बच्चा ओपन रहे. जो भी बात है उसकी वो माता पिता के सामने शेयर करे, न केवल अब्यूज की. स्कूल में भी कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम है

0: चीजें हैं, अगर बच्चे ओपन हैं, इफ यू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, तब वह सचमुच कहेगा उन बातों को.
1: एंड वंस इट्स एक्नॉलेज्ड, सिस्टर शिवानी, ये बात पता चल गया कि बच्चा अब्यूज से गुजर गया है, इंसिडेंट हुआ है, अब वो बड़ा होके किसी और कॉम्प्लेक्सिटी जो ये आई है, और भी कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज अब सामने आ रही हैं कि जो मेन रीजन हैज बीन कि वो अब्यूज रहा है बच्चा बचपन में, तो वो उसको किस तरह से काउंसिल करके, किस तरह की उसको, क्योंकि वो इंसिडेंट जो है वो कहीं घाव की तरह, एक वो रिश्ता हुआ घाव की तरह ना रह जाए, उसे वो भर के, वो फॉरगिव एंड फॉरगेट, इतने छोटे बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं होगा, उसके साथ किस तरह यू नो उसमें पूरा काउंसलिंग या पूरा सेल्फ टॉक या पेरेंट्स की टॉक हेल्प करे,
2: क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट में सेल्फ एस्टीम एकदम लो हो जाएगा. यू नो इट कुड बी दिस काइंड ऑफ अब्यूज, इवन एनी अदर काइंड ऑफ अब्यूज ऑल्सो, इवन जैसे कहा कि रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड का, कई बार वो एक फिजिकल अब्यूज होता है, कई बार वायलेंट अब्यूज होता है. अब्यूज कितने तरह से हो सकते हैं, तो वो एक चाइल्डहुड में इतना एक सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, तो वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करेगा, और वो हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर निकल कर आएगा, बिकॉज दैट इज माई पर्सनैलिटी नाउ. तो इस तरह के केसेस में आई थिंक उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम को वापस, यू नो, उसको, और ये पेरेंट्स ही कर पाएंगे वो रोल डेवलप, यू नो, करेंगे कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज, यू नो, इट वॉज समथिंग एल्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, यू नो, यू आर वेरी फाइन, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें, ये सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन उसको वो ना सिंपथी नहीं लेकिन एम्पावरमेंट. सिंपथी भी कई बार फिर दूसरे को बहुत, यू नो, विक्टिमाइजेशन की फीलिंग में ले जाती है, और उसको वो सिंपथी अच्छी लगने लग जाती है, बट सिंपथी विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन. आपको एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी उसको, हम जितना वो फील करवाएं, एंड नॉट आर्टिफिशियली. पेरेंट्स को भी पहले ये कन्विक्शन होना चाहिए कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड. कई बार हम दूसरे को एम्पावर करते हैं लेकिन बहुत आर्टिफिशियली, यू नो, सिर्फ बोल से. बोल कभी एम्पावर नहीं करते हैं, बोल तो सिर्फ एक माध्यम है. जो एम्पावर करते हैं वो है थॉट्स. कई बार हम ये सोचते हैं हमने तो दूसरे को अच्छा ही बोला, उसकी विशेषता कोई हाईलाइट किया, लेकिन अंदर सोच क्या थी. यू नो, जो एम्पावर कर रहा है वो है एनर्जी, कि हम क्या वाइब्रेशंस. अगर मैं आपको कहूं नहीं आप बिल्कुल ठीक है, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, अंदर से सोचो बेचारी कनुप्रिया उसके साथ क्या क्या हो गया, आई कैन नॉट एम्पावर यू,
1: बिकॉज वो झूठ है ना.
2: झूठ भी नहीं है लेकिन मेरी थॉट वो नहीं है. मेरी थॉट फिर भी है कि आप बहुत बेचारे हैं आपके साथ, यू नो. सो आई विल हैव टू थिंक वॉट आई एम सेइंग, यू नो, एंड से ओनली दैट. सो फर्स्ट पेरेंट्स को अपनी थॉट्स को बिल्कुल एम्पावर करना पड़ेगा, फिर वो एम्पावरमेंट शायद बहुत इजीली हो जाएगी बच्चों की.
1: आर्टिफिशियल बोल दैट इंसिडेंट,
2: इंसिडेंट को रिपीट नहीं करें.
0: आई थिंक इंसिडेंट नहीं रिपीट करे तो ठीक है, लेकिन जो आपने पहले कहा कि यू आर नॉर्मल, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, नो, you are absolutely healthy, ये जो कुछ चीजें हैं वो रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस में गया है.
2: रीअफर्म करते जाएंगे.
0: सबकॉन्शियस में क्या जाता है, जो चीज इमोशनली होती है वो सबकॉन्शियस में जाती है.
1: डॉक्टर पटेल, यहाँ बच्चे के साथ किस तरह से पेरेंट्स डील कर रहे हैं ये बात तो हमें समझ में आई, ये तो बहुत जरूरी हो जाता है. हाउ अबाउट डीलिंग विद द, यू नो, द पर्सन हु हैज कमिटेड इट, बिकॉज ही इज अ रिलेटिव, ही और शी, हूएवर, आई एम से द पर्सन इज अ रिलेटिव, वेरी क्लोज रिलेटिव, रोज का इंटरेक्शन है, वॉट टू डू विद दैट. एंड अगर वो लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, सो बच्चे का उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप क्या दोबारा डेवलप किया जा सकता है, करना चाहिए, या वॉट टू डू अबाउट दैट, बिकॉज दैट्स अ बिग
0: डायलेमा. फर्स्ट स्टेप नो इज टू पनिश दैट पर्सन. इट कैन बी इंटरनल पनिशमेंट इवन, नो, समटाइम यू मे लाइक इट सच एंड क्लोज रिलेशन कि आप पुलिस कंप्लेन करो, ऐसा नहीं करना चाहो, लेकिन इंटरनल एक स्ट्रांग पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि उनको लेसन मिले.
1: वो पनिशमेंट कैसे हो सकती है, मतलब अगर हम सोचें तो सच में, जैसे मामा की बात ली आपने, तो क्या पनिशमेंट हो सकती है, कैसे करें पब्लिकली उन्हें?
0: पब्लिकली तो नहीं, इंटरनली परिवार में भी एक स्ट्रांगली बताया जाए. इवन अ फिजिकल पनिश वी कैन बी बीटन ऑल्सो, आई थिंक कुछ एक्सट्रीम है तो इनफैक्ट नो, यू शुड नॉट हेजिटेट.
1: तो देन
0: पुलिस कंप्लेन करने में भी फिर तो हेजिटेट नहीं.
2: वो व्यक्ति भी मेंटली स्टेबल नहीं है ना उतना, तो ये पनिशमेंट से रियली बहुत बेनिफिट होगा,
0: लेकिन रियलाइजेशन तो होगा ही.
2: एक रॉन्ग
0: अगर लगता है तो फिर ट्रीटमेंट भी करनी. मतलब डिफरेंट केसेस में डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, कि आपको लगता है कि उनमें भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न केवल डिप्रेशन, पर्सनालिटी ड्रॉबैक्स है, सिजोफ्रेनिक

0: इसलिए माता पिता नर्वस हो रहे हैं। लेकिन जब अंदर में सारी बात होने लगी तो उसको ये हुआ, उसने हिम्मत करके पूछा। जब पेरेंट्स ने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है, तो आपने भी पढ़ा होगा
1: कि उम्र में काफी
0: एक ने किया तभी दूसरों में भी हिम्मत आई
1: और वो पब्लिकली मांगने की हिम्मत खत्म हुआ। यू नो, जो अथॉरिटी से मांगा जाता था वो कम से कम खत्म हुआ कि ये कोई आपका अधिकार नहीं है। यहाँ एक और बात ना हम ये जाना चाहिए,
0: तो यहाँ भी करना चाहिए अब्यूज में भी। भले मेरे रिलेटिव भी है तो इससे अब्यूज भी हो तो 5-10 किस्से हो गए तो वो टोटली स्टॉप होगा।
1: कहीं ना क्योंकि जो जिसने अब्यूज किया है उसे ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये बच्चा क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा। और मैं
0: बहन है वो मुझे कुछ नहीं करेगी।
1: डॉक्टर पटेल, यहाँ ये बात और जरूरी हो जाती है कि जो इस तरह के बच्चे हैं जो इससे गुजर रहे हैं उनके सामने उस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस उस वक्त के उनके रिएक्शन है वो तो फिर भी पता चल जाते हैं कि सोशली भी कम बात करने लगते हैं, उनके एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आने लगती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। इवन पेरेंट्स नीड टू नो, इवन द विक्टिम जो उससे गुजरा है उसको भी पता होना चाहिए कि क्या कहां तक लीड कर सकती है।
0: अगर प्रॉपर काउंसिलिंग न हो, अगर ठीक से थेरेपी हो, काउंसिलिंग हो, तो बच्चा कम्प्लीटली नॉर्मल हो सकता है। और ठीक से न हो तो एक तो डिप्रेशन तो होगा ही होगा, साथ साथ पर्सनालिटी डिफेक्टिव हो जाएगी पूरी। वो पर्सनालिटी के कई परवर्जन्स हैं, वो हो सकते हैं, वो सिजोफ्रेनिक भी हो सकते हैं आगे चल के उस समय, क्योंकि अंदर में कॉन्फ्लिक्ट तो चलना ही चलना है, आगे चल के वो सिजोफ्रेनिक भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही सीरियस बात है कि जिसको हमें ठीक से डील करना चाहिए।
2: कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और बिटरनेस नहीं मानेगा, बड़ा नहीं भी हो लेकिन एक छोटा इस तरह के ऊपर, ये भी छोटे नहीं है लेकिन ये इफेक्ट्स बहुत लाइफ लॉन्ग चलेंगे।
1: शिवाजी, जब हम बात ये कर रहे हैं कि जो जागरण की बात करते हैं, जो इंटरनल जर्नी की बात करते हैं, वो बहुत पहले से ही शुरू होनी चाहिए। वी बीन टॉकिंग अबाउट इट। इन केसेस में तो ये जो इंटरनल काउंसलिंग है या पेरेंट्स के साथ बैठ के ये जो इंट्रोडक्शन टू अगेन यू नो स्पिरिचुअलिटी और पूरा एस्पेक्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड इंटरनल काउंसलिंग,
2: एंड आई थिंक मेडिटेशन विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट।
1: सो व्हाट हैज टू बी डन, हमसे बच्चे के साथ किस तरह की बातचीत करनी बहुत जरूरी है, बच्चा अपने आप से भी क्या बात करे,
2: क्योंकि बिटरनेस बहुत फैल जाएगी ना अंदर, और वो बिटरनेस को अगर नहीं निकाला गया अभी तो फिर वो बिटरनेस लाइफ लॉन्ग आप कैरी करते हो, वो फिर आपके और रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी। तो दैट बिटरनेस कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय लव। हील अगर करना तो उसको बिटरनेस को लव से रिप्लेस करना होगा, हमें उस सारी बिटरनेस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें पेरेंट्स, लेकिन अगेन मेडिटेशन, बिकॉज गॉड्स लव यू नो विल हील एनी वूंड, क्योंकि परमात्मा का प्यार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, यू नो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे सेट होने लगता है, आप फील नहीं करते कि आप वर्दी है क्योंकि किसी ने आपके साथ इस तरह से किया, तो आपको अंदर गंदा सा महसूस होने लगता है। तो आप भले लोग नहीं आपको शो करें लेकिन आप ही लोगों के सामने जाने से या इंटरेक्ट करने से शायद थोड़ा हेसिटेट करते हैं, लेकिन परमात्मा का प्यार क्योंकि अनकंडीशनल होता है और आप उसको अनुभव करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के दौरान कि हम चाहे कैसे भी हैं, चाहे हमारे अंदर क्या कुछ नहीं है, परमात्मा मुझे बहुत प्यार करता है। और वो ऐसे भरता जाता है मेडिटेशन, जब हम यू नो परमात्मा से रिलेशनशिप जो डेवलप होती है वो प्यार ऐसा भरता है कि जो भी इस तरह की जो बिटरनेस है, यू नो यू फील समथिंग तो दूसरी चीज को तो निकलना ही पड़ेगा, दोनों चीजें कच्ची नहीं रह सकती है, तो वो प्यार भरता जाता है, कड़वाहट खत्म होती जाएगी। बिकॉज नहीं तो काउंसलिंग ये सब चीजें तो बहुत यूजफुल है लेकिन फिर भी टेम्पररी है और थोड़ी सी चैलेंजिंग है, लेकिन ये बहुत इजी है। व्हेन यू गेट अ सोर्स ऑफ लव, यू नो वो इतना गशन कर देगा, इतना प्यार आपके अंदर भर देगा कि वो इतनी सी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी।
1: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कहीं बच्चे को कंटिन्यूस ये भी रहे कि इट्स नॉट समथिंग एबनॉर्मल विच हैज हैपेंड,
2: नथिंग, दैट्स व्हाट एक्सेप्टेंस उसी में आ जाएगी ना सारी,
1: कुछ ऐसा नहीं हो गया कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, यू नो लाइक इट इज ओके, लाइफ कैन गो,
2: यू नो इट कैन बी ट्रीटेड लाइक मे बी लाइक एन एक्सीडेंट, यू नो इट कैन बी ट्रीटेड लाइक एन एक्सीडेंट कि ये एक्सीडेंट हो गया है, यू नो कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड एंड नथिंग इज रॉन्ग, आई एम स्टिल परफेक्ट इंटरनली ऑल्सो एंड एक्सटर्नली ऑल्सो, मूव ऑन। तो उसको उस तरह से ट्रीट करके आगे चल सकते।
0: एक पहलू जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को एडमायर भी करो, डांटने के बदले कई बार डांट देते हैं, ऐसा तुम क्यों कर, ऐसा

0: नहीं सकता है, तुम्हारा फॉल्ट है।
1: वो तो बहुत ही डैमेजिंग,
0: उसको एडमायर करो कि तुम करेजियस हो, तुमने अच्छा किया, कि इसी से तुम जीवन में भी और प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी आप ऐसे फेस करोगे और आप महान बनोगे। इस प्रकार से बच्चे में तो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी।
2: एंड इट वॉज जस्ट अ प्रॉब्लम, ये भी एहसास उसको दिलाओ कि ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो गया जिंदगी में कि सब बदल गया,
0: एक्सीडेंट है जिससे।
1: हाँ, और जैसे हम बच्चों को तो समझा सकते हैं कि जीवन की यात्रा में ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, ये भी एक ऐसा था, इसको हमने हटाना है, आगे बढ़ना है। एंड ये ऑब्स्टिकल विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर, डोंट लेट इट मेक यू weaker, come out stronger and be ready, you know, for other challenges to come. So it's all that talk that we will have to do with the child and the child will do with himself.
0: Aur ek pura issue hai ki wo prevent kaise kare. Aur usse prevent karne ke liye to hai ki bacche ko sikhana padega.
2: Constant
0: wo aapne bataya. Jaisa kuch bhi ho to nahi, even you shout.
2: Yes.
0: ऐसा नहीं, उस तभी सहन नहीं कर लो।
2: और वो टच की जो आपने बात,
0: वो ये बात है, वो शुरुआत है समझो, और भी वो अब्यूज बढ़ गया कभी तो तब कई बार बच्चे तभी शाउट नहीं करते, जोर से रोते हैं, ये किक ही वॉट एवर, नहीं उस समय आप करो तो मोर देन 50% चांसेस आर देयर दैट यू विल बी सेफ।
2: रिएक्ट, लर्न टू रिएक्ट। एक्चुअली यहाँ एक और मेल आया, हम डिप्रेशन की ही बात कर रहे हैं, तो ये लेडी है बैंगलोर से है, एंड शी सेज आई एम वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, और जो मेरे मेल कलीग मेरे साथ हैं, खासकर एक के साथ, मैं अब इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट मुझे जो है हैंकरिंग करते रहते हैं कि मेरी प्रोग्रेस जितनी भी है वो इसीलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और कंटिन्यूस उनका सबलाइन जो है ना वो अंडरकरंट चलता रहता है, यू नो इट इज लाइक एक उस सिचुएशन में पहुंच गया है कि वो अब्यूज ही लगने लग गया है, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो मुझे मेरी औरत होने का एहसास दिलाते रहते। तो मुझे कई बार लगता है कि मेरी प्रॉब्लम यही है कि आई एम अ वुमन, यू नो ही ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑल माई अचीवमेंट्स टू मी बींग अ वुमन। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और मैं अपने बॉस के पास भी अगर जाती हूँ तो मैं क्या कहूँ, तो आई फील सो डिप्रेस्ड कि वाई आई एम बींग विक्टिमाइज अगेन, you know, like these kind of depressions at workplace, especially for women, बहुत ज्यादा देखा गया है कि ये सामने आते हैं, तो इनको क्या कहा जाए?
0: इसको अब्यूज भी कहेंगे, लेकिन अभी पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, अगर ये महिला ये सोचे कि भले वैसा बोल रहे हैं 10% उसमें ट्रूथ भी है, परंतु मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, वो एक साइकोलॉजिकली मेरे साथ प्ले कर रहा है, तो वो मैं अलाउ नहीं करूंगी,
2: लेकिन
0: उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी।
2: देखिए कांस्टेंट जब आपके कलीग होते हैं, एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ कि कांस्टेंट कलीग जो है जिसके साथ आपको कांस्टेंट काम करना है, औरत कहीं ना कहीं जब बाहर निकली है तो एक प्रेशर के साथ ही निकली है कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को, अभी भी थोड़ा वो इस प्रेशर में जी रही है, जब कांस्टेंट वो कोई बोलता जाता है तो आपकी जो पूरी जो वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रेशर कर रहा होगा उनको,
0: तो एसर्ट करो।
2: हाँ डेफिनेटली,
0: तब अपनी बात को बताओ कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं भी है मुझे कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है,
2: बीइंग
0: अ वुमन देयर में भी सम डिसएडवांटेजेस जो आप देख नहीं रहे, वो डिसएडवांटेज को ओवरकम करके मैं आगे आई हूँ, मैं मेहनत कर रही
2: हूँ, सबमिसिव रह जाती है, सो हाउ स्ट्रांग शी शुड बी एक्चुअली।
0: वो अगर तुरंत थोड़ा सा मेंटली प्लानिंग करके उनको सुना दे वह बात, तो भी कुछ न कुछ तो कमी जरूर आएगी, सीनियर्स को भी बताने में हर्जा नहीं, तो भी इस प्रकार से वह साइकोलॉजिकली मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर सीनियर्स भी कुछ एडवाइस देंगे तो इस प्रकार का जो वर्बल अब्यूज इसे तो कहेंगे, ये वर्बल अब्यूज उनका कम हो सकता है।
2: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, व्हाट वुड यू से?
1: आपने कहा कि वो औरत है, उसको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा,
2: नहीं करना पड़ेगा नहीं, लेकिन आज के वक्त में अभी भी ये जनरली देखा गया है कि वो कर रही है, करना पड़ेगा इज लाइक नॉट अ
1: between a male and a female, physical strength pe there can be a difference, mental strength pe it's not, because mental strength atma ki hai and atma male ya female nahi hai. Aaj aap ek female costume mein hai, isse pichle 30 years back aap ek male costume mein ho sakti thi, tab aapki strength alag thi just because you were wearing a different costume, no you were the same. And अगर आज हम really detach होकर देखें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कह सकते हैं कि you know औरतें ज्यादा strong है या male ज्यादा strong mentally, physically yes, body structure that's fine, but उसको तो अब तो हम उसको भी overcome कर पाते हैं, लेकिन जहां ये workplace, एक IT company में आपकी कोई physical strength नहीं use हो रही है, आपकी mental capability, आपकी intellectual capacity जो male और female में

0: डिफरेंट नहीं हो सकती है बिल्कुल भी. ये खुद हम इस डिफरेंस को क्रिएट करते हैं. इट्स द वुमन आई थिंक ये अपने आप को हम क्रिएट करते हैं जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि आई एम अ सोल एंड सो इज द अदर पर्सन. देर इज नो डिफरेंस. हम दोनों सेम हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर. तो देर इज नो क्वेश्चन कि दूसरा हमें दबा सकता है, दूसरा हमें नहीं सप्रेस करता है. हम खुद अपने आप को सप्रेस होने देते हैं. दूसरे को जो कमेंट पास करनी है वो पास कर दे. आई कैन से एनीथिंग टू यू. अब उसको लेकर आपको क्या करना है. आई कैन से कनुप्रिया यू आर वेरी वीक. तो क्या हुआ, बोलने से आप वीक हो गए? नहीं, आपने उस सेंटेंस को लिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप सोचने लग गए कि मैं तो हूं ही कमजोर, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं तो इस बात का फायदा उठा रही हूं. वो आप तब सोचेंगे जब आप सचमुच फील करते हैं उस तरह की कोई थॉट. तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें एक्सप्लेन करती है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, आई एम एनर्जी एंड एनर्जी हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, उसको हमें यूज करना है. एंड अगर उस सामने वाले व्यक्ति में पावर है मुझे सप्रेस करने की, तो मुझ में पावर है कि नॉट टू गेट सप्रेस्ड. आई कैन स्टैंड ऑन माय ओन.
1: आई थिंक एट टाइम्स व्हेन वी टॉक लाइक दिस, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी हम इन
0: इट्स बिकॉज ऑफ दीज बिलीफ सिस्टम्स ना. अगेन ये सारे जो हमने बिलीफ सिस्टम
1: निकाल देते हैं एंड द रियल पोटेंशियल ऑफ माई सोल, आई द सोल एक्चुअली, कि उसको हम नहीं रियलाइज कर पाते कि किस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं.
2: इवन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो वीमेन में ज्यादा है. इवन इट इज प्रूवन. ब्रेन पावर इफ यू से इंटेलेक्चुअल पावर इज मोर, इसलिए तो लड़कियां टॉपर्स है.
1: क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके कहीं और बाकी चीजें पेशेंस है
2: वैल्यूज. इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज ऑल्सो बेटर
0: राइट, बट वैल्यूज भी अगर हम ले, आई थिंक दे आर सेम इन बोथ. क्योंकि पावर्स भी दे आर सेम इन बोथ. इट्स जस्ट दैट कौन अपने अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से. इसी जैसे आपने कहा कि वुमेन में ज्यादा पेशेंस है, या हमने समझते आज तक सुनते आए कि वुमेन में ज्यादा एडजस्टमेंट पावर है. नो, इट्स लाइक बिकॉज वो लाइफस्टाइल ऐसी रही इतना टाइम कि उन्होंने अपने एडजस्टमेंट पावर को ज्यादा यूज किया क्योंकि सोसाइटी ने उनको उस तरह से किया. बट दैट डजंट मीन कि एक वुमेन के अंदर ज्यादा एडजस्टमेंट पावर है और एक मेल के अंदर नहीं है. इट्स जस्ट दैट द मेल डजंट एडजस्ट सो मच बिकॉज ही इज यूज्ड टू गेटिंग हिज वर्क डन. लेकिन द फीमेल इज यूज्ड टू ऑलवेज एडजस्टिंग. बट द पावर विल डेफिनेटली बी द सेम इन बोथ ऑफ देम बिकॉज द सोल इज द सेम. इट्स जस्ट दैट इन्होंने ज्यादा यूज किया और इन्होंने उतना नहीं. लेकिन अगर आप अभी जेनरिक देखें तो दोनों में सेम चीजें हैं. डिफरेंस नहीं हो सकती. पावर्स एंड वैल्यूज दोनों में सेम होंगे क्योंकि आत्मा की चीज है वो.
1: बिल्कुल. अगेन द बेस ऑफ एवरीथिंग कम्स डाउन टू रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कि क्या किस तरह से हम खुद को ये रियलाइज करवाएं कि एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिप्रेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. समथिंग लाइक एल्स यू लाइक टू से डॉक्टर साहब.
2: बिल्कुल, ये बातें सही है. इस केस में तो मैं ये भी कहूंगा कि भी वो खुश भी हो तो भी अच्छा है, भी मुझे कुछ एडवांटेज मिल रहे हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसको करना है वो करने दो. दिस इज जस्ट एन सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड विच शी कैन डेवलप.
0: द पर्सन इज एक्चुअली साइकोलॉजिकली प्लेइंग विद हर. तो डोंट लेट समबडी प्ले विद यू.
1: हम फिर वो अधिकार किसी और को दे रहे
0: हैं. हम किसी को रिमोट कंट्रोल दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि मेरा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उस पर उसका इफेक्ट आएगा. तो जो वो चाहते हैं वो सक्सीड हो जाएंगे क्योंकि मैं खुद अपने आप को पीछे लेकर जाऊंगी, कोई और नहीं लेकर जाएगा क्योंकि मैंने अपने माइंड को इस नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की तरफ ले गई. So he will achieve what he wants. And I'm giving him the power to do that.
1: तो अब इनके लिए यही सलाह रहेगी कि ये जो कह रही है कि मैं छुट्टी लेके बैठ जाना चाहती हूँ, वो ना
0: वो ही चाहते हैं.
1: ज्यादा काम करने लगे, ज्यादा वक्त गुजारे वहां पर और खुश रह के उनके साथ भी अच्छा था. अगर व्यवहार करेंगी तो शायद उनको भी रियलाइज हो कि नाराज क्यों नहीं हो रही है
0: और फिर फाइनली गिव अप कर देगा.
2: एक बार एसर्ट जरूर करें.
1: एसर्ट ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमने अभी पूरी तरह से नहीं एक्सप्लोर किया है. हमने एंगर को भी जाना था. एंगर भी कहीं ना कहीं आपने कहा था कि एंगर जब अपने ऊपर होने लगता है तो वो डिप्रेशन को लीड करता है. और एसर्टिवनेस जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एंगर उसी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. क्या है एसर्टिवनेस, क्या है एंगर, इसको ज्यादा डिटेल में अगली कड़ी में जरूर जानेंगे. लेकिन फिलहाल डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है. ये हंसती मुस्कुराते जिंदगी हम और आप सब पा सकते हैं. कोशिश यही करते हैं कि हर लम्हे को जिए, लेकिन जब ऐसे मुकाम आते हैं कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब खुद से बात करना शुरू करें और शायद जो दोस्त हमारे अपने पास

0: ये जो अंदर है वो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट फिर ले आए, जिंदगी को फिर से उत्सव के रूप में हमारे सामने ले आए। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आप हमें फोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। अगली कड़ी में असर्टिवनेस और एंगर, इसमें क्या फर्क है और कितना जरूरी है असर्टिव होना और कितना जरूरी है कि गुस्सा ना करें, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल
1: पुणे की आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

है सब पकवान, सब पकवान है सब पकवान। बालू मेहता के जिसकी चलती है हुकूमत उसकी है दुनिया का दस्तूर यही, सब गलत यहाँ का ताकत ही सही, सब पकवान। किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त सख्त सजा देंगे।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: जल ही जीवन है और जल में जीवन है, ये बातें हमने बचपन से सुनी हैं, आज भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में जल की कमी होती जा रही है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आप सबका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो मधुबन। दोस्तों, यशस्वी भारत कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम नहीं, मैं कहूंगा एक जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, जहां पर हम उन चुनिंदा लोगों से मिलते हैं जिनमें भारत का निवास है, जो अपने

0: मन से भारत को भारत बनाते हैं, जो अपने कर्मों से भारत को यशस्वी बनाते हैं। आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी ही अनूठी हस्ती जुड़ी हैं, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जयपुर के लपोड़िया गांव से हैं, लेकिन केवल एक गांव में ही उनका काम सीमित नहीं रहा, लेकिन पूरे देश में उन्होंने जल के प्रति लोगों को जागरूक किया है। और न केवल जागरूक किया है, उनके द्वारा उनको एकत्रित करके कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन का हमने सम्मान करना सीखा है। आइए स्वागत करते हैं लक्ष्मण भाई सिंह लपोड़िया जी का। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने समय निकाला, हमारे बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, आप सबको भी नमस्कार।
0: लक्ष्मण जी, आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त होना ये मेरे जैसे एक युवा व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वो कड़ी हैं जिन्होंने संपदा देखी है, जिन्होंने संपन्नता देखी है, जिन्होंने अभाव भी देखा है। लेकिन हम उस कड़ी में हैं जहाँ पर घबराहट ज्यादा है, डर ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण और इन सब की वजह से जो जो भी हमको सुनना पड़ता है या हम देख रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ बहुत सारे युवा घबराए हुए होते हैं। आपसे शुरू करना चाहेंगे, आपका युवा काल कैसा था, आपका बाल्यकाल कैसा था, और जल के प्रति आपका जो ये निष्ठा है, जो आकर्षण है, वो कैसे शुरू हुआ?
1: मैं लापोड़िया गांव का रहने वाला बालक था और सन 69 में, यानी कि 69 में पांचवीं पास करके लापोड़िया से और जयपुर गया था, पोदार स्कूल में पढ़ता था। जब मैं सन 1973 में, मतलब 73 मैं जब आया वापस, तो लापोड़िया में अकाल पड़ा हुआ था, यानी कि बरसात की कमी थी, तो कुएं सूख चुके थे। हमारा एक तालाब टूटा हुआ था और कुएं के अंदर उतर करके लोग पानी भर रहे थे पीने के लिए, और थोड़ी देर में पानी वो निकालते निकालते अंदर मिट्टी में खराब हो जाया करता था। फिर 10 मिनट रुकते थे और कहते थे कि पानी जरा साफ हो जाए, फिर पानी भरे। तो ये चीजें देख करके मुझे बहुत दुखी हुआ और मैंने ये निर्णय लिया कि भाई ये पानी कैसे यहाँ कम है, जयपुर में तो नल चल रहे हैं, बढ़िया है, फुहारे चलते हैं, हम नहाते हैं। तो ये है, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक तालाब टूटा हुआ है, तो तालाब टूटा हुआ है तो ये पहले तो पानी खूब था, पर तालाब टूटने के बाद ये पानी अब नहीं है कुओं में। तो हमने कहा कि जब हम इतने आदमी हैं तो तालाब क्यों नहीं ठीक कर सकते? तो लोगों ने कहा कि मजदूरी कौन देगा। तो मैं एकदम प्रभावित हुआ और मुझे बुरा असर लगा कि लोग अपने काम के लिए मजदूरी मांगते हैं। क्या हम मजदूर हैं? हम गांव के रहने वाले, गांव के मालिक हुआ करते, गांव का पानी, गांव की संस्कृति, गांव की कृषि, ये सब लोग इसको बनाते हैं, लोग इसका स्वागत करते हैं, लोग इसका निर्माण करते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग गर्मियों में बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, आपस में मुकदमे बहुत सारे, 117 मुकदमे थे उस जमाने में लापोड़िया में, और लोग झूठी गवाहियां, रोजाना थाना जाना, रोजाना पुलिस वाले आना, लोग छुपना, भागना, एक दूसरों को पीटना, किसी का सर फोड़ना, किसी के हाथ तोड़ना, ये सब चल रहा था। और कम से कम कोई आदमी काम नहीं करता था, सब लड़ाइयों में लोग जूझे रहते थे और उसी का दिमाग चलता। तो हमने कहा कि ये लड़ाई करने वाले लोग कैसे खेती करेंगे? तो हमने उस तालाब के बारे में फिर दूसरी मीटिंग की, तो दूसरे में भी ये कहा कि मजदूरी कौन देगा, पानी भरेंगे तो कोई लठेत ले जाएगा पानी, हम ऐसे रह जाएंगे गरीब आदमी। मैंने कहा पानी तो लाओ पहले, उसके बाद इंजाम करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, अच्छे से अच्छे लोग आएंगे, उस पर काम करेंगे। तो बोलेगा नहीं नहीं, ये लोग नहीं मानते, ये तो लड़ाइयों से मानते। तो फिर हम तीसरी मीटिंग में कोई आया ही, तो मेरे एक मित्र थे रामोतार कुमावत, वो जयपुर से आए छुट्टी में, वही हम उम्र थे, यानी कि 18 साल, तो वो भी 10वीं क्लास में पढ़ते थे। तो हमने उनको ये सारी बातें कही, तो उन्होंने कहा कि तो अपन चलते। तो मुझे एकदम जोश आया और मैं कहा तो चलो, हमने कुदाल पावड़ा लिया और हम चल पड़े। जब चल पड़े तो फिर हम ये कहा कि चलो काम करते, हम चलो काम करते। तो फिर लोग मिले कि कहाँ जा रहे हो, तालाब ठीक करने जा रहे हैं हम। तो बोला दो आदमियों से नहीं ठीक हो। मैंने कहा दो नहीं है, तीन है, तीसरा कौन है? मैंने कहा तुम भी तो तीसरे हो। तो उसने कभी ये नहीं कहा मजदूरी कौन देगा। तो मैं आया आ रहा हूँ, अपने घर से कुदाल पावड़ा लिया, वो भी हमारे साथ। ऐसे तीसरा चौथा आदमी मिला, पुजारी जी भी मिले। पुजारी जी ने कहा कि पांच छह लोगों से क्या होगा, कहाँ जा रहे हो, तालाब ठीक करने, पांच छह लोगों से क्या होता है। हमने कहा नहीं पुजारी जी, पांच छह लोग नहीं, आप भी तो हैं। तो पुजारी ने कहा मैं भी आता हूँ। वो भी गए, हम वहाँ काम करते थे और फिर मीटिंग भी करते थे पूरे दिन काम, और 100 क्यूबिक फीट मिट्टी उठाते थे, यानी कि थक जाया करते थे मिट्टी उठाते थे। फिर हम लोग फिर बहुत प्रसन्न होते थे, मतलब थक करके मिट्टी डाल करके काम करके प्रसन्नता चित होते थे, और फिर वापस आ करके रात को सोते थे, सुबह फिर जाते। 20 लोग ही बने 7-8 दिन, हम लोगों का एक संगठन बना। और ये कहा कि नहीं अब जो है हम गांव की मीटिंग, और गांव की मीटिंग में तय होगा कि हम सारे लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे तो बताओ। तो हमने कहा कि गांव में यही काम है तुम्हारा कि खेती करना, थोड़ी बहुत खेती कर ली फिर खा लिया, फिर लेटरिंग वेटरिंग हो गया, यही धंधा है। गांव को बनाना है, यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ पशु रहते हैं, पशुओं के लिए पानी नहीं है, पशु मर जाते हैं बगैर पानी, ये क्या है खेत। तो ये सब चीजें हमने काम करते करते करते ये सब देखा समझा। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं हम सब जाएं, तो सब लोग जाने लगे। और फिर हमने कहा कि 100-100 लोग रोज जाएंगे, तो हमने लिस्टें बनाई, ये आज आएंगे, कल ही आएंगे, परसों ही आएंगे, पहले दिन ही आएंगे। तो फिर हमने रोज लाउड स्पीकर पे आवाज देते थे कि आज ये घर आएंगे, तो वो सुनते थे कि आज अपना नंबर है, फिर वो जाते थे। फिर रोज 100 लोग काम करते थे, और फिर तालाब को ठीक कर लिया हमने 2 महीने, फिर पानी आया। हाँ 2 महीने में हमने पूरा तालाब ठीक कर लिया, और जब बारिश आई तो फिर उसके बाद 2 महीने में जब अच्छी बारिश हुई बाद में, तो तालाब भरा। और जब हमने देखा, रोज देखते कुएं के साथ पानी आ, फिर 2 महीने बाद कुछ पानी आने लगा, फिर कुओं में पानी आने लगा, तो लोगों का आत्मनिर्भर। और वो तालाब के पानी से 100 बीघा जमीन सिंचित हुई, तो कुछ फसलें होने लगी। फिर हमने कहा कि तुम लड़ते क्यों? तो बस यही लड़ाई थी कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने यूं कर दिया, तुमने यूं कह दिया, तुम ऐसे करते हो, वो तुम ऐसे करते हो, इसके अलावा वो लड़ाई नहीं। तो हमने कहा भाई ये लड़ाई तो ऐसे को कि तुमने अच्छा किया, हमने बहुत अच्छा किया, तुमने सुना जो तुमने सुनाया, हमने अच्छा सुना, लड़ाई खत्म। तो फिर उनसे जमीनों की लड़ाइयां थी, कुछ ऐसी लड़ाइयां थी विचारों की, हमने बैठ करके सारे मुकदमे खत्म कर और उसको सुलझाने की कोशिश ही करनी थी कि भाई ये तुम इतने पैसा बर्बाद हो रहा है, तो आज तुमको सिंचाई करनी है और कल तुम्हारी तारीख है, तो सिंचाई बंद, मतलब फसल की सिंचाई मत करो, रोज तारीख पर जाओ, तो वो फिर लॉस होता है ना उनका। तो हमारा जो समय है वो किसमें जाना चाहिए? वो हमारा समय जो है वो कम से कम अच्छे कामों में जाना चाहिए। अच्छे कामों में अगर हमारा समय जाएगा तो हमारी इनकम अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, हम सभ्य बनेंगे, हम आदर्श बनेंगे। तो एक शब्द दिया था उसको, सहभागिता, विकास और शांति। सब लोग मिलें, विकास करें और शांति की ओर जाए। तो हम पहले ये प्रार्थना में यही बोलते थे, प्रार्थना हमारी होती थी तो संकल्प हो समान समान, हमारे कार्य नीति समान हो, हमारे विचार समान हो, हम सब लोग मेहनत करें, हम सब काम करें, हम एक दूसरों का सम्मान करें, और हम मेहनत से खाएं, मेहनत का काम करें, और जमीन को उपजाऊ करें, पानी रोकें, वृक्षारोपण करें, हरियाली लाएं। ये हम लोग काम करने लगे और फिर हमारा एक सिस्टम खड़ा किया। पहले तो एक संगठन बनाया, ग्राम विकास नवयुग मंडल लापोड़िया, ये सन 1977 में बना, और उसके नियम बने कि 80 सदस्य बने हम एक गांव के, और उनको सबको जिम्मेदारी दी कि जो काम हम यहाँ करते हैं इस गांव में, वो ये सब लोग एक एक गांव में जाके काम करेंगे, और इस गांव जैसा ही वो गांव बनाएंगे तो हमारा एक अच्छा बेल्ट होगा, हमारा एक अच्छे ग्रुप होगा गांव का जो सब मिलके अच्छा करेंगे, तभी ये अच्छा हो पाएगा। वरना एक बोतल में कहीं शुद्ध पानी भर दें आधा, और आधा गंदा पानी हो तो पूरा गंदा हो जाएगा, शुद्ध

0: होता है। अगर गांव कुछ गांव खराब है तो वो खराबी दूसरे गांव में जाती है, अगर कोई गांव अच्छा है तो दूसरे गांव में अच्छा ही जाती है। इसको कोई रोक नहीं सकता, ये एक प्रकृति का नियम है कि आपकी भावनाएं जैसी है वैसी आगे बढ़ती रहेगी, चाहे अच्छी हो चाहे खराब। तो फिर हम खराब क्यों रखें, हम अच्छी ही तो रखें। तो हमने ये काम किया था और ये काम करते करते हमने 80 लोगों की जिम्मेदारी दी, पर उसमें 80 लोग कामयाब नहीं हो पाए, हम ज्यादातर 40 गांव कामयाब हो पाए। वो 40 गांव की फिर बैठक होने लगी, बैठक में फिर हम लोग कुछ काम करने लगे, और जब काम करने लगे तो एक साथ निर्णय किए हर गांव में श्रमदान होना है, हर गांव में तालाब बनना है, हर गांव में हरियाली आनी है, और उस गांव में जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सबको पढ़ाए निःशुल्क। तो वो स्कूलें ना तो प्राइवेट थी और ना वो सरकारी थी, वो गांव की स्कूल।
1: लक्ष्मण जी, आप जो वो मंत्र बोल रहे थे सहभागिता,
0: सहभागिता विकास और शांति,
1: ये तीन शब्दों में आपने बहुत सारी बातें कह दी। मुझे ऐसा लगता है सहभागिता मतलब हर एक को जोड़ना जरूरी है, कोई भी अकेला अगर एक किनारे में बैठा है और बाकी सब एक तरफ हैं तो भी सहभागिता नहीं है और ना ही इसमें विकास है, क्योंकि वो व्यक्ति तो रह ही गया पीछे। तो सहभागिता से ही विकास संभव है और विकास से ही शांति का प्रभाव निकलता है, ये चीज बहुत पावरफुल है जो आपने कही। लेकिन मुझे एक चीज आपसे ये जानना था कि 18 वर्ष की आयु में लोगों के बुद्धि में होता है कि भाई हम कुछ पैसा कमा लें, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं, हम कुछ मुकाम हासिल कर लें, फिर वापस आएंगे गांव में, फिर देखेंगे, अभी तो मेरे कमाने खाने के दिन हैं, अभी तो खेलने कूदने के दिन हैं, आई हैव टू एंजॉय, इस तरीके की बातें होती हैं। ऐसे में आपको कैसे, किस बात ने या क्या चीज थी आपके अंदर जिसने आपको गांव में ही रखा, गांव में ही अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने दिया?
0: मिट्टी डालता है और कोई काम नहीं, कम से कम 2 भैंस खरीद ले, उसका दूध बेच, 2 रुपए मीटर का कपड़ा था। और अगर हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो पूछते ये कहाँ के हैं, कि लापोड़िया के हैं, तो फिर काम क्या करते हैं, कुत्ते मारते। और हम सुनते थे और हमें लगता था ये कि सच में हम कोई विकास का काम करते हैं, सच में कुत्ते मारते हैं, तो कहीं ये काम तो नहीं कर रहे हम कुत्ते मारने का काम, कुत्तों को जिंदा रखे, पक्षियों को जिंदा रखे, ये काम करें। ये मुझे याद दिला रहे, वो मेरे जो कर्म और कर्तव्य हैं उसको याद दिला रहे। वो ऐसे कभी बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं, मुझे वो गाइड करते। और फिर हम जो उसके बाद लोग अपमान करते थे, और अपमान हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम मानते थे कि कहीं हम ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, हमको अच्छा काम करना पड़ेगा। फिर हमने गांव के संगठन के साथ श्रमदान तय कर लिया, आज इस गांव में श्रमदान होना है तो हर घर से व्यक्ति को आना है, और पूरे लोग आने, बच्चे बुढ़े छोटे बड़े, है ना, जिनका स्वाभिमान हो, नौकरी करने वाले नई नौकरी करने वाले सारे लोग आते। और 2000 आदमी काम करते थे 5 दिन, और 5 दिन में 10,000 मेंढेस का काम होता, तालाब बनाए, फूल सागर, इस प्रकार के नए तालाब तैयार करे, और वो इतने मजबूत बने कि उनपे वो कभी आज तक नहीं टूटे, उनपे गाड़ियां घूमती है, रस्ते हैं, मतलब काम मन से हुआ, जबरदस्त काम हुआ। काम करते करते फिर हम ऐसे तालाब बनाते गए, इस महीने में इस गांव में श्रमदान, अगले महीने में दूसरे गांव में श्रमदान, तीसरे महीने में तीसरे गांव में श्रमदान, ऐसे श्रमदान होते गए और हम तालाब बनाते गए। पर तालाब बनाने के बाद भी कुछ विकास बाकी, वो क्या करें, धरती को उपजाऊ करो, पेड़ लगाओ, अच्छी खेती करो। तो हमने ये किया कि 1 जुलाई में बारिश आती है, तब से 1 जुलाई से और 15 अगस्त तक वृक्षारोपण करें। पर वृक्षारोपण अगर पौधों से करते हैं तो छोटा काम होता है, और अगर हम बड़े से काम करते हैं तो बीजों से अगर पेड़ लगाएंगे तो बड़ा काम होता है। क्योंकि हम चौका सिस्टम एक डिजाइन बनाई गोचर में, और वो हल्का हल्का पानी रहता है, यानी कि मॉइस्चर होता है उसमें, और मॉइस्चर को जब धरती पे आती है मॉइस्चर, तो उस मॉइस्चर में कोई बीज पड़ता है, चाहे फसल का बीज हो, चाहे पेड़ का बीज हो, चाहे घास का बीज हो, वो क्योंकि मॉइस्चर के साथ उगता है, पानी के साथ नहीं, पानी भी मॉइस्चर बढ़ाता है। तो हमने मॉइस्चर को समझा और फिर ये काम किया। तो हम चौका सिस्टम बना के और पहली बार साथ में 20 जो पेड़ हैं, खेजड़ी के, नीम के, और शीशम के, अरडू के, पीपल के, ये सब बीज इकट्ठा

0: छिड़क देते थे और फिर बरसात आती थी तो हजारों पेड़ डूबते थे। और हमारे यहाँ गोचर बड़े बड़े हैं राजस्थान में, कोई 400 बीघा, 1100 बीघा, 11,000 बीघा ऐसे गांव में गोचर, तो उनको सब में बीज छिड़क देते थे लेकिन चौका सिस्टम के साथ। तो वो सारे 5 साल में पूरे जंगल खड़े हो और गांव में एक कमेटियां बनाई इन जंगलों की रक्षा कर, हम जो है जो पशु चराएंगे तो कुलाड़ी लेके मत जाओ, अपने आप बकरियां पैर दे करके खा लेती है, गायें अपने आप खा लेती है, ईश्वर की कृपा है कि हमारे मुंह तक भोजन जाता है, कोई ये नहीं कर सकता किसी को मार के खाओ, किसी को कष्ट कर कष्ट दो, नहीं, भोजन हमको मिलेगा। तो नेचर ने ऐसा एक सिस्टम दिया है कि कोई भी जीव या कोई भी प्राणी न भूखा रहेगा न प्यासा रहेगा और आनंदमय रहेगा, ये व्यवस्था उन्होंने की है। तो हम उसको समझे और वैसा काम करें। तो हम लोगों ने फिर इस पे काम शुरू कर दिया, जंगल लगाना शुरू कर दिया, गांव की कमेटी बैठना शुरू कर दिया और कमेटी को ट्रेनिंग दी कि आप गांव का विकास कैसे करोगे। तो कोई कोई चुनाव को लेकर के लड़ेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ेंगे, तो लड़ाइयां ज्यादा होती है, शांति का काम कम होता है। तो हमारा जो विषय था सहभागिता, विकास और शांति, उसको साथ लेकर के काम करने लगे तो ये पता लगा कि हम शांति से कैसे काम कर सकते हैं। सीमाओं को देखा, गांव की सीमाओं को देखा, गांव की संस्कृति को देखा, गांव का चलन फरन काम रिश्ते रिवाजों को देखा और उस पर चर्चा करने लगे। जो हमारी रात को स्कूलें चलती उसमें बच्चों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ और जवानों के साथ, पढ़ाई के साथ यही चर्चा होती। कोई हमसे मिलने आता उनको भी लेते हम क्लास, लो वो भी क्लास लेते। अनुपम मिश्रा जैसे लोग जो दिल्ली में नाम है पर्यावरण का, राजेंद्र सिंह जी जैसे लोग आते थे और फिर वो भी क्लास लेते थे। तो बच्चों का दिल भी खुला, लोगों का दिल भी खुला। फिर लोगों ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, फिर लोगों ने ऐसा किया तो हमारे शांति के साथ संगठन बने गांव के और वो विकास में लगे और ऐसा विकास करें जो शांति की ओर जाए। विकास डबल है, एक विकास ऐसा होता है जो कभी जाकर के अशांति फैलाए, एक विकास ऐसा करो शांति फैलाए जिसमें गायों का नस्ल सुधारो, गायों की दूध बेचो, अच्छी खेती करो, पानी अच्छा रोको और एक साथ बैठ करके एक साथ संकल्प करो। तो एक साथ एक यात्रा निकाल ली हमने जिसका नाम है धरती जतन यात्रा।
1: मैं अभी इसके बारे में पूछने भी वाला था आपसे कि धरती जतन यात्रा के बारे में आप थोड़ा बताइए, लेकिन आप पहुंच ही गए उस पड़ाव पे। बट ये चीज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लोगों के बीच में ये बात तो क्लियर की कि दो प्रकार का विकास है, एक विकास जो अभी तो लग रहा है कि विकास हो रहा है लेकिन आगे चल करके समस्याओं को जन्म देगा, और एक विकास वो है जिसको कि हम शाश्वत विकास कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि शाश्वत है। एक इस प्रकार का विकास जो अगली आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या का स्वरूप न बने। तो ये बहुत अच्छा आपने परिभाषा हम सब श्रोताओं के लिए भी रखा है कि आप भी अपने जीवन में अगर विकास की बात सोच रहे हैं तो ये जरूर सोचिए कि कौन सा विकास ज्यादा शाश्वत है, कौन सा विकास ऐसा है जिसमें आने वाली पीढ़ी का नुकसान नहीं है, कौन सा मैं गाड़ी खरीदूं जिससे आने वाली पीढ़ी का नुकसान नहीं है, कौन सा मैं घर लूं या कौन सा मैं एवरीथिंग इन माई लाइफ, जीवन का हर छोटा बड़ा मुकाम जहां पर मुझे एक फैसला लेना है, मेरे फैसले से मेरा भी और दूसरे का भी विकास जुड़ा हुआ है। तो जैसे लक्ष्मण जी ने फैसला लिया कि धरती जतन यात्रा करनी है, आइए हम सुनते हैं क्या है ये धरती जतन यात्रा।
0: हम लोगों के सामने एक समस्या आने लगी कि हम इतने गांवों को कैसे संभालें, कि इन गांवों को एक धारा में कैसे पहुंचे, हम आदान प्रदान कैसे करें, हमारे कामों को हम एक गांव से दूसरा गांव कैसे देखें, और ये मन में कैसे आ जाए कि हमको जो जिम्मेदारी मिली है, जो दायित्व मिला है, उसको हम कैसे निभाएं और वो दायित्व है क्या। तो फिर हम जैसे ये तालाबों के नाम भी रखे ना, फूल सागर। तो लोगों ने कहा, पूछा आकर कि फूल सागर क्यों है, भाई गांव में फूल खिलेंगे। बोला ये फूल कैसे खिलता है। तो हमने कहा कि ये फूल ऐसे खिलते हैं जिससे तालाब बनाए, चौका सिस्टम किया, पानी रोका तो मॉइस्चर बढ़ा, और जब मॉइस्चर बढ़ता है तो तालाब के फूल सागर है, और उसमें जब पानी आएगा तो ग्राउंड वाटर बढ़ेगा तो घासों के फूल आएंगे, पेड़ों के फूल आते हैं, और वो फूल पे बाद में दाना है, तो वो दाना फिर

0: क्यों के लिए होता है। कोई कोई कोई पक्षी, कोई कीट कभी फूल चूसता है, कभी कोई उसका बीज खाता है। जैसे हर घास के बीज आता है, हर फसल के बीज आता है, पहले फूल आते हैं। जैसे मान लो सरसों, उसके बाद दाना आता है, ऐसे सबके फूल आते हैं। फूलों का आकार अलग अलग है, शक्ल अलग अलग है, पालियां आती है। तो हमने फूल सागर नाम इसलिए रखा कि फूल सागर पर बात कर सके, फूलों पर बात कर सके। फूल तब खिलेंगे जब ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा, नहीं तो सब ऊपर सूख जाएगा। तो ऐसे देव सागर भी रखा है, भगवान का तालाब। तो देव सागर जो तालाब है वो इसलिए नाम रखा गया कि जितने भी भगवान के जीव हैं वो पानी पियेंगे। नहीं तो जो वैसे नेचर ने जो दिया है उसके लिए आप सब सोचो, चिड़ियाएं कहाँ पानी पिएगी, पशु कहाँ पानी पिएंगे, कीट पतंगे कहाँ मोशर में रहेंगे, वो अंडे कहाँ देंगे, ये सब चीजें हमने दुखी समझी। तो यही हमने नाम देव सागर रखा। अन्न सागर रखा है कि इसे सिंचाई होगा, मतलब आने वाली पीढ़ी को ये पता लग सके इससे तो सिंचाई करना है, देव सागर से क्या करना है और फूल सागर के साथ क्या करना। हमारा व्यवहार जो है वो नेचर के साथ कैसा हो, तालाबों के साथ कैसा हो, गांव के साथ कैसा हो, गोचर भूमि के साथ कैसा हो, मनुष्य के साथ कैसा हो, ये हमको हमारी संस्कृति में ये चीज डाली हुई है। जैसे अगर कोई पूजन करते हैं तो पानी का लोटा रखा जाए, तो ये हमारी संस्कृति में हमारा जो व्यवहार है वो फिक्स किया हुआ है, यही हमारा सब कुछ है। तो हमने ये चीजों को देखा है कि देव सागर, फूल सागर, अन्न सागर को ये गाइड करेगा कि हम गांव में कैसे करेंगे। वरना कोई भी तालाब बनाते हैं तो पानी चूस लेते, कोई पानी चोरी करता है, कोई क्या करता है, कोई वो करता है, तो फिर नाश शुरू हो जाता है। हमको विकास कैसे करना है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो हमने इनके नाम भी ऐसे ही रखे, फिर ये काम होने लगा ऐसे
1: जी। मुझे ऐसा लगता है जो नाम आपने चुने, उन नामों के पीछे का जो भाव आपने बताया, इससे कई लोगों के अंदर की भावना भी बदली होगी। क्योंकि जब कभी भी कोई ऐसे जल का स्रोत देखता है, उसको लगता है कि अच्छा बहुत पानी है, अब तो मैं बहुत यूज कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत है। लेकिन जब आप उसमें एक नाम जोड़ देते हैं, उसके पीछे एक भाव बताते हैं, तो उससे लोगों की भावना बदलती है कि अरे ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये और भी पशु पक्षियों के लिए है। तो ये जो दया का भाव है, ये जो करुणा का भाव है, जो हम में सदा से था लेकिन कहीं गुम हो गया, उसको लाने में आपने बहुत बड़ा एक भूमिका निभाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो करुणा है, ये करुणा ही धरती की जतन है, ये करुणा ही एक दूसरे की जतन है, ये करुणा ही हमारे रिश्तों की जतन है, ये करुणा ही हमारे जीवन का भी जतन है। जीवन में शांति, शांति ही जीवन में जीवन का मर्म है। बगैर शांति के जीवन जीवन नहीं होता, एक अंधाधुंध दौड़ हो जाता है। साथियों, आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती जुड़ी हुई है जिन्होंने न केवल अपने जीवन में कर्म के द्वारा शांति को प्राप्त किया, लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारे गांव वासियों को भी एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां पर उन्हें वास्तविक रीति शांति प्राप्त करने के लिए, विकास प्राप्त करने के लिए सहभागिता का पाठ पढ़ाया। मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मण सिंह लखोड़िया जी से, जो कि लखोड़िया गांव से हैं, लेकिन जिन्होंने पूरे देश भर में लखोड़िया गांव का नाम रोशन किया है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज रेडियो मधुबन में हमारे साथ जुड़े हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित श्री लक्ष्मण सिंह लखोड़िया जी। लक्ष्मण जी, मैं देख रहा हूँ कि आप और आपके दोस्त कुल्हाड़ी लेकर के आगे जा रहे हैं, फावड़ा लेकर आगे जा रहे हैं और मिट्टी खोद करके तालाब का निर्माण कर रहे हैं, तालाब को ठीक कर रहे हैं। लोगों की शक्लों की खुशी मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन इन खुशी के पीछे, इस मेहनत के पीछे कई कठिनाई आई होंगी। आपने कई लोगों के उल्लाहनाओं का सामना किया होगा, कईयों ने आपको बहुत कुछ बोला होगा, तबीयत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप केवल उस समय 18 वर्ष के थे। तो इतना मेहनत, इतनी लोगों की, जो कहते हैं कि भाई कोई अच्छा काम करने निकले तो उसके पीछे लोग बहुत पड़ते हैं, तो ऐसे में आपने खुद को कैसे स्ट्रांग रखा, कैसे आप इन कठिनाइयों से जूझते रहे?
0: ये क्या हुआ कि काम करते करते जंगल लगने लग गए, काम होने लग गया, तो फिर कुछ जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ कुछ अपराध होते और उसको गलत एंगल से भी सोचते। तो उन्होंने कहा कि ये कौन होता है जब एक पेड़ काटे

0: तो हमने उनको उस नोटिस का जवाब भी दिया और हमने कहा कि ये राष्ट्रीय अभियान है और अगर कोई देश का नुकसान करता है तो हम कह सकते हैं कि भाई आपने ये देश का नुकसान किया उसको भरपाई करो। और ये तो देश में जागरूकता आनी है, ये तो हर आदमी के पास ये चीज होनी चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं, लोग आधारित विकास हो, लोगों द्वारा विकास हो, हर आदमी जागरूक हो, तो ये जागरूक की निशानी है। नहीं नहीं नहीं, ये लिख के दो, ऐसा हम भविष्य में नहीं करेंगे। तो हम उन्होंने कहा कि ऐसा कार्रवाई करेंगे। तो कुछ पत्रकार आए, फिर उनसे पूछा, उनका ये नोटिस हमने तो नहीं दिया, किसी की चाल हो सकती है, कब दिया, पता नहीं, इसको दिखते हैं। मतलब वो मुकर गए। तो ऐसी दिक्कतें आई, फिर ठेकेदार को पंचायतों ने ठेका छोड़ दिया। ये बड़े बड़े पेड़ हैं गोचर में और 80,000 रुपए में ठेका दे दिया और फिर वो ठेकेदार काटने आ गए। तो हम लोग कुछ लोग जा करके और गोचर में बैठ गए। और ये सन 1995 की बात है, 95 की बात है। और हम रात को ही, जनवरी का महीना था, मैं और मेरे बच्चे वहां से शुरू हो गए थे रात को जनवरी के महीने में। फिर बहुत सारे लोग आ गए, कहा कि ठेकेदार को नहीं काटने देंगे। ठेकेदार भी और इकट्ठे हो गए, पंचायत ने साथ दिया, सरकार ने उनका साथ दिया। और फिर हमने कहा कि भाई हमको मार दो, तभी ये पेड़ कट पाएंगे, नहीं तो पहले तो पेड़ नहीं काटने देंगे। फिर पुलिस आ गई, फिर कलेक्टर आ गए वहीं, फिर लोगों को फटकार लगाई, उनको ठेकेदारों को, पंचायत को फटकार लगाई कि आप पेड़ लगा सकते हो, काट नहीं सकते। तब पंचायत को समझ में आई कि ये पेड़ नहीं काट सकते, हम तो पेड़ ही लगा सकते हैं। तो ये बड़ा अभियान हुआ। फिर लोग फिर कहने लगे ठेकेदार, या कुछ लोग उनके साथ लग गए, पंचायत कहने लग गई ये सरकारी जमीन है, आप क्या मांगते हो। अरे भाई, सरकारी जमीन है तो सरकार तो अपनी है ना, ये देश अपना है, सरकार अपनी, और फिर इनको विकास करो, आप विनाश नहीं कर सकते ना, अपना ही तो है। तो मैं कई दफे आज भी उदाहरण देता हूँ, अगर कोई नुकसान करता है तो मैं ये बोलता हूँ फिर, अरे भाई कोई नुकसान करे तो कौन रोके, हम स्वयं को रोकना है। स्वयं आत्मा को, हमारी स्वयं को समझाओ और फिर लोगों को भी समझाओ, समझो और समझाओ, इस अभियान को आगे चलाओ। तो हमारी जो ये धरती जतन यात्रा है, यही काम करती है, काम के बारे में, औरों के बारे में, तो इन विचारों के बारे में, पानी के बारे में, जिधर से पानी चलता है उधर से ही यात्रा चलती है। वो तो पानी के डिसीजन हुए सारे, क्योंकि बहुत सारे गांवों को जोड़ा, 50 गांवों को जोड़ा, एक नहर बनाई हमने श्रमदान से, वो फिर गांव से गांव के तालाबों को जोड़ा, फिर तालाब आखिरी तालाब गांव का, दूसरे गांव का तालाब 5 किलोमीटर दूर, उसकी एक नहर बनाई कि उस वो तालाब भर जाए तो फिर इस गांव में पानी आएगा, इस गांव में सब तालाब भर जाएंगे तो फिर तीसरे गांव में पानी जाएगा। ऐसे हम 50 गांव जोड़े और फिर आज वो तालाबों में अच्छा पानी है, कुओं में अच्छा पानी है, लोग बैठ के डिसीजन करते हैं, सरकार को कहते हैं कि हम सरकार से कोई अनाज नहीं लेंगे, हम खुद हमारी धरती पे उगाए, हम सरकार से पानी नहीं लेंगे, हम पानी रोकेंगे। और हम चाहिए तो सरकार को सहयोग कर सकते हैं, पर सरकार दे हमें ऐसा नहीं, घास, चारा, अनाज, पानी, सभ्यता, संस्कृति, ये सब हमारी होनी चाहिए। हम पुलिस थाना खोल करके शांति नहीं ले सकते, पुलिस थाना जरूर
1: बताई आपने, ये बहुत बड़ी बात है कि शासन से, प्रशासन से शांति नहीं, लेकिन संस्कारों से शांति आ सकती है।
0: बिल्कुल। तो हमने उस यात्रा में ये चर्चाएं होने लगी, काम होने लगे, श्रमदान होने लगे। उस यात्रा में एक भी काम नहीं, और भी होता है, एक रजिस्टर हमारे पास होता है, एक रजिस्टर गांव के पास होता है, और उसमें प्रस्ताव लिए जाते हैं, खेती में पेस्टिसाइड नहीं छिड़कूंगा मैं, जो है नेचुरल खेती करूंगा, मतलब कुदरती खेती करूंगा, है ना, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ये ऐसे निर्णय होते हैं। और फिर वो काम, वो स्वयं का एक संकल्प होता है, वो बोला जाता है, वो लिखा जाता है, वो प्रार्थना में बोला जाता है। क्योंकि ये सब चीजें हम लोग करने लगे, उससे बहुत सुधार आया और एक आदर्श संगठन बनने लगे। क्योंकि इस दुनिया में,
1: लक्ष्मण जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई लोगों ने संकल्प लिया कि मैं प्राकृतिक खेती करूंगा, या मैं मेरे गांव, मेरे घर के आजू बाजू 8 या 10 पेड़ लगाऊंगा, मैं मेरे खेतों के मेड़ों पे पेड़ लगाऊंगा, या इस प्रकार के लोगों ने संकल्प लिए,

0: कई बार होता है कि संकल्प तो लोग ले लेते हैं, लेकिन या तो उनको पता नहीं होता है इसको कैसे करना है, या फिर वो करते करते थक जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि यार छोड़ो यार और लोग कर लेंगे। ऐसे में संकल्प पे टिके रहना, इसके लिए आपने कैसे मदद किया उनको?
1: एक तो हर साल यात्रा जाती है और यात्रा के बीच में जो संकल्प लिए जाते हैं हम एक दूसरे को बुलाते हैं, उसमें आदान प्रदान होता है। फिर हम एक दफे एक गांव में जितने भी जो ढूंढार कर्मी है, ढूंढार कर्मी का मतलब है ये एरिया हमारा ढूंढार कहा जाता है, तो उनको ढूंढार अवार्ड दिया जाता है। तो ढूंढार कर्मी बैठ करके हम सब लोग दूसरे गांव में जाकर के बीच बीच में यात्रा में ही नहीं बीच बीच में मिलने जाते हैं। फिर वो लोग मिलते हैं, फिर अपने काम बताते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि इसको कोई देखने आता है, इसको कोई समझने आता है, मेरी इज्जत होने लगी है। तो इज्जत के पीछे दुनिया घूमती है। किसी भी काम में अगर इज्जत मिलने लगती है तो कामयाब हो जाते हैं हम लोग
0: जी।
1: अगर मैंने काम के
0: मैंने ये समझा आज के चर्चा से लक्ष्मण जी की, जिसने भी छोटा सा भी अगर काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करना, उसकी प्रशंसा करनी है। झूठी प्रशंसा नहीं, दिल से प्रशंसा कि भाई आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो पहचान है, ये व्यक्ति को और भी आगे बढ़ने में मदद करता है। साथियों, जो भी हम सब आज सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं समझता हूँ आपके आसपास भी कोई ना कोई एक ऐसा मैटर होगा, कोई ना कोई एक ऐसा पहलू होगा समाज का जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। शुरुआत आप कीजिए, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं आपके साथ आप उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ा सा आप उनको पहचान दीजिए। और आज आप देखिए लक्ष्मण भाई जी हमारे बीच में हैं, एक कितना बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने लोगों के छोटे छोटे प्रयासों को पहचाना और आज उनको पूरा भारत देश पहचान रहा है। जनवरी 2023 में लकोड़िया के लक्ष्मण सिंह जी को पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार ने नवाजा है। ये हमारा बहुत बड़ा उदाहरण है हम सबके बीच में कि छोटे छोटे प्रयासों से, छोटे छोटे हिम्मत के कदमों से व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच सकता है जहां पर वो पूरे देश को, पूरे समाज को प्रोत्साहित कर सकता है। लक्ष्मण जी, जब आपको इस सम्मान के लिए नियुक्त किया गया, चुना गया, तब आपको क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ आपको?
1: नहीं, मैंने एक महसूस किया है, वो जो मैंने उदाहरण भी दिया था, जब मैं जयपुर में बैठा हुआ था 25 जनवरी को, तो SDM का फोन आया 9:45 रात को, और वो एक शादी थी जिसमें मैं बैठा था, और हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र सारे बैठे थे। तो उन्होंने कहा आपको बड़ा अच्छा सम्मान मिला, ये मिला, वो मिला, खूब लोग बोल रहे थे। तो मैंने उनको एक बात कही, आप सम्मान की बातें बहुत करते हैं, अच्छी बात है, पर आप मेरा अपमान कितनी जगह वो तो सुनिए।
0: बहुत बढ़िया। जी,
1: अपमान का जवाब मिलता है सम्मान। अगर कोई आपका अच्छे काम करते करते अपमान करता है तो सम्मान निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं पाए। वो सम्मान हमारा कमाया हुआ है अपमान करा के। अपमान को आप किस ढंग से सहते हैं, अपमान को आप अपने जीवन में कैसे सही करके उसको लेते हैं, वो आपकी कला होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए, वो प्रयास होना चाहिए कि आप क्या करें।
0: इसलिए आपने कहा समझो और समझाओ।
1: समझो
0: लक्ष्मण तो, जी जब आप प्रकृति की इतनी सेवा करते हैं, है ना, आपका सारा जीवन ही प्रकृति के चारों तरफ नूंधा हुआ है, आप क्या प्रकृति से बात भी करते हैं?
1: बहुत गजब बातें होती।
0: क्या बातें करते हैं?
1: जब आप रात को चलते हैं, मान लो हम रात को घूमते हैं, कोई शिकार नहीं होनी चाहिए, किसी जीव परेशान नहीं होना चाहिए, तो चिड़ियाएं बोलती है, उल्लू बोलता है, बहुत सारे चिड़िया साथ साथ चलती है, ऊपर ऊपर हम नीचे नीचे चलते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। और जब हम दिन में घूमते हैं तो वनस्पति खिलती है, अगर आप वनस्पति लगाकर उनको नहीं देखते हो प्यार से तो वो मुरझाती है, और जब आप पानी दे करके प्रसन्न होते हो तो वो वनस्पति भी प्रसन्न होती है और वो बढ़ने लगती है। तो आप किसी से भी प्यार करो वो बढ़ेगा, सच्चाई से प्यार करोगे तो सच्चाई बढ़ेगी, आप प्यार करो, जिससे प्यार करो वही बढ़ेगा, इस पे तो कोई रोक नहीं पाए।
0: वाह, ये तो इतना बड़ा महामंत्र दिया आज आपने कि प्रेम से प्रगति निश्चित है, जिससे आपका वास्तविक प्रेम है वहाँ प्रगति है, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो कोई

0: आपका व्यक्तिगत कर्म है, जहाँ आपका प्यार है वहाँ उसकी प्रगति निश्चित है। बहुत सुंदर।
1: ये तक माना जाता है कि कोई व्यक्ति आपसे ना मिले और आप ही मन ही मन में उसको चाहने लगते हो तो दूर बैठा भी आपको वो चाहने लगता है। इतनी बड़ा काम है प्रकृति का कि पूछो मत, उसमें तो कमाल है।
0: तो माँ प्रकृति से जो आपका ये संबंध है उसमें कोई एक ऐसी घटना या कुछ ऐसा जहाँ पर आपको ऐसा लगता हो कि आपको प्रकृति से एक रिस्पॉन्ड मिला हो, या आपके कर्म के लिए, आपके प्यार के लिए प्रकृति की तरफ से आपको एक जवाब आया हो, ऐसा कुछ हुआ कभी आपके साथ अनोखा?
1: नहीं, ऐसा होता है कई बार कि जैसे हम कुछ सोचते हैं, दिन में उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है मुझे, तो जब रात को सो जाते हैं तो सपना आकर के उसका उत्तर मिलता है, या ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा, तो फिर मैं उठता हूँ जब याद आता है वो सपने में ये जवाब आया। और जब हम काम करते हैं इतने मन से काम करते हैं तो सपना भी उसी का आता है, तो दिन में बात करते हैं तो भी उसी की बात करते हैं। यानी कि जीवन में कण कण में समा जाना चाहिए अपना कर्तव्य, उसमें सफलता होने से कोई रोक नहीं पाए। हम काम कुछ करें, बोले कुछ, तो वो कैसे चलेगा? और जीवन के लिए काम करना है, जीवन चलता रहना चाहिए, अपना ही नहीं सबका। तो हम पक्षियों के लिए जैसे गांव के पास एक देवबन बनाया,
0: वो जो मैंने पढ़ा उसमें कि आपने खुला पक्षी घर बनाया है और यहाँ तक कि आपने चूहों के लिए भी घर बनाया है,
1: खुला चिड़ियाघर
0: जी।
1: पक्षी आए, उड़े, घूमे, आए, उड़े, अंदर पानी व्यवस्था सब हो, फूल पत्ती घास फूस सब हो, घोंसले बनाए, नीचे अंडे देवे, ऊपर पेड़ पे अंडे देवे, जैसे मोर नीचे बैठ के अंडे देता है, कम होने लग गए। तो हमारे यहाँ इलाके में मोर खूब हो गए, क्योंकि वो जो हमने रिजर्व वन बनाए उनमें नीचे बैठ करके मोर अंडा देता है, तो बच्चे ही बच्चे होते हैं मोरों के, या और दूसरों के कीट पतंगे बहुत होते हैं, तोते बहुत हैं, है ना, बहुत सारे पक्षी और होते हैं। जब रास्ते पे चलते हैं तो खरगोश दिखते हैं, वो हमारी गाड़ी के आगे आगे आगे चलने लगता है, हमें बिल्कुल धीरे धीरे चलाते हैं, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। और वो
0: ये तो एकदम ऐसा लगता है आप बच्चों की कहानियों में ले गए हमें, जहाँ पर बच्चे जो हैं, जैसे एलिस इन वंडरलैंड है, या ऐसा हमने पढ़ा है कहानियों में, जहाँ पर बच्चे जो हैं जानवरों के साथ रहते हैं। ये दुनिया आपकी बड़ी सुंदर है लक्ष्मण जी, और मैं समझता हूँ श्रोता साथियों आपको कभी भी समय निकाल करके लक्ष्मण जी के स्थानों पर जाकर के देखना जरूर चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी, मैंने पढ़ा आपने चूहों के लिए भी घर बनाया है, ये क्योंकि लोग तो जनरली सोचते चूहों को भगाना है, हटाना है, वो जैसे नासूर है जैसे हमारे लिए, लेकिन उनके लिए आपने क्यों घर बनाया?
1: हमने एक डिसीजन लिया और डिसीजन में ये कहा कि किसी भी जीव को नहीं मारना,
0: किसी
1: भी जीव को, प्रमोद धर्म होना चाहिए। तो एक सवाल उठा हमारी पदयात्रा के दौरान ही गांव की मीटिंग में कि साहब किसी भी जीवों को नहीं मारना, तो चूहों को क्यों मारते हैं लोग, उनको नहीं मारना चाहिए चूहों को? भाई नहीं मारना चाहिए। पर कोई बोला कि साहब चूहा क्या बैल की जैसे खेती में चलेगा, क्या क्यों नहीं मारेंगे? तो किसी ने ये भी कहा कि नेचर ने बनाया तो सोच के बनाया, हमारी बुद्धि कमजोर है कि चूहा क्यों बनाया हम नहीं समझ सकते, पर नेचर ने सोच के बनाया। इसलिए किसी एक आदमी ने कहा, रामकंड पोड़ ने लापोड़िया में, कि मैं चूहा घर बनाऊंगा और मेरे खर्चे से बनाऊंगा, तो उसने 20,000 रूपये उधारा ले और फिर चारों तरफ बाड़ लगा के उसमें अंदर बोर्ड लगाया कि गांव में चूहे न मारें, जिंदे चूहे यहाँ छोड़े। तो नेचर का काम है, वहाँ बिल्ली भी रहती है, वहाँ कभी भाल, वो
0: बाज।
1: बिल्ली, बाज, सांप, ये सब रहने लग गए, और वहाँ चूहे दिखते नहीं है। नेचर को कंट्रोल करने की चीजें नेचर ने दी है, अगर टाइगर नहीं होगा तो बहुत सारी जीव बढ़ जाएंगे, वो खेती में नुकसान करेंगे या जंगल को नुकसान करेंगे, तो उनको दौड़ाना, उनको भगाना, फिर कमजोर रहे उसको खाना, तगड़ा रहे वो जिंदा रहना, ये सारा नेचर में काम है। तो हमने चूहाघर भी बनाया, देवबने भी बनाई, खुला चिड़ियाघर भी बनाए, पक्षी विहार भी बनाए, और जगह जगह तालाब वगैरह ये घूमे, यात्राएं निकाली, रात को घूमते हैं, रात को नींद उड़ जाती है तो क्यों बिस्तर पर पड़े रहे, गोचर में घूमे, कुछ चीजों को देखें, वहाँ कितने प्रकार के जीव मिलेंगे रात को, उनको देखेंगे अच्छा लगता है, वो भी हमसे दूर नहीं भागते हैं, वो भी मुझे जानते हैं, रोज आता है भाई, ठीक है, ऐसी चीज।
0: साथियों, जैसे आप ये सुन रहे हैं लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि वो भले कर रहे हैं पक्षियों के लिए, भले वो कर रहे हैं पशु पक्षियों के लिए, भले वो जो भी कर रहे हैं वो पेड़ पौधों के लिए, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट जो है, जो परिणाम है, वो हमारी भलाई के लिए है। तो ये बहुत सुंदर सा फॉर्मूला उन्होंने बता दिया कि

0: पीढ़ी का, हमारे समाज का कल्याण दूसरों के कल्याण करने में है। अगर हम हमसे जो भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जो हो सकता है हमारे जितने सामर्थ्यवान नहीं है, अगर हम उनका केयर करते हैं, अगर हम उनकी पालना करते हैं, माँ प्रकृति को मदद करते हैं, तो हमारा केयर तो उसमें ऑटोमेटिकली समाया हुआ है, हमारा उसमें कल्याण ऑटोमेटिकली निहित है। और इस फॉर्मूले को लक्ष्मण जी ने बहुत शुरू से ही अप्लाई किया हुआ है। लक्ष्मण जी, आपने एक तो टीम तैयार कर ली अपने चारों तरफ जो आपके साथ चलती है, लेकिन आज मान लीजिए मेरे जैसा कोई युवा या कोई माता जो आज समझो रेडियो सुन रही है, या कोई बहन जो है वो कहीं दूर बैठ के रेडियो में आज आपका इंटरव्यू सुन रही है, उनको अगर महसूस हो कि मुझे भी कुछ करना है लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ, कोई छोटा ऐसा कुछ आपके पास आइडिया है जिसको हम शुरू कर सकते हैं?
1: मुझे जो मेरे जीवन में जो घटक हुई, हमने कहा ना कोई साथ नहीं था, कोई मेरी बात नहीं सुने, पर हम दो लोग निकले, तो मुझे वहाँ एक महसूस होता है कि आपका आइडिया ऐसा हो कि आप वो करें और लोगों को बता सके। मान लो कोई चोरी करे तो लोगों से छुपाता है ना, कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसा काम करें करते हुए उसको बताते रहे तो लोग जुड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उसके बारे में समझेंगे। मनुष्य के पास दिमाग है, कर्म है, कर्तव्य है, हम कोई काम करेंगे तो उसको लेने वाला होगा निश्चित। अगर आपके दिमाग में अच्छा विचार किसी के भी आता है और वो लोगों की भलाई का है, और लोग ही नहीं पूरी प्रकृति का भलाई का होना चाहिए, उसको लोग पकड़ेंगे और वो आगे बढ़ेगा और ये बढ़ के रहेगा, हम कभी हारेंगे नहीं। हमारी जीत इसमें होगी हम सभी जीवों के साथ रहें प्रसन्न होकर के, हमारी जीत किसी को मार करके नहीं, सभी जीवों के साथ प्रसन्न होकर रहें और उनसे बातें करें, उनके बीच में रहें, यही हमारा जीवन है। वरना किसी को मार करके, किसी जीव को मार करके हम बस नहीं पाएंगे, ये तो निश्चित।
0: लक्ष्मण जी, आप एक ऐसा उदाहरण है जिससे बातें करना चाहे तो हम घंटों बातें कर सकते हैं, और इसलिए चिड़ियों को भी आपके साथ घूमना फिरना पसंद है, पशु पक्षियों को भी आपके साथ रहना पसंद है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में वो दया, वो करुणा, वो प्यार सहज ही झलकता है। इसमें मैं समझता हूँ आपके परिवार का, आपके माता पिता का, आपके संस्कारों का और ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है जो आप आज हमारे सामने ऐसे एक उदाहरण के रूप में मौजूद है। लक्ष्मण जी, आखिरी सवाल कुछ मैं आपसे रैपिड फायर राउंड करूंगा, मतलब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको एक शब्द में उसका जवाब देना होगा, एक शब्द या दो शब्द में। और ये हमारे कार्यक्रम का एक अंतिम सेगमेंट है जहां पर हम एक सवाल पूछते हैं और जो हमारे वक्ता होते हैं उसको एक शब्द में या दो शब्द में बड़ा फटाक से जवाब देते हैं। जी, तो आप तैयार हैं इसके लिए?
1: हाँ, तैयार हूँ।
0: बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं। प्रकृति क्या है?
1: प्रकृति इस नेचर में अपने आप चलती है, अपने आप डिजाइन करती है।
0: क्या बात,
1: अपने शक्ति से चलती है, वही प्रकृति।
0: हम कहते हैं ना, ये मेरी प्रकृति है, नेचुरल है जो मेरे लिए, बहुत बढ़िया।
1: नेचुरल।
0: शांति क्या है?
1: सब कुछ जीवों के साथ हम प्रसन्न होकर के जागे और सोने के बाद भी प्रसन्न रहे, ये शांति।
0: बहुत बढ़िया। कर्म क्या है?
1: हमारे सामने जो कुछ कर्तव्य है उसको अगर करते हैं वही कर्म।
0: जो मेरे सामने है उसे मैं करूं, जो भी करना, हाँ, जो करणीय है, जो भी कर्तव्य है जिससे, हाँ, मुझे करना है वो करें। बिल्कुल,
1: वो मेरा कर्तव्य मेरे सामने आते ही मैं वो करूं, सुन के उसको टालूं।
0: जी, वो बहुत बढ़िया। धर्म क्या है?
1: जो एक अच्छी शुरुआत में मैं धारण कर लूं और मैं मेरे जीवन में अपना लूं, वही मेरा धर्म।
0: तो जो अच्छी बात है उसको मैं अगर धारण करूं तो धारणा ही मेरा धर्म है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देश क्या है?
1: मेरी साथ जो मेरी भूमि और मेरी जो परिधि है उसमें मेरा जो प्रभाव है वही मेरा देश है।
0: बहुत सुंदर, मतलब ये तो बहुत गूढ़ है और बहुत डीप है कि मैं जिस भूमि पे खड़ा हूँ और मेरी परिधि जहाँ तक की है वो मेरा देश है। बहुत बढ़िया। भारत क्या है आपके लिए?
1: मेरे लिए भारत एक वो संदेश है जिसमें बहादुर लोग हुए, देश की रक्षा की है।

0: वही मेरा भारत।
1: तो भारत एक संदेश है जिसमें हौसला, हिम्मत, देशभक्ति समाई हुई है। लक्ष्मण कौन है?
0: लक्ष्मण वो है जो मेरा लक्ष्य के आधार पर मैं चलता हूँ, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरा विचार है, वही मैं खुद हूँ जो मेरा लक्ष्य है, वही मेरी लक्ष्मी है मेरा लक्ष्य, कोई पैसा रुपया मेरा लक्ष्य नहीं है।
1: सुना साथियों, लक्ष्य ही मेरा लक्षण भी है और लक्ष्य ही मेरी असली लक्ष्मी भी है। और ये भाव, ये सारे उद्गार आप सुन रहे थे लक्ष्मण सिंह लकोड़िया जी से, जो कि भारत सरकार ने जिन्हें 2023 जनवरी मास में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। किस लिए? जीवन को बचाने के लिए। उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने प्रयासों से जल जीवन को बहुत बहुत प्यार से संजोया है और वो लोगों को यही संदेश दे रहे हैं, देते रहे हैं कि आइए एक साथ मिलकर के समझते हैं, समझाते हैं और माँ प्रकृति को मदद करते हुए अपने और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। लक्ष्मण जी से बात करते हुए साथियों बहुत कुछ मैंने सीखा, मुझे लगता है आपने भी सीखा होगा। एक चीज जो मैं यहाँ से आज लेकर के जा रहा हूँ कि जो भी मेरा कर्तव्य है, जो मेरे सामने है, उससे मैं पीछे हटूं नहीं और ऐसा ही कोई ना कोई मैं आइडिया या कर्म सोचूं और करूं जिससे मैं दूसरे के साथ शेयर कर सकूं। जैसे उन्होंने हंसी में कह दिया कि जब कोई चोरी करता है वो दूसरे को बताता नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है वो दूसरे को बता सकता है। लेकिन जब इस काम को हम करने निकलते हैं तो हमारे सामने बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत अपमान होगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने हमें ये भी बताया कि सही काम करते हुए जो आपने अपमान सहे हैं वो आपको आने वाले समय में सम्मान जरूर दिलाएंगे। तो इसीलिए आज के हमारे इस एपिसोड से बहुत सारी बातें लेने को थी, मैंने समझा आपने भी लिया होगा। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा। यशस्वी भारत कार्यक्रम आपके लिए हर बार ऐसे ही एक अनूठे व्यक्तित्व को सामने लेकर के आएगा जिससे भारत यशस्वी बनता है। ऐसे यशस्वी भारत पुत्रों को, ऐसे यशस्वी भारतीय नागरिकों को हम इस कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने लाते रहेंगे। 90.4 FM रेडियो मधुबन आप सुन रहे थे साथियों, मैं आज शांतनु आपसे लेता हूँ अलविदा। बहुत बहुत नमस्कार, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: ठीक है साहब, नमस्कार।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसन भांडण आणि गाणं सगळं शेअर करायचं। जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
3: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
2: मनात पीठ वाजले की शरीर अबोब फिरकत। त्याचसोबत
4: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
2: जुन्या गाड्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
5: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: सबके कदम देखो रम पम पम। उठे सबके कदम देखो रम पम पम।

0: कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो
1: उठ सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम

0: रमन जब हम तुम
1: हम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो कभी खुशी कभी गम सारा रंग हम

0: को भी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं नीतू जैन। आज मैं आपको संतुलित आहार, जीवन का आधार, इस विषय को लेकर अपना चिंतन आपके साथ शेयर कर रही हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आप सभी ने यह तो सुना ही होगा, इस निरोगी काया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संतुलित आहार। मानव जीवन की शैली के तरीकों में बदलाव

0: और व्यस्त दिनचर्या में पौष्टिक भोजन का अभाव, यह दोनों मनुष्य शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। भारत में विदेशी भोजन का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। भारतीय भोजन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल न होने की वजह से विदेशी भोजन भारत के लोगों के भोजन शैली को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में हिंदुस्तान की हर गली कूचे में लगने वाले चाउमीन, मोमो, फास्ट फूड के स्टॉल हमारे पारंपरिक भारतीय भोजन को चुनौती दे रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है स्वस्थ और संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर की आवश्यकताओं के सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर लिया जाता है, जिससे हमको एक स्वस्थ जीवन शैली जीने में मदद मिलती है। एक स्वस्थ आहार में क्या शामिल होता है? एक ऐसा आहार जो हमारे शरीर को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, ऐसा भोजन संतुलित स्वस्थ आहार कहलाता है। दूसरा प्रश्न, किस तरह का भोजन हमारे शरीर के लिए अधिक पोषण युक्त होता है? ऐसा भोजन जो बहुत सारी उपजाऊ सब्जियों और फलों के उपयोग से बनाया हो, ऐसा भोजन जिसमें शक्कर युक्त खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में अक्सर महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसका यदि बहुत अधिक सेवन किया जाता है तो इससे वजन बढ़ सकता है। वयस्कों के लिए प्रतिदिन 6 ग्राम नमक पर्याप्त है। अगर हम ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। उचित संतुलित और स्वस्थ भोजन अन्य बीमारियों के साथ हृदय रोग, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करता है और यह अधिक ऊर्जा देता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सुधार भी कर सकता है। आज के विषय से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप इसकी प्रॉपर मात्रा में जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने डाइटिशियन की भी सलाह ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कितनी मात्रा में कैसे अधिक पौष्टिक आहार लिया जाए। स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ प्रयोग में ले, क्योंकि स्वास्थ्य स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। तो श्रोताओं, आज के इस विषय में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए चिंतन के साथ। धन्यवाद।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: एंगर इज अ वेपन, जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में, जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल, सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: धक धक
1: धक धक
0: धक धक
1: जैसे
0: धक धक
1: चिराहरी सावन बरसे।
2: सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: बाजू।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: है जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम, बाजू।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
2: थैंक यू सो मच।
1: हम प्यार की बात कर रहे थे, और प्यार भी कब, जब बहुत बहुत बहुत इंसान को जरूरत होती है उसकी।
2: राइट।
1: खुशी में तो सभी कर लेते हैं, अच्छे समय में तो सभी कर लेते हैं। बहुत अच्छा था लास्ट एपिसोड, लेकिन एक लाइन मैंने और पढ़ी थी, दोबारा पढ़ता हूँ। परफेक्ट मैच्योरिटी इज व्हेन अ पर्सन हर्ट्स यू एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एंड डोंट हर्ट देम बैक।
2: परफेक्ट।
1: अब देखिए, जब एक इंसान लव चाहता है और उसको बहुत बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी गलती करके आ गया, कोई बड़ा नुकसान करके आ गया, बिजनेस डील रॉन्ग करके आ गया, अब इस वक्त वो ना चाहते हुए भी उसने फैमिली को तो हर्ट कर ही दिया ना।
2: राइट। इस वक्त ना चाहते हुए भी उसने फैमिली को हर्ट कर ही दिया। मतलब उसने कर्म ऐसा कुछ किया, कर्म ऐसा किया जिससे परिवार हर्ट हुआ। बट देन व्हाट डज इट से, इफ समवन हर्ट्स यू, अंडरस्टैंड देम एंड डोंट हर्ट देम बैक। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम हर्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हैं किसी, इवन हर्ट तो बहुत बड़ी चीज के लिए भी नहीं ना, छोटी छोटी बात के लिए भी हो सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हम हर्ट हो गए हैं। तो उन्होंने जो किया, हम हर्ट हो गए, लेकिन हम अब ऐसा कुछ ना करें या ऐसा कुछ ना कहें जिससे, क्योंकि हम हर्ट हैं, हम वो कह दें या कर दें जिससे सामने वाला भी हर्ट हो जाए, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम अ कंटिन्यूअस विशेष साइकिल। आप सारा दिन में आज देखें, एक चीज हो रही है जो बहुत कहीं कॉमन हो गई है, हम में से मेजोरिटी ये कर रहे हैं, हम लोगों के व्यवहार को कॉपी करते हैं। बहुत सिंपल, इतना हर्ट में भी नहीं, ये तो बड़ी बात, छोटी बात। मतलब जैसे एक पार्टी में गए या कहीं भी गए जहां लोग हैं, किसी ने मेरे से प्यार से बात की, हमने प्यार से बात की, किसी ने मुझे देखकर बात ही नहीं की, हमने भी बात करना जरूरी नहीं समझा, किसी ने मुझे देखकर मुंह ही उधर मोड़कर इग्नोर करके, वेरी ऑब्वियस इग्नोर करके उस तरफ मुड़कर चले गए, तो हमने भी कहा ठीक है नहीं बात करनी, तो हमें भी क्या जरूरत थी आपसे बात करनी।

0: मैंने तो आपको देखा ही नहीं।
1: सुनने के लिए नहीं है, मुझे चेकिंग के लिए है कि उन्होंने मुझसे अगर बात नहीं की, कितने सारे रीजंस हो सकते हैं। देखा नहीं, देखकर रजिस्टर नहीं हुआ, मूड ठीक नहीं था, या खुद किसी बात की वजह से, जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं इतने बड़े व्यक्ति से जाके बात करूं, इसलिए बात नहीं की। रीजंस कितने सारे हो सकते हैं, या हर्ट है मुझसे, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ऊंचे हैं, मुझसे बात करना उनके लिए जरूरी नहीं। तो रीजंस तो कितने सारे हो सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू ऑल दैट। फॉर मी, व्हाट डू आई वॉन्ट टू डू, मैं चाहती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं प्यार से बात करूं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी दिस नाउ। अगर उन्होंने बात नहीं की या कुछ भी किस तरह से बात की, अगर हम उनको कॉपी नहीं करें, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू चेंज एनी रिलेशनशिप टुडे। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू बी हैप्पी, टू रेडिएट हैप्पीनेस एंड टू चेंज एनी रिलेशनशिप। डोंट कॉपी, बिकम दैट व्हाट इज नेचुरल एंड वेट फॉर देम टू कॉपी यू, क्योंकि वो कॉपी करेंगे।
2: व्हाट इज नेचुरल सिस्टर?
1: व्हाट इज नेचुरल? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे। लेट्स से वो इन लॉज को अच्छा नहीं लगा कि बहू ने आके मॉर्निंग में विश किया, तो उनके लिए राइट की डेफिनेशन क्या थी? उनके लिए राइट की डेफिनेशन ये थी कि वो सुबह उठकर आए, गुड मॉर्निंग बोले, इवन अ सिंपल थिंग लाइक दैट। तो क्या चाहिए? चाहिए कि वो आके प्यार से गुड मॉर्निंग बोले। नहीं बोला, उसने नहीं बोला, हम बोल सकते थे, क्योंकि अगर हम बोल देते तो बोलकर हमें अच्छा लगता, इंस्टेड ऑफ सिटिंग लाइक दिस होल्डिंग इट, विश भी नहीं करते, ये ऐसे है वैसे है।
2: लोगों के त्योहार खराब हो जाते हैं, न्यू ईयर्स खराब हो जाते हैं, वेट कर रहे हैं कि अभी तक फोन नहीं आया इनका, मुझे मैं तो बड़ा हूँ, घर का ही बड़ा हूँ। एक बार मैं गोल्फ खेल रहा था तो मेरे रिश्ते में किसी का फोन नहीं आया जिसका एक्सपेक्टेड था, तो गोल्फ खेलते खेलते मैंने बोला, यार इन लोग कैसे हैं, बर्थडे पे भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, क्या है, कैसा रिश्ता है। तो मैंने फोन उठा के किया, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर, खेलते खेलते बीच में गैप था, ओ मैं आपको करने ही वाली थी, मैं ये भी था वो भी था। एक बार हुआ, दूसरी बार फिर किया, दूसरी उसमें अभी हालत होगी, वो सीख गए कि वो खुद करते हैं
1: कॉपी। दिस इज इट, यही तो करना है सिर्फ। जो आप सी, एक है उन्होंने आपको विश नहीं किया, ठीक है, सो यू आर एक्सपेक्टिंग, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो विश करेंगे, उन्होंने नहीं किया, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हर्ट, गुस्सा भी। अब जितनी देर हम उसमें हैं, हमारी भी तो स्थिति अच्छी नहीं है, हम चाहते थे कि हम प्यार से बात कर लें, नहीं हुआ। अब हमारे पास दो चॉइसेस है, गुस्से में रहे, हर्ट क्रिएट करें पता नहीं कितनी देर या कितने दिन, या उनकी ना कॉपी करें, लेकिन जो हम चाहते थे कि वो करें वो हम कर दें। और हम करेंगे जब, तो 99% तो सही, वो कॉपी करेंगे, वो कॉपी करेंगे,
2: तो हुआ है ना?
1: ये कॉपी करेंगे, ये सबके साथ होता है, सिर्फ अभी हम इसको रूल को एवरी टाइम विद एवरीबडी अप्लाई करते हैं। जस्ट कीप दिस फिक्स्ड हियर, सारा दिन चलते मिलते, छोटी छोटी बातों में या बहुत बड़ी बातों में कॉपी नहीं करेंगे। उन्होंने ठीक से बात नहीं की, उन्होंने जोर से चिल्ला दिया, ओके, उन्होंने झूठ बोला, ओके, उन्होंने ये किया, ओके, बट व्हाट डू आई हैव टू डू? नॉट कॉपी,
2: आई हैव टू बी दी ओरिजिनल,
1: दी ओरिजिनल एंड व्हाट? माय ट्रू पर्सनालिटी। वो ट्रू पर्सनालिटी क्या है? आई वॉन्ट के मेरा रिश्ता उनके साथ अच्छा हो जाए, यू नो एवरीबडी इज सेइंग लाइक दिस, आई वॉन्ट के ये रिश्ता।
2: अपना इंडिविजुअलिटी, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य भी बोल सकते हैं।
1: इट्स माई,
2: जैसे वो कहानी आती है किस पानी में वो ब्राह्मण नहा रहा था, तो बार बार वो क्या कहते हैं उसको,
1: बिच्छू,
2: बिच्छू बार बार वो पानी से उसको वो किनारे रख रहा था, वो बार बार फिर
1: डंक मार रहा था,
2: डंक मार रहा था उसको, फिर पूछा, बोले मैं वो अपना डंक मारने की उसका काम, उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, जो भी है उसका धर्म है, मेरा धर्म ये।
1: एब्सोल्युटली। अब इसमें लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप अपना करेंगे, सामने वाला भी कॉपी करेगा। एंड अब क्या होगा, जैसे आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो करे, वो ऊपर से तो करेंगे। सपोज आपका मन नहीं है मेरे से बात करने का, लेकिन क्योंकि मैं आकर प्यार से करूंगी, आप चाहे ऊपर से ही सही, आप जरूर करेंगे। जैसे ही आप ऊपर से ही सही करेंगे, मैं फिर उसी तरह रिस्पॉन्ड करूंगी, आई विल टॉक टू मोर लाइंस और बेटर, उसका आप रिस्पॉन्ड करेंगे।

0: धीरे धीरे अगर कॉन्फ्लिक्ट था भी वो कौन से डायरेक्शन में अब जाना शुरू कर जाएंगे, रिजोल्व होने के, जहां ऊपर ऊपर से ठीक होने लग गया तो धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते अंदर की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर रुक गए, आउटसेन ऑल्सो वाई नॉट,
1: फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ रहा था 74-75 की बात है, तो डांस क्लास में मेरा मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल बैठा। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करूंगा, टीचर आने दो। तो पहले मैं उदास था बहुत, फिर मैंने क्या कि जबरदस्ती के स्टेप्स किए, तो आउटसाइड से जब बॉडी को हिलाते अपने आप मन ठीक हो गया।
0: बिल्कुल, आई रेड समवेयर इन द न्यूज़पेपर द अदर डे कि आपका मूड बहुत उदास है, अगर आपका मन बहुत परेशान है, सिर्फ एक स्माइल कीजिए। अब हम नॉर्मली सीखते हैं, क्योंकि इनसाइड आउट है ना डीपर लेवल पे, कि मन उदास है तो क्या स्माइल करेंगे, स्माइल करने का मन भी नहीं करता है उस टाइम, और वो स्माइल कितनी आर्टिफिशियल है, क्या फायदा है ऐसी स्माइल के, झूठा। अब उसमें लिखा था बहुत ब्यूटीफुल कि नहीं भी मन है, रो रहे हो ना अगर अंदर से, तो भी स्माइल कीजिए। एंड इट सेड वेरी ब्यूटिफुली द एक्ट ऑफ स्माइलिंग, द एक्ट ऑफ स्माइलिंग ट्रिगर्स केमिकल्स इन द बॉडी विच विल फाइनली चेंज योर माइंड।
1: ब्यूटिफुल, आईने में देख के करना चाहिए
0: दिस इज, क्योंकि एटलीस्ट आप एक अलग डायरेक्शन में, चाहे बेमन से ही, जो हमने पहले भी देखा था कि गुस्सा अंदर अभी भी आ रहा है, अगर बीइंग लेवल पे, उसको डूइंग लेवल पर नहीं लेकर आना है, अंदर है बाहर नहीं लेकर आना है, बाहर को डिफरेंट कर दो। तो इनसाइड आउट नहीं भी चेंज अभी ला पा रहे हैं, आउटसाइड भी अगर चेंज ले आए तो वो आउटसाइड भी इनसाइड को धीरे धीरे, लेकिन वो अटेंशन फिर हम रखेंगे, ऐसा नहीं हमारी जीवन बीत जाए कि हम आउटसाइड बहुत मीठे हैं और अंदर तो, बट द प्रोसेस बिगिंस, एक यात्रा एक अलग डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो एनर्जी को चेंज कर देगी। तो ये हमें, इसलिए ये जो लाइन आपने पढ़ी, इफ समवन हैज हर्ट यू अंडरस्टैंड देम एंड मेच्योरिटी मीन्स डोंट हर्ट देम बैक, दिस इज परफेक्ट मेच्योरिटी। ये अब हम सारा दिन कर सकते हैं, एनर्जी, बिकॉज जो हम सोचते हैं फील करते हैं वो एनर्जी है। एनर्जी जब हमारे पास आती है किसी से भी, आप जो मेरे लिए सोचेंगे वो एनर्जी है जो मेरे पास आती है, कोई भी एनर्जी के साथ तीन चीजें हम कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट इट, अब्सॉर्ब इट और ट्रांसफॉर्म इट।
1: थोड़ा सा समझाएंगे आप?
0: कोई भी एनर्जी, इवन लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, कोई भी एनर्जी के साथ हम तीन चीजें कर सकते हैं,
1: रिफ्लेक्ट इट,
0: अब्सॉर्ब इट, ट्रांसफॉर्म इट।
1: ट्रांसफॉर्म,
0: हाँ, मतलब आपने जो मुझे भेजा, आई रिफ्लेक्टेड बैक।
1: सेम,
0: आपने गुस्से से बोला, मैंने भी गुस्से से बोला, आपने गलती की, मैंने भी गलती की, इजी, रिफ्लेक्टेड बैक। सेकेंड, अब्सॉर्ब इट, मतलब आपने किया, मैंने वापस नहीं किया सेम, लेकिन अंदर
1: पी गया,
0: लेकिन अब्सॉर्ब किया, मतलब कंज्यूम कर दिया उस एनर्जी को। थर्ड, ट्रांसफॉर्म इट, आपने किया, उसको बदल कर आपके पास वापस भेज दिया। ये बदलना, जैसे बच्चा रोता है, बच्चा गलती करता है, बच्चा मस्ती करता है, मदर सेम नहीं करने लग जाती उसके साथ, मतलब लेती है लेकिन उसको चेंज करके उसको प्यार ही करती है उसके बाद। हम ये सब के साथ कर सकते हैं।
1: मदर क्या लेती है?
0: एक बच्चा, छोटा बच्चा है,
1: हाँ?
0: वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गलती भी कर रहा है, छोटा है जब, मदर क्या करते हैं उसकी एनर्जी को, वो थोड़ी उसके साथ रोने लगती है, वो जोर से चिल्लाता है तो वो उससे भी जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, वो तंग कर रहा है तो वो भी तंग करना शुरू कर देती है, नो, या वो उसकी गलती को, तंग को, रोने को देखकर वो खुद उदास हो जाती है।
1: आ रहे, 2 मिनट बस,
0: और आके फिर क्या करूंगी,
1: आप ही के लिए दूध गर्म कर रही थी, आप ही के लिए कर रही थी,
0: और फिर उसके बाद आकर क्या देगी,
1: प्यार देगी, खाना के,
0: ट्रांसफॉर्म एनर्जी, ना रिफ्लेक्ट किया, ना अब्सॉर्ब किया, एनर्जी को लिया, समझा और ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये हम सबको आता है करना, ये हम सबको आता है, इट्स जस्ट दैट जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमारी ईगोज जब ब्लॉक करती है हमारी एनर्जी को, तो हम

0: जहां फियर है, जहां हम नहीं रिएक्ट कर सकते, जहां पोजीशन का फियर है, रिश्ते का फियर है, हम अब्सॉर्ब कर जाते हैं। जहां फियर नहीं है वहां तो हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो आपने दिया वो आपको वापस। लेकिन जहां प्यार है वहां हमें उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, एंड वी कैन डू दैट विद एवरीबॉडी। हम उसको हर एक के साथ कर सकते हैं।
1: मेरी गुरु हमेशा कहती थी, बेटा बदला नहीं लेना, बदल जाना। आज समझ में आया मीनिंग?
0: बदल जाना, बदल कर दिखाना। गाना है ता सुंदर, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। और अगर आप बदल कर दिखाएंगे, आप जग को बदल देंगे, बिकॉज आपके परिवर्तन को देख अनेक परिवर्तन होंगे। बिकॉज सी इट्स अ वाइब्रेशन दैट रेडिएट्स। इफ आई एम नॉट इन अ गुड मूड, आई डोंट टॉक प्रॉपरली टू यू, आई यूज रॉन्ग लैंग्वेज, रॉन्ग एनर्जी, एवरीथिंग रॉन्ग, बट आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, आप सेम तरह से मुझे नहीं करते, आप उसको अब्सॉर्ब भी नहीं करते, विच मीन्स आप अपनी स्थिति को अच्छा रखते हैं। एंड फिर आप मुझे समझकर, जो इसने कहा कि अंडरस्टैंडिंग देम, आप ट्रांसफॉर्म करके वो एनर्जी को वापस भेजते हैं, तो आप प्रोटेक्ट हो गए पहले, योर हील्ड, आपकी एनर्जी फील्ड एकदम स्ट्रांग रही। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसने मेरे लिए कितना कमाल किया। आपने वो जो एनर्जी वापस भेजी, मैं उस एनर्जी को यूज करूंगी अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दिस इज व्हेन आई विल नाउ स्टार्ट कॉपिंग यू, मीन्स आपकी एनर्जी ने मेरी हीलिंग करने शुरू की। जस्ट इमेजिन अ सीन, इसको विजुअलाइज करने की जरूरत है। अगर हम सब एक दूसरे की कॉपी करने की बजाय, स्पेशली नेगेटिव में, अगर हम ये प्यार की एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, और छोटी चीजों में, अभी इसको बड़ी चीजों में नहीं करना, उसने गलत बोला मैं फिर भी अच्छा बोलूं, उसने बात ही नहीं की मैं फिर भी करूं, उन्होंने फोन नहीं किया मैं फिर भी करूं, उन्होंने विश नहीं किया मैं फिर भी करूं, ये छोटी चीजों में भी अगर हम करें तो वाइब्रेशन कैसे फैल जाएगी सारे। वी आर ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू हार्मनी। इट इज जस्ट सो सिंपल। एंड जहां हम ये नेगेटिव चीजों में कॉपी करते हैं, उसने ऐसा किया ना तो मैं भी ऐसा करूं, उसने ऐसा किया, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम हार्मनी टू कॉन्फ्लिक्ट। हार्मनी थी, सब अच्छा था, हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चले जाते हैं। दादी जी जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वही बहुत सुंदर बात हमें सिखाती है, कहती हार्मनी मीन्स हार मानी। इट्स ओके, आपने ये भेजा, मैंने हार मानी, मतलब मैंने सेम चीज नहीं भेजनी आपको वापस, मेरे पास नहीं है आपके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की एनर्जी। मैं हार मानी तो हार्मनी हो गई। ये छोटी चीज आज हम प्रैक्टिस करते हैं सारा दिन।
1: हार वाली बात से एक ऐसे इमेजिनेशन मैंने किया कि जब आप किसी को हार पहनाते तो वो झुक जाता है।
0: सो स्वीट,
1: आपने हार पहन भी लिया।
0: एब्सोल्युटली। और फिर क्या होगा, जब आप झुकेंगे आपका झुकना दूसरे को अंदर से झुका देता है। ये एक लॉ है, आपकी ह्यूमिलिटी ना, अगर कोई ऐसे अकड़ के खड़ा है, हम भी अकड़ जाए तो वो और अकड़ जाएगा।
1: ये बहुत सुंदर डायलॉग था हमारे एक मेरे फेवरेट एक्टर थे देव साहब। हाँ। उनकी फिल्म में मुझे हमेशा बचपन से याद है ये लाइन। उन्होंने कहते हैं कि मैम साहब ये आप हार ले लीजिए, आपके गले में ये हार नहीं जीत लगेगी।
0: दिस इज इट,
1: देखो
0: दिस इज इट। इन छोटी छोटी चीजों को जो हम सारा दिन हमें मालूम है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वाह वाह भी करते हैं उसकी, लेकिन उसको जीवन में फिर ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं। उस टाइम ऐसे हो जाते हैं, उन्होंने किया तो फिर मैं क्यों करूं। छोटा सा थोड़ा सा झुकेंगे वो कई गुणा झुक जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो झुकाने के लिए नहीं है किसी को, वो मेरी खुशी के लिए है, उनको खुशी भेजने के लिए है, एंड रिश्ते में हार्मनी, प्यार कॉन्स्टेंट।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर। जब जागे तब सवेरे, तो आज समझ में आए तो आज ही शुरू कर ले।
0: डेफिनेटली।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। नमस्कार।
2: परफेक्ट मैच्योरिटी इज व्हेन अ पर्सन हर्ट्स यू एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एंड डोंट हर्ट देम बैक। व्हेन वी रिस्पॉन्ड टू पीपल इन द सेम मैनर as they have behaved with us, we are copying them. When we keep copying each other, it is a continuous exchange.

0: of the same quality of energy. Every time we copy negative behaviors of people, we are losing our own identity. We become an imitation of all the people we meet and stop using our original sanskars of love, respect and harmony. Irrespective of the other's behavior, be your original self and radiate your qualities of love and humility. They will respond in the same way. We will be happy while creating and radiating the energy, and also when we receive it.
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका हम सफर सन, लेकर आया हूँ रेडियो प्रोग्राम। तो आइए आज के शो में हम लोग बहुत सारे 50s और 60s के खूबसूरत गाने सुनेंगे, और खूबसूरत गानों का कलेक्शन है खुशबू के पास। तो खुशबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है खाबों के सफर में।
1: नमस्कार मित्रों, मैं खुशबू। चंद लाइनें हैं, एक झलक जो मुझे आज तेरी मिल गई, मुझे फिर से आज जीने की वजह मिल गई। मित्रों, आज के खाबों के सफर में हमारा पहला गाना बैठे जी से। तो आइए आज का पहला गाना कौन सा है सुनते हैं।

0: ओके खुशबू, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया है। ये जो गाना है जितेंद्र पर पिक्चराइज किया गया था 1968 में मेरे हुजूर इस फिल्म में, और इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था। कहते हैं देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: फलक पे जीते

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनिया आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। ये हमारे प्यारा सा जो गीत है आपने सुना, जितेंद्र पर चराइज किया गया था, जहाँ पर उसकी महबूबा चल बसती है, तब जितेंद्र उनकी याद में उनके गम में इस गीत को गुनगुनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और खुशबू अब आगे कौन सा गाना आप सुनाने वाले हैं?
2: कश्म कश ये होती है कि इंतजार करते करते रास्ते भी थक जाते हैं, कि कब मेरा साजन आएगा, कब मैं उसके साथ दो चंद बातें करूंगी। पर इंतजार करते करते मेरी आंखें भी थक जाती हैं, खिड़कियों से देखती रहती हूँ। तो आइए सुनते हैं इसी पे ये गाना।

ओके नमस्कार, बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया 1961 का, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ, राहुल देव बर्मन का संगीत और छोटे नवाब इस एल्बम से जो 1961 में रिलीज हुई थी। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ, कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में चाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। अब आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा खुशबू आगे वाला जो खूबसूरत गाना आपके पिटारे में है उसके बारे में बताइए।
1: मित्रों, पहले मेरी कशमकश थी कि मेरा साजन घर नहीं आ रहा है, रो रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे, डर था कि कहीं मेरा साजन मुझसे रूठ तो नहीं गया है। पर अब मेरी कशमकश दूर हुई, क्योंकि मुझे मेरे साजन का जो इंतजार था वो अब पूरा हुआ, वो घर आ गया। मेरी आंखों में जो आंसू थे अब खुशी के हैं, रास्ते भी खिलखिला के फूलों से भर गए हैं, और बारिश भी फूलों की होने लगी, और बिजलियां भी थम चुकी हैं। मेरा इंतजार खत्म हो गया। इसी खुशी के साथ ये गीत

ओके, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। चलिए, साजन का इंतजार था, अब साजन घर आ गया है। 1951 का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आवारा फिल्म से शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत नगमा आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों के साथ बातें हो रही हैं और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं और खुशियां बढ़ती जा रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा एक खास खूबसूरत खुशी वाला गीत जरूर सुनाइए खुशबू जी।
1: इंतजार खत्म होता है, इंतजार के बाद खुशी आती है, हंसी आती है, बहुत जीने का मन करता है। और जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनकी तारीफ भी होती है। जब एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं तो उस तारीफ में कुछ एक लाइन ऐसी है, तुम जरा सी कम खूबसूरत होती तो शायद और भी ज्यादा खूबसूरत होती। मित्रों, जब कोई अपना आपकी तारीफ करे आपको बहुत खुशी होती है, अच्छा भी लगता है, सोचते हैं कि मेरी तारीफ और ही करते, और ज्यादा करो, और ज्यादा करो, बहुत अच्छा सा लगता है। वो भी प्यार के बात करे तो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो आइए सुनते हैं अपनी तारीफ पे गाना। गोरी गोरी चांद से मुख पर
0: ओके, खुशियां मिल ही जाएगी एक दिन रोते रोते ही सही। कमजोर दिल के हैं वो लोग जो हंसने की सोचते ही नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखे हैं अंधेरी रातों में। ना समझ है वो जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हम लोग सुनेंगे। राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत, मुकेश साहब का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म अनीता 1967 का। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉपुलर कलेक्शंस आप सुन रहे हैं 50s और 60s के। तो खुशबू, आप क्या बताना चाहेंगी आप?
2: दोस्तों, प्यार, प्रेम, इश्क, मोहब्बत, ये सब ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब हम इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया में आके कुछ लायक बन जाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तब हम कुछ ये सब करने के लायक होते हैं। क्योंकि उन सब से पहले एक चीज और है, माँ। माँ को हम कैसे भूल सकते हैं? कभी नहीं, और कोई ऐसा इंसान है भी नहीं जो भूल जाए। मुश्किल, मैं तो नहीं सोच सकती कि हाँ भी कोई अपनी माँ को भी भूलता होगा, और भूल जाता है तो शायद उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि वो अपनी माँ को भूल सकता है। जब हम कभी अपनी माँ से नाराज हो जाते हैं तो हमें प्यार करती है, मनाती है, दुलार करती है। माँ का प्यार इस दुनिया में तो हम कभी चुका ही नहीं सकते।
1: चलिए खुशबू, बहुत ही अच्छी बात आपने माँ को याद दिलाया है, और माँ को सचमुच कोई नहीं भुला पाता। लेकिन ऐसी माँ और बेटी का जो प्यार है वो जैसे गुड़ियों का खेल के साथ भी जोड़ा जा सकता है। और छोटी बच्चियाँ, खास करके जो गुड़िया होती है, उस समय माँ का दुलार बहुत ज्यादा पाती हैं। तो आइए, ऐसा ही कुछ भाव भरा एक गीत मुझे याद आ रहा है खुशबू, 1964 में फिल्म आई थी दोस्ती, जी हाँ, जिसे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, लता मंगेशकर जी ने इसे गाया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से सवारा था। तो आइए, गुड़िया हमसे कब तक रूठी रहोगी, ये खूबसूरत नगमा आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। बहुत ही अच्छा सफर चल रहा है, यहाँ पर प्यार ही प्यार आपको मिल रहा है। खुशियों से भरा हुआ बहुत ही खूबसूरत गाना आपने अभी सुना। तो आइए कहते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं।
1: दोस्तों, ये तो गई माँ की बात। आगे जो गाना है, तुम मिले तो लगा मुझे ऐसे, पिछले जन्म की बिछड़ी मेरी रूह मिल गई हो, मुझे जैसे इंतजार तो बस उस दिन का है, जिस दिन तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम लगेगा। मित्रों, तो आइए सुनते हैं ये गीत।
0: जी खुशबू, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है। ये बहुत ही सस्पेंस फिल्म था, 1965 में ये फिल्म आई थी, महबूब साहब पर पिक्चराइज किया गया था। और जो गीत आपने याद कराया है, हसरत जयपुरी साहब ने इसे लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था और शंकर जयकिशन का चित्रपाट। गुमनाम फिल्म का ये खूबसूरत नगमा, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आइए आगे बढ़ते हैं। खुशबू, बहुत ही प्यारे से गीत आपने सुनाए हैं, अब किस गीत की तरफ आपका इशारा है?
2: दोस्तों अगला गाना है गुमसुम सा ये जहां ये रात ये हवा। जिंदगी में कुछ चीजें भुलाई नहीं जा सकती, मेरी जिंदगी में सब कुछ सिर्फ तुम ही हो। थोड़ी मैं, थोड़ा तुम और थोड़ी सी मोहब्बत, बस इतना काफी है जीने के लिए। आइए सुनते हैं ये गीत गुमसुम सा ये जहां ये रात ये हवा।
1: ओके ओके, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ गीत आदत और हेमंत कुमार साहब का गाया हुआ ये गीत है। इसे संगीत से सवारा था हेमंत कुमार साहब ने ही 1960 का। ये खूबसूरत नगमा अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: दुनिया झुकती है इस फिल्म का आपने गीत अभी सुना, गीता दत्त और हेमंत कुमार सायवा की आवाज में। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पुराने 50s एंड 60s के गाने आप सुन रहे हैं और खुशबू के पास बहुत ही अच्छे कलेक्शन है। तो आइए खुशबू, आप कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं?
1: मित्रों, मौसम के साथ साथ इंसान का बदलना अच्छा नहीं लगता। उस समय हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो ये नहीं देखता कि मैंने ऐसा क्यों किया। खैर वो सब छोड़ो, मन भी कुछ चीज है, क्योंकि मन कभी उदास और कभी बहुत खुश। पर आज मेरा मन बहुत खुश है, पता है क्यों? मौसम भी हंसी और साजन भी साथ हो तो क्यों ना मन खुश हो। और ये सब होने के साथ साथ फूल, हवा, बारिश, पहाड़ की जो सुंदर नजारे हैं वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसी के साथ सुनते हैं ये गीत, देखते हैं कौन सा गीत है।

के बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना रहे हैं 1969 का, आपने याद कराया आराधना फिल्म का। ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, आशा और रफी साहब का गाया हुआ है, सचिन देव बर्मन का।

गीत और बहुत ही पॉपुलर गाना है, हिट गाना है, गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है खली खली। तो आइए सुनते हैं इस गीत को, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो बूंदी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं, ख्वाबों के सफर में, और मैं हूं आपका हम सफर सनी, और मेरे साथ खुशबू है जिन्होंने बहुत ही अच्छे कलेक्शन आप सभी को सुनाया है। तो आइए, आखिरी मोड़ पे कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं?
2: देखिए ना दोस्तों, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। रोने की सजा है ना रुलाने की सजा है, ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। हंसते हैं तो आंखों से निकलते हैं आंसू, ये उस शख्स से दिल लगाने की सजा है। रात देर तक तेरी दहलीज पर बैठी रही आंखें, खुद ना आना था तो कोई ख्वाब ही भेज दिया होता। ऐसा होता है ना मित्रों, इंतजार

0: बहुत बड़ी तड़पाने वाली चीज है, मुझे आपसे बिछड़ना पड़ेगा। पर हाँ, बिछड़ने के बाद मिलने का भी मजा कुछ और है। मित्रों, अब समय हो चुका है जाने का और वापस दोबारा आने, लेकिन जाते जाते आप ख्वाबों के सफर को भूल नहीं जाना। अगली बार इससे भी अच्छे, ज्यादा और खूबसूरत और हसीन गाने लेकर आएंगे ख्वाबों के सफर में। नमस्कार, खुदा हाफिज, अलविदा।
1: ओके, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया, गुजरा हुआ जमाना। जी हाँ, ये गीत है, तनवीर नकवी ने इसे लिखा था, लता मंगेशकर जी ने गाया था और एस मोहिंदर ने इसे संगीत से संवारा था। और ये फिल्म थी शिरीन फराद फिल्म का ये खूबसूरत नगमा 1956 का जाग जाते आप सबके नाम। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे ख्वाबों के सफर में। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या

0: जाएगी पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुंडेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलंत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: साथियों आप सुन रहे हैं रेडिओ पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीवन कौशल कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं।

पर हमने कुछ मशीन लर्निंग की बातें की थी और आज हम लोग बातें करेंगे उससे ही थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन डाटा साइंटिस्ट के बारे में। जी हाँ साथियों, करियर इन डाटा साइंटिस्ट आज का हमारा विषय है। आज की डिजिटल दुनिया में डाटा को बहुत ही अच्छी तरह से देखा जाता है। हर सेकंड मोबाइल, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, एप्लीकेशन हो, मशीनें हो या सेंसर के माध्यम से भारी मात्रा में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। इस डेटा को समझकर व्यवसाय, सरकारें, स्वास्थ्य और शिक्षा और लगभग हर उद्योग बेहतर निर्णय ले रहे हैं और इसे प्रोसेसिंग का नया तरीका होता है। इस डाटा को प्रोसेस करने का उसको कहते हैं डाटा साइंटिस्ट। जी हाँ, और ये डाटा साइंटिस्ट करता क्या है वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इनका काम ही ये होता है कि वो जो गणितज्ञ है या संज्ञा की है, प्रोग्रामर है, बिजनेस समझ को मिलाकर डेटा का एक विश्लेषण करता है जिससे भविष्य की भविष्यवाणियां कर सकते हैं और बड़े स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। तो ये है सार में डाटा साइंटिस्ट क्या है। तो चलिए, क्या करता है ये थोड़ी देर में जानते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल कार्यक्रम मेरे साथ यानी आरजे रमेश के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। आज हम लोग बातें करने वाले हैं डेटा साइंटिस्ट के बारे में, डेटा वैज्ञानिक जिसको कहा जाता है, एक वैज्ञानिक जो डेटा साइंटिस्ट

है उनकी रोजमर्रा की जो जिम्मेवारियां है क्या करता है इस पर बात करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि उनको जो भी डाटा मिल रहा है जहां से भी मिल रहा है उसको एक जगह पे स्टोर करके रखना, कलेक्ट करके रखना। जैसे विभिन्न सूत्रों से, जैसे अलग अलग जैसे डाटाबेस होते हैं, एपीआई है, वेबसाइट है, मशीनें हैं, क्लाउड है, ये सारे जगह से डाटा इकट्ठा करना। दूसरा आता है डेटा साफ करना, डेटा क्लीनिंग, कच्चे डेटा को त्रुटि मुक्त, सुसंगठित और विश्लेषण योग्य बनाना। जो चीजें मिक्स पड़ी हुई है उसको एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, जैसे घर के अंदर कूड़ा कचरा होता है तो उसको जब हम लोग दिवाली में साफ करते हैं तो क्लीन करके फिर से उसको सही करके सही जगह पे रखते हैं। कई बार चीजें यूज करते करते इधर उधर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो ऐसे में डेटा क्लीनिंग करके उन्हें त्रुटि मुक्त करके विश्लेषण योग्य बनाया जाता है। तीसरी बात आती है एनालिसिस, यानी विश्लेषण करना। अब देखना है कि कोई डाटा उनके पास आ गया, कोई गीत आ गया, कोई स्क्रिप्ट आ गया, कोई इमेज आ गया, कोई कुछ कंटेंट आ गया, कोई कुछ मैकेनिज्म वाली कुछ चीजें उसके बारे में लिखा हुआ आया, तो ऐसे पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में सोचना कि ये कौन जगह पे किस पैटर्न वाला चीज है। फिर आता है चौथा, जहां पर मॉडल बनाना, यानी मशीन लर्निंग मॉडल, भविष्यवाणी करने वाले मॉडल तैयार करना। पांचवी बात आती है विजुअलाइजेशन, डेटा को चार्ट, ग्राफ, डैशबोर्ड के रूप में आसान तरीके से दिखाना। छठी बात आती है बिजनेस टीम को सुझाव देना, डेटा आधारित निर्णयों से कंपनी की रणनीति तय करना। तो साथियों समझ गए होंगे हमारे विद्यार्थी मित्र कि डाटा साइंटिस्ट करता क्या है। चलिए कई बार होता है कि हमें पता भी होता है लेकिन विस्तार से जब हम सुनते हैं तो समझ में आता है। इस क्षेत्र में जो आपको स्किल्स चाहिए, करना अलग बात है लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक आपके पास वो स्किल नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे समझो मुझे, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं लेकिन मुझे वीडियो एडिटिंग का नॉलेज नहीं होगा तो मेरे पास वीडियोस होके भी फायदा क्या है ना। तो हमें वीडियो एडिटिंग का अगर नॉलेज होता है, स्किल है मेरे पास, वो कला है कि मुझे किसी भी चीज को, वीडियोस को एडिट करना आता है, कट करना है, पेश करना है, या उसको वो चेंज करना है, उसका कलर इफेक्ट देना है, इसमें वॉइस डालना है, ये सारी चीजें मेरे कौशल में है, तो मैं किसी भी तरह के कोई भी वीडियो कलेक्शन जो है मेरे लिए वो आवश्यक हो जाता है और मैं उसे एक अच्छा जो है प्रोडक्ट बना के मार्केट में रख सकता हूँ। तो इसी तरह डाटा साइंटिस्ट को भी कलेक्शन तो हो गया डाटा लेकिन उसको कैसे यूज करना, ये कौशल है। अब आती है यहाँ पर कौशल की बात में, सबसे पहला आता है गणित और संख्या की, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की गहरी समझ। दूसरी बात आती है प्रोग्रामिंग की, अधिकतर पाइथन या आर का उपयोग होता है, पाइथन में पंडास, नंपे, स्किकिट, लर्न, ट्रांसफर फ्लो आदि लाइब्रेरी जरूरी है। और तीसरी बात आती है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें आपको अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे पावर बी आई, टैब्लू, मैट डॉट लिब, शीबॉट। और चौथी बात आती है मशीन लर्निंग, यहाँ पर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एनएलपी, डीप लर्निंग जैसे टेक्निक। पांचवी बात आती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा से उपयुक्त निष्कर्ष निकालना और बिजनेस को समझना। तो ये सारा स्किल है जो आपको एक डाटा साइंटिस्ट के रूप में काम करना हो तो इनको सीखना समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों समझ गए होंगे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपके कभी कभी समझ से बाहर भी हो सकते हैं लेकिन इसकी बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लें कि ये चीजें इस फील्ड में आती हैं, ये कौशल जरूरी है, ये आपके समझ में होना चाहिए, तो आप इस पर उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग बातें कर रहे हैं डेटा वैज्ञानिक के बारे में और क्या कौशल चाहिए वो हमने आपको बता दिया, क्या स्किल्स चाहिए वो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं डेटा वैज्ञानिक कहाँ काम करते हैं, है ना। आप सोच रहे होंगे कि चलिए हमने सीखा समझा पढ़ लिया, लेकिन अब हमें काम किस जगह पे करना है। वैसे बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर एक डाटा साइंटिस्ट काम करता है और लगभग इनकी वहां पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां। दूसरा है ई कॉमर्स कंपनियां। ई कॉमर्स में आता है ये बिजनेस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। तो आपको तो पता ही है अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ई कॉमर्स में आती है और ये ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देती है। यहाँ पर भी एक डाटा साइंटिस्ट का बहुत जरूरत होती है। तीसरा है बैंकिंग सेक्टर में और वित्तीय संस्थान में, जो फाइनेंस का काम करते हैं, लोन देते हैं, लोन रीपे करते हैं, ऐसे संस्थान में भी ये चीजें बहुत जरूरी हैं। वहां पर भी डाटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है। और आता है स्वास्थ्य और मेडिकल रिसर्च में, जहां पर मरीजों का बीमारियों पर रिसर्च हो या फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात हो, तो वहां पर भी एक डाटा जो है कलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास डाटा हो किसी व्यक्ति का और वो बीमार हो जाता है, मेडिकल से रिलेटेड सारी चीजें आपके पास हो उनकी, तो आप आसानी से कम टाइम में उसको अच्छी सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी डाटा साइंटिस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और डाटा साइंटिस्ट के आधार पर भी आजकल जो है AI मॉडल जोड़कर बहुत अच्छी सटीक दवाइयों का भी या फिर इसमें ऑपरेशंस का या फिर कोई भी जो सलूशन है वो इसमें से निकलता है। फिर आता है सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ पर भी आपका बहुत जरूरी है। और ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पर भी काम आते हैं। एजुकेशन सेक्टर और रिसर्च संस्थान में भी आपका बहुत ज्यादा डाटा साइंटिस्ट का वर्कआउट होता है। तो विश्व भर में ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला करियर है साथियों, और आने वाले 20-30 सालों में इसकी मांग बढ़ती रहेगी, बढ़ती जा रही है। तो एक रोडमैप की बात मैं करूं तो एक डाटा वैज्ञानिक को साइंटिस्ट का जो मार्ग है वो सबसे पहला स्टेप आता है आपको किसी भी फील्ड में, बीटेक में, बीएससी में या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी। दूसरा आता है स्किल डेवलपमेंट। ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं जैसे प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप वाले, वहां पर आप कुछ समय तक अपना समय दें, इससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। तीसरा स्टेप आता है प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, मशीन लर्निंग का ले लीजिए, डाटा एनालिसिस का ले लीजिए, NLP ले लीजिए, डीप लर्निंग वाला ले लीजिए। तो ये प्रोजेक्ट छोटे छोटे काम करके आप बड़ा काम करने के लिए सक्षम होते हैं। चौथी बात आती है पोर्टफोलियो और गिटहब। अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन साझा करने का आपको तरीका आना चाहिए। पांचवी बात आती है इंटर्नशिप या जॉब शुरू करें। एंट्री लेवल जॉब जैसे कि डाटा एनालिटिक, बिजनेस एनालिटिक, ML इंजीनियरिंग, जूनियर डाटा साइंटिस्ट, इन सभी के साथ जुड़कर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ जानकारी हमने दी है, और आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात कर रहे थे हम लोग करियर ऑप्शन के बारे में, खास करके डेटा वैज्ञानिक के बारे में, डाटा साइंटिस्ट के बारे में। तो आइए एक बहुत ही सुंदर आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक डाटा साइंटिस्ट की। एक आरव नाम का व्यक्ति था बिहार में। बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता था उस समय, लेकिन आरव की जिज्ञासा बहुत थी। स्कूल में वो गणित में बहुत तेज था। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद उसे पता चला कि दुनिया डेटा से चल रही है। कॉलेज की दिनों में उसने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से घंटों बैठकर पाइथन, स्टैटिस्टिक और मशीन लर्निंग सीखी। उसके पास महंगा लैपटॉप भी नहीं था, लेकिन उसने साधारण मशीन में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था। उसने एक मॉडल बनाया जो बारिश की भविष्यवाणी कर सकता था। ये प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ महीने बाद उसे गूगल से इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू में आरव ने छोटे लेकिन असरदार प्रोजेक्ट देखकर टीम प्रभावित हुई। आज आरव गूगल में डाटा साइंटिस्ट है और अपने गांव के छात्रों को ऑनलाइन मुफ्त क्लास देता है। आप समझ रहे होंगे कि उनकी कहानी ये बताती है कि डाटा साइंटिस्ट प्रतिभा और मेहनत का खेल है, संसाधनों का नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिलता है साथियों, अगर आप तो की जिज्ञासा पढ़ाई में है, कुछ गहरा समझ के साथ आप पढ़ाई करते हैं, विश्लेषण के साथ पढ़ाई करते हैं, रिसर्च मोड पे आप पढ़ाई करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही इस तरह की सोच लेकर अगर आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो डाटा साइंटिस्ट बनना बहुत आसान आपके लिए होगा, जैसे आरओ के लिए हुआ। तो आइए इससे जुड़ी हुई एक और सुंदर कहानी मैं आपको बताता हूँ, आदिति की। आदिति की जीवन यात्रा भी बड़ी मुश्किल थी। आदिति शादी के बाद मुंबई में एक गृहिणी बनकर गई थी। दिन का अधिकांश समय घर के कामों में निकल जाता था, लेकिन उन्हें नई तकनीक सीखने का बड़ा शौक था। उनके पति ने उन्हें डाटा साइंटिस्ट का एक ऑनलाइन कोर्स करने की सलाह दी। आदिति ने रोज सिर्फ 3 घंटे निकालकर सीखना शुरू किया और वो पाइथन से लेकर मशीन लर्निंग तक सब सीख गई। उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, जो नेटफ्लिक्स की तरह फिल्में सुझाता रहता है। ये प्रोजेक्ट देखकर एक स्टार्टअप ने उन्हें इंटर्नशिप का मौका दिया। कुछ महीनों के भीतर अदिति एक फुल टाइम डेटा साइंटिस्ट बन गई। आज अदिति महिलाओं के लिए AI सिखाने के ऑनलाइन कार्यक्रम चलाती हैं। उनकी कहानी बताती है कि सीखने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, उम्र, स्थिति या जिम्मेवारियां बाधा नहीं बनती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अदिति की कहानी बिल्कुल अलग है और हम सब के लिए प्रेरणादायी, क्योंकि हम भी अपने काम से फुर्सत हो तो हम बस मोबाइल में लग जाते हैं, लेकिन कुछ सीखने का मन कभी नहीं बनाते हैं। तो आज से आप मोबाइल के बजाय आपको सीखने का मन बनाइए और मोबाइल से ही सीखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, है ना। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM पर। जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं हम करियर ऑप्शन जीवन कौशल, और आज हमने बातें की डाटा साइंटिस्ट के बारे में। कहानियां मुझे बड़ी अच्छी लगी, आशा करूंगा कि आपको भी उनसे मोटिवेशन मिला होगा, खास करके अदिति की कहानी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डाटा साइंटिस्ट का भविष्य को अगर देखें तो ये AI रोबोटिक और ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण डाटा साइंटिस्ट की मांग कई गुना बढ़ गई है। साथियों, 2030 तक दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा डाटा प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी, तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है। भारत में भी ये 5 उच्च वेतन वाले करियर में गिना जाता है, और साथ ही साथ डाटा साइंटिस्ट का करियर केवल तकनीकी ज्ञान पर आधारित नहीं है बल्कि रचनात्मक भी है, समस्या समाधान भी है और भविष्य को समझने की क्षमता पर भी टिका हुआ है। अगर आप गणित, कंप्यूटर और विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो ये करियर आपके लिए गोल्डन अवसर है। आरओ और अदिति जैसे अनगिनत उदाहरण साबित कर सकते हैं कि सही दिशा, अभ्यास और निरंतर मेहनत से कोई भी व्यक्ति दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली करियर में सफलता हासिल कर सकता है। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आप भी घर बैठे इन चीजों को सीख सकते हैं जैसे अदिति ने सीखा, और आप उस तरीके से सीखे ताकि आपको थोड़ा सा गहराई से समझे और आराम से टाइम ले, तो आप भी एक अच्छा डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और कुछ न कुछ प्रोडक्ट आपके भी बहुत सारे जगह पे आप जो है काम कर सकते हैं। गृहिणी हो तो गृहिणियों के लिए शायद आप डाटा साइंटिस्ट कलेक्शन, कुछ ऐसा डाटा कलेक्ट कीजिए जहाँ से आपको जो है आसानी से कुछ चीजें प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिल सके, खाना बनाने में हेल्प मिल सके या घर की सजावट में हेल्प मिल सके। तो ये भी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस गहराई से आप सोच के देखिएगा। तो चलिए, आप सभी को बहुत ही सुंदर करियर के बारे में हमने बताया डाटा साइंटिस्ट का, तो फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विद्यार्थी मित्रों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए एपिसोड में एक नए विषय को लेकर। तब तक आप बने रहिए। सलाम, नमस्ते, खम्मा गणिता, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: अरे कवि राजा, कविता के मत अब कान मरोड़ो। कवि राजा, कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे, नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे, रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया, ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत, कविता की चाकी घर की रोकड़ देखो, कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया। कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ। नोन मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झनझन करती कहो रुबाई पैसे वाली।
2: अच्छा,
1: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किस्से सर छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
3: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
4: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है, तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं।

0: अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: अजी सुनाओ सरदारा की हाल है।

0: रही है। हाथ लाओ साथ क्यों कैसी कही है।
1: इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है।
0: अरे वाह अरे वाह अरे वाह वाह वाह वाह वाह।
2: ये रुक जाते तो सारे धंधे रुक जाते, घर से दफ्तर

0: ऐसी कही है, बाबा इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है। बाबा
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं मीता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं एक पुराना स्तंभ हूँ। हाँ, इसी नाम से मुझे कई लोग बुलाते हैं। सत्य भी है, मैं प्राचीन हूँ और आज भी महाराष्ट्र की ऐतिहासिक नगरी पुणे में खड़ा हूँ। हजारों इमारतों के बीच मेरा अस्तित्व किसी किसी को धुंधला दिखाई देता है, मगर मैं इतिहास की वो जीती जागती किताब जिसने पुण्य विजय को पुणे बनते देखा है, सालों साल काल चक्र के साथ मैंने अपने जीवन का हर एक क्षण पुणे की मिट्टी को अर्पण किया है। न जाने कितनी पीढ़ियों की कहानियां, अनेकों महान शूरवीरों के कीर्तिमान मेरे मानस पटल पर विभिन्न सुनहरी स्मृतियों के रूप में अंकित हैं। पुणे ने कई दुख की काली घनेरी रातों को भी पार किया और न जाने कितने सुख के मेले देखे हैं। कभी तोपों की आवाज से लड़ाइयां गूंजी है यहाँ, तो कई शहनाइयों और दीपकों से सजी खुशियां भी झिलमिलाई है।

यहाँ साधु संतों ने धरनी को पावन किया तो कहीं कलाकारों ने पुणे को शोभान्वित भी किया है। जीवन की खूबसूरती इतिहास के पन्नों में बिखेरती सुंदर अद्भुत नगरी है पुणे।

0: वाह बहुत सुंदर, क्या बात है, कितनी प्यारी जगह है ये, लग रहा है बड़ी ही प्राचीन है। पुणे में कितना कुछ है ना देखने को, खास तौर से यहाँ का इतिहास वो तो कमाल का है, पर वो जानने के लिए तो बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या इंटरनेट पे खूब सर्च करना पड़ेगा। कितना अच्छा होता अगर इसके बारे में मुझे कोई बता देता। वैसे ये वाला स्तंभ, ये देखो कितना रॉयल लग रहा है, चलो इसके साथ एक सेल्फी तो ले ही लेती हूँ।
1: अरे संभल के, पीछे देखो पत्थर है, देख के चलो, ये सेल्फी लेने के चक्कर में गिर मत जाना।
0: अरे ये आवाज कहाँ से आई, कोई इधर है क्या, यहाँ पीछे यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हेलो, यहाँ कोई है?
1: हाँ मैं हूँ ना, जिसके साथ तुम सेल्फी ले रही हो।
0: सेल्फी? वो तो मैं इस स्तंभ के साथ ले रही हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो?
1: मैं मैं वही स्तंभ बोल रहा हूँ।
0: लगता है मुझसे कोई मजाक कर रहा है। देखो तुम जो भी हो सामने आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा।
1: तुम्हें पुणे के इतिहास के बारे में जानना है ना? मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ, मैं यहाँ का पुराना स्तंभ हूँ।
0: ओह तो क्या ये सच में आप हो, आप बोल भी सकते हैं?
1: हाँ, और मुझे हर कोई नहीं सुन सकता, बल्कि बस वही लोग सुन सकते हैं जो सच में पुणे से प्यार करते हैं।
0: हाँ मुझे तो पुणे से बहुत प्यार है, तो क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? मेरा नाम मनु है, क्या आप मुझे पुणे का इतिहास बताओगे?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी, आखिर पुणे का इतिहास मेरी रग रग में जो है।
0: तो पुराना स्तंभ जी, सबसे पहले आप क्या बताएंगे मुझे?
1: कहाँ से शुरुआत करें? पुणे खुद में एक कहानी है, आज पुणे में क्या नहीं है।

0: बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, गोलकुंडा में सुल्तान कुतुब शाह की हुकूमत थी। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था। बीजापुर की सल्तनत में मोहम्मद आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष हुआ करता था, जिसका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे, बेहद वीर और कुशल योद्धा। शाहजी की पत्नी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 को हुआ था। वह महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले के शिंदखेड़ा के राजा के लखोजी राव जाधव की बेटी थी। जब जीजाबाई का जन्म हुआ तब महाराष्ट्र मुगलों के अधीन था और ब्राह्मणों को सुल्तान के समक्ष जाकर छोटे बड़े सभी मुद्दों पर फैसले लेने पड़ते थे। जीजाबाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। अल्पायु में ही उनका शाहजी राजे भोसले से विवाह हो गया। जीजाबाई एक तेजस्वी महिला थी। 19 फरवरी 1630 को उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शिवाजी भोसले। शिवाजी कुशाग्र बुद्धि और असामान्य प्रतिभा का धनी ये बालक भारत के इतिहास में वो प्रभावशाली व्यक्तित्व होने वाला था, जिसने भारत में मुगल सल्तनत का नक्शा ही बदल दिया। ये उस वक्त किसी को ज्ञात नहीं था। बालक शिवाजी का जन्म पुणे के समीप शिवनेरी के किले में हुआ था। स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर शिवाजी ये नाम रखा गया।
1: अच्छा।

शाहजी जागीरदार होने के कारण ज्यादातर कामकाज के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। शिवाजी के लालन पालन में जीजाबाई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो शिवाजी को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती। भले ही शिवाजी उम्र में छोटे थे लेकिन बड़ी सोच रखते थे और 12 साल की उम्र में उनका विवाह साईबाई निम्बालकर से

0: 12 वर्ष की कम उम्र में।
1: दादाजी कोणदेव उनके प्रमुख गुरुओं में से एक माने जाते हैं। पुणे की जागीरदारी शाहजी भोसले के पास थी। सुल्तान जागीरदारों के जरिए ही बादशाही चलाते थे। शिवाजी ने कम उम्र में ही हिंदवी राज्य स्थापित करने की ठान ली थी। उन्होंने मावड़ में सैनिकों की एक टोली तैयार कर ली। 3 साल तक शिवाजी मावड़ के हर गांव में घूमे। 1646 के लगभग उन्होंने पुणे और पुणे के आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया।
0: अच्छा।
1: हाँ, कभी युद्ध कभी कूटनीति का इस्तेमाल कर शिवाजी ने बीजापुर और अन्य किलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने लिए किला बनवाना भी शुरू किया जिसका नाम था रायगढ़। इस बात का पता पड़ने पर आगे जाकर आदिल शाह ने शाहजी को बीजापुर में कैद कर लिया। तब शिवाजी ने नई रणनीति बनाई। मुगल सल्तनत का विस्तार चाहने वाले उस वक्त दिल्ली पर हुकूमत कर रहे बादशाह शाहजहां को शिवाजी ने पत्र लिखा और उनके लिए काम करने का प्रस्ताव रखा ताकि शाहजहां आदिल शाह पर उनके पिता शाहजी भोसले को छोड़ने का दबाव डाले। 1649 में आदिल शाह ने शाहजी को कैद से छोड़ दिया। पिता शाहजी को बंदी बनाए जाने के बाद के 7 वर्षों तक शिवाजी ने कोई विस्तार नहीं किया।
0: 7 वर्षों तक
1: बस अपनी सेना को बड़ा और मजबूत बनाया। इसके बाद जावली पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। शिवाजी ने दक्कन पर भी हमला किया। दक्कन का गवर्नर खुद औरंगजेब था। इस हमले से शिवाजी के साथ आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई। औरंगजेब ने शिवाजी को ढूंढने के लिए फौज लगा दी और उनको ढूंढने के लिए गांव वालों पर भी रहम नहीं किया।
0: अच्छा।
1: गांव के गांव तहस नहस किए गए लेकिन शिवाजी नहीं मिले। कुछ समय बाद बीजापुर ने औरंगजेब से समझौता कर लिया और शिवाजी को भी समझौता करना पड़ा। परंतु इस दौरान शिवाजी ने घुड़सवार सेना और नेवी को बढ़ावा दिया।
0: अच्छा, क्यों?
1: क्योंकि आदिल शाह से जंग के लिए ये बेहद जरूरी था। इसके बाद शिवाजी ने कोंकण की तरफ रुख किया। जल्द ही भिवंडी से महाड़ तक के लगभग 140 किलोमीटर तक के क्षेत्र पर उनका कब्जा हो गया।
0: ओह।
1: आखिरकार आदिल शाह ने अपने प्रख्यात जनरल अफजल खान को उन्हें खत्म करने के लिए भेजा। अफजल खान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। जंग में मराठा सेना कमजोर पड़ रही थी परंतु शिवाजी फिर भी अफजल खान से समझौते के पक्ष में गए। इसलिए उन्होंने एक अलग नीति तैयार की।
0: कौन सी?
1: उन्होंने ये बात फैलाई कि शिवाजी अफजल खान जैसे सेनापति का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हथियार डालने के लिए तैयार है, बस उनकी जान बख्श दी जाए।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि मराठे कमजोर नजर आ रहे थे। तो जब ये बात अफजल खान तक पहुंची तो उसने इसे सत्य मान लिया और इसके बाद अफजल खान और शिवाजी के मिलने की बात तय हुई।

0: कहते हैं ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। कुछ ऐसा ही समझ लो कि ये किस्से ये कहानियां भी बेअंत है। पुणे का हर एक पत्थर एक मंजर बयां करता है। यहां वर्तमान में कामयाबी का हर ऊंचा शिखर जिसे उसके ऐतिहासिक आधार की एक लंबी दास्तान है। जरूरत है तो बस तुम जैसे सुनने वालों की, जो इस गौरवशाली इतिहास की लहरों को अपने मन के समंदर में उठने दें, जिनकी पारखी नजरें इतिहास की गहराई में गोते लगाकर मानव मूल्यों का छुपा हुआ खजाना खोज लाए। चलो अब मैं चलता हूँ। कुछ सैलानी आए हैं, उन्हें भी इतिहास के कुछ नजारे दिखाता हूँ और तुमसे फिर मिलूंगा मनु, अपनी आगे की कहानी के साथ, पुणे के इतिहास की कुछ अन्य परछाइयों के साथ।
1: हाँ, अब मैं भी अपने इस दोस्त से पुणे की सारी कहानियाँ सुनकर ही रहूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद उत्साहित हूँ तुम्हें पुणे के अनेक रूपों से अवगत कराने के लिए। आखिर यही तो असल समृद्धि है हमारी।
1: थैंक यू पुराना स्तंभ जी, बाय बाय।
0: बाय बाय मनु।
2: बदनाम गुलामी इसमें जीने से मरना अच्छा है।
3: बदनाम गुलामी इसमें जीने से मरना अच्छा है।
2: आजादी के लिए मरे जो माता वो सबूत सच्चा है। समर बांध

अपने वो काम करने जो सामने वाला हमसे करवाना चाहता है। लेकिन शिवाजी को देखिए, उन्होंने हमेशा वही किया जो उन्हें ठीक लगा। कभी कोई भी युद्ध हुआ, शिवाजी ने अपनी ताकत का पूर्ण इस्तेमाल किया और वो भी समझदारी के साथ। हमने देखा कितना पेशेंस था उनके अंदर, कभी भी किसी के कुछ कहने से, किसी की वाणी से प्रभावित नहीं हुए, वही किया जो वो करना चाहते थे और वो भी उस समय जब उन्हें ठीक लगा। इस सुनहरे और वीर इतिहास की गाथा में शिवाजी ने तलवार भी उठाई और साथ साथ अनेक प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल भी किया। कभी किसी की बातों में आकर कुछ नहीं किया, कभी शिवाजी ने औरंगजेब को पत्र लिखा तो कभी युद्ध किया, अपनी प्रजा के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा भी की, मगर अपने तरीके से। इसे कहते हैं वीरता। और हाँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी चीज तो मैं भूल ही गई, शिवाजी ने सभी धर्मों को मान्यता दी। वे धर्म रक्षक जरूर थे, मगर वे कभी किसी अन्य धर्म के भक्षक नहीं बने। उन्होंने अपने धर्म के बारे में प्रचार तो किया, लेकिन कभी किसी अन्य धर्म के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कहे। सबको एकजुट रखा शिवाजी महाराज ने, और महिलाओं का वो खास सम्मान करते थे। इसीलिए शायद उनकी प्रजा में महिलाओं का सम्मान था, क्योंकि जैसा वे करते थे वैसे सभी। और दोस्तों, इसी तरह आप पे भी लागू होता है, जैसा आप करेंगे आपको देख के कुछ लोग तो जरूर करेंगे। ऐसा चरित्रवान राजा किसे नहीं चाहिए होगा। आज तो मुझे बेहद गर्व हुआ और साथ साथ बहुत ही मजा आया छत्रपति शिवाजी की ये दास्तान सुनकर, छत्रपति शिवाजी की ये वीर गाथा सुनकर। मैं भी कोशिश करूंगी और आप भी कोशिश करिएगा कि ये वैल्यूज जैसे दृढ़ता, चरित्रवान, स्वाभिमान, एकता, ये सभी चीजें अपने जीवन में हम लेकर आए। क्योंकि अगर शिवाजी से हम सभी का प्रेम है तो उनकी शिक्षाओं से भी उतना ही प्रेम होना बहुत जरूरी है। मैं विदाई लेती हूँ आपसे, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बड़ा होके छोटे में रोक डालता है। हाँ नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो जा, मैं भी नहीं जाता। कट्टी बोल गया ना, कट्टी कट्टी कट्टी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी।

0: अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नई कटाई रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे? अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड में से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना, दो महीना

0: मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं। जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
3: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
2: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं। त्याचसोबत
4: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
5: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा।
6: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
7: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: ओम शांति। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे समीना जी से, जो सिंगापुर से हमारे बीच आई हैं। आप पिछले एक साल से ये प्रोग्राम देख रही हैं और इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं।
1: समीना, आपसे बात करते करते हमें ऐसा लग रहा है कि जिस मिराकल को हम ढूंढ रहे थे, ज्यादातर जब भी हम बात करते हैं, खासकर सचिवानी अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो बात हमेशा करते हैं चमत्कार हुआ। तो अगर हम आपको देख रहे हैं और जिस तरह से आपके जीवन की बातें हमारे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो परिवर्तन जो है वो काफी क्लियर दिखता जा रहा है। अगर हम सिचुएशंस को भी लें, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो आज भी उनसे जूझ रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको गुस्सा आता है, तो आप वो गुस्सा अभी भी अंदर अगर होता भी है तो वो बाहर नहीं आता है, उस तरह से नहीं करता, एंड देन यू अंडरस्टैंड द फ्यूटिलिटी ऑफ इट। आपको लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या क्यों, कोई फायदा नहीं होगा उसका। ऐसे ही सिचुएशंस को अगर हम देखें जब पहले आप जी रहे थे, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, और फिर जब ज्ञान मिला और जब प्रोग्राम के द्वारा ही आपने बहुत कुछ समझा, तो फिर जो वहां एक आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट होके सिचुएशन कैसे बदलते गए, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने?
2: मैंने जैसे बहुत सारी फैमिलीज में फ्यूज होते हैं, यू नो, और कभी कभी फ्यूज इतने हो जाते हैं कि यू नो टेबल पर बैठ कर रिकनसाइल भी नहीं हो पाते हैं, फिर जाते हैं वो कोर्ट केसेस में। हमारे साथ भी ऐसा ही है, तो इतनी इंटीमेट फैमिली के अंदर ऐसा हुआ, एंड देन यू नो अभी तो कोर्ट में गए। पहले क्या होता था कि जब यू नो हमारे साथ गलत होता था या हमारे यू नो हमें चीट किया गया या जो भी, तो गुस्से के साथ ऑलमोस्ट उस आदमी के लिए और या उन आदमियों के लिए हमारे मुंह से बद्दुआएं निकलती थी कि हमारे
1: गलत
2: यू नो जिस तरह से हमें सफर करना पड़ा, एक दिन आप भी ऐसे ही सफर करोगे। That's completely gone. अभी बिल्कुल भी ऐसा एक बार भी हमें नहीं लगता। एक्चुअली हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो बोलेंगे, देखो उनके साथ भी ऐसे। आई सेड नो,

0: Don't pray for that also. Unke saath bhi aisa na hove.
1: But kyun?
0: क्योंकि वो राइटियम सा जब होता था, जब आपको ये लग रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी होना चाहिए. यू नो वो नेचुरल रिएक्शन उस वक्त हमारा होता था, यू नो टिट फॉर टैट एंड वी यूज टू जस्टिफाई कि ये सही है. तो अब क्या आपको कौन सा वो थॉट है? एक्चुअली हम बार बार इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई एक थॉट है जो ट्रिगर करता है कि नहीं कुछ नहीं होता, उसके साथ नहीं होना चाहिए.
1: इट इज बिकॉज अगर मैं इतनी नेगेटिविटी वहां फेंकूंगी तो मुझे ऐसा लगता है वापस वो बूमरैंग होके मेरे ऊपर ही आएगी. मुझे वो करना ही नहीं है. मुझे ना तो किसी को नेगेटिव एनर्जी देनी है ना तो एक्सेप्ट करनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा. तो अगर मैं इस तरह का किसी के ऊपर मैंने बदुआ दी है तो फिर वो वापस टर्न होके मेरे ऊपर भी आ सकते. मुझे ये नहीं करना है. उन्होंने जो किया सो किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो हमेशा ब्लेसिंग्स उनको भेजती हूँ कि जिस तरह से आई हैव स्टम्बल्ड अपॉन एंड मुझे ये ज्ञान मिला है और मुझे ये नॉलेज मिला है, आई होप कि समहाउ और द अदर उन्हें भी ये नॉलेज मिले.
0: लेकिन वो अभी भी सिचुएशन आपके साथ
1: है? ऑफकोर्स मैं आई एम गोइंग थ्रू इट. वी आर गोइंग, माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ, वी आर गोइंग थ्रू इट, बट आवर माइंड सेट इज चेंज्ड.
0: वी जस्ट टॉक अबाउट मिस्टर शिवानी, अपनी अभी सीरीज में ही हम ये बात कर रहे थे कि सिचुएशंस जब आ जाती हैं तब हम उसके साथ या तो हम उसको हिट करते हैं या हम उसके साथ बह जाते हैं, कैरेड अवे हो जाते हैं. तो अगर हम आज आपको देखें, हमारे सभी दर्शकों के सामने एक लाइव एग्जाम्पल ये है,
2: बिकॉज आर होल सीरीज, दिस सीरीज वी वर टॉकिंग ऑन सेल्फ मैनेजमेंट एंड हमने यही बार बार डिस्कस किया कि सिचुएशन है लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. लाइक यू सेड, किसी ने कुछ गलत किया और उसका कोर्ट केस भी चल रहा है ना, दिस इज अ सिचुएशन एक्स व्हिच इज देयर आउटसाइड, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. तो आई कांट चेंज. अभी पहले क्या होता था, हम गुस्सा करके और डिस्टर्ब होकर हम सोचते थे कि हम सिचुएशन को किसी तरह से चेंज कर दें, हम उन लोगों को ठीक कर. नाउ आई नो कि देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज इन माय कंट्रोल एंड दैट्स माय रिस्पॉन्स. अब नॉलेज शायद पहले भी थी लेकिन करने की पावर नहीं थी. अब वो अपने अंदर जब शक्ति भरती गई तो वो करना भी इजी हो गया. एंड आई थिंक अनदर रीजन व्हाई इट कम्स फॉर इट इज नाउ बिकॉज प्रोबेबली मनी इज नॉट एवरीथिंग.
1: यस,
2: दैट ऑल्सो मेक्स ऑल द डिफरेंस
0: एंड यू नो
2: इट मेक्स अ बिग डिफरेंस.
0: पिछली बार जो होता होगा वो आप सारा सारा दिन बैठे रहे कि यूजली अगर हम देखें इतनी बड़ी चीज कुछ हो रही होती है जिसमें सब कुछ मेरा दारोमदार होता है, मैं सब कुछ छोड़ के उसी के बारे में.
2: लेकिन सब कुछ मेरा दारोमदार मतलब सब कुछ मतलब क्या?
0: मैंने माना
2: सब कुछ मतलब मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी. अब मुझे समझ में आया कि मेरा सब कुछ मतलब क्या. मेरा सब कुछ मतलब पहले मेरी शांति, मेरी खुशी. तो अगर इट्स नॉट दैट वी विल से ओके ठीक है मेरा सब कुछ आप ये ले जाओ, नो, आई विल डू वट एवर आई हैव टू डू to work on it, to protect what is my right, लेकिन at least मेरी शांति और खुशी तो ना मैं उस चीज के लिए गवा दू ना. तो आई थिंक इफ यू मेंटेन दिस थिंग यू विल हैव स्टेबिलिटी इन डूइंग वॉट यू हैव टू डू अगेन.
1: बट ऑल्सो बिकॉज वेन यू हैव अ रिलेशन विथ द डिवाइन, द ऑल माइटी, जो रिलेशन अभी है, आई फील दैट ओके शायद वो एक दरवाजा बंद हो जावे या वहां से नहीं आवे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज वो दूसरी तरफ से भी मुझे देगा ही. ये मुझे कॉन्फिडेंस है.
2: लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी तभी दिखाई देती है जब हम दर्द में नहीं होते.
0: बिकॉज हमें धुंध नहीं होती.
1: बिकॉज वी आर नॉट, या बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड इट एंड वी आर सेइंग ओके इफ दिस इज इट देन देयर विल बी समथिंग. यू हैव टू हैव एब्सोल्यूट, लाइक यू से अनकंडीशनल लव, आई ऑल्सो से अनकंडीशनल फेथ इन हिम दैट आई विल नॉट wiver from there, that he will do only what is right for me.
2: But like what she said, the first step is accepting the situation.
1: Yes.
2: And that's what we've been talking, ki situation ko resist nahi karna, reject nahi karna, usse andar aur bhi dwandh chalta hai. Pehli cheez hoti hai situation ko accept karna. Now what do I have to do? And then see, this is an example. I mean, everything that we spoke about in all our last episodes, you've just come and shared with your own personal experience.
1: Right. I only am here to talk about myself. That's why I feel that if I'm so ordinary a human being, and if it can happen to me, then there are so many people out there whose life can be changed. Unki zindagi badal sakti, that is for sure, because हम तो बहुत आम इंसान हैं. नाइदर मैं तो ना कोई गुरु हूँ, ना कोई कभी, ना मैं कभी रिलीजियस भी नहीं थी, यू नो, कुछ नहीं. जस्ट अ वे ऑफ लाइफ जो चेंज हो जाती है,
2: अ वे ऑफ थिंकिंग जो चेंज हो जाती है,
0: पहला थॉट प्रोसेस
1: जो हमारा चेंज हो जाता है, एंड वो थॉट

0: process se then we start working on it.
1: Sameena, jaisa aapne kaha ki you've not been religious, lekin aap prayers to kar
0: rahe hain.
1: तो ये जब प्राप्ति हुई, जब आपको परिवर्तन दिखा और डिवाइन के साथ एक इतना खूबसूरत रिश्ता, अब इनफैक्ट आपसे बातें करते करते मुझे लगता है बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो भी उतने ही अभिभूत और शिव बाबा के साथ जो रिश्ता, जो कई अभी भी शायद तलाश रहे हैं या उस तरफ बढ़ रहे हैं, दे कैन फील नाउ.
0: प्रीवियसली व्हेन आई टू प्रे इट वॉज ऑलवेज अ प्रेयर कि मुझे ये चाहिए. एंड जो रटा हुआ हम जो आइदर श्लोक्स है हमारी जो दुआएं, हम जो रटे हुए हैं सब पढ़ लेते और हम मांग लेते हमें ये चाहिए. दिस इज द चेंजेस कि जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते तब हम लोग शांत बैठते, बिल्कुल क्वाइट, बिकॉज हमने तो जो बोलना था वो बोल दिया. उन्हें डिवाइन फोर्स जो हमें कह रहा है वो भी तो सुनना है. दैट ओनली कम्स इन क्वाइट, दैट यू सिट. It is not easy. In the beginning, it was only 5 minutes, 10 minutes. But as you become quiet and as you achieve that quietness inside of you, it can, now I can almost sit up to 40 minutes. And I'm very shocked with myself because मैं इतनी हिलती हूँ, मैं इतनी फिजिटी हूँ और मैं एक सेकंड बैठ नहीं पाती हूँ. तो मुझे खुद को लगता है कि मैं कैसे इस तरह से 40 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट, वॉट एवर जितना टाइम होता है, वो कैसे मैं बैठ जाती हूँ और कैसे मैं इतना ध्यान कर सकती हूँ.
1: और बहुत सुंदर आपने बात कही कि हम प्रेयर्स में अपनी बात तो बार बार कह देते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें शायद पता ही नहीं था कि वहां से जवाब भी तो आएगा. अब आप जब साइलेंस में इंतजार कर रहे हैं उनका कि वहां से जवाब आएगा,
0: नॉट इमीडिएटली, लेकिन जब माइंड बिल्कुल साइलेंट होता है और कोई थॉट्स नहीं होता है, I feel, I don't know whether this is, I'm on the right track or not, but I feel that when your mind is completely unclogged, कुछ नहीं होता है वहां, कोई rubbish नहीं होता है, कोई thoughts नहीं होता है, तब I feel that he is also seeing me clearly. I think मैं भी उनको साफ दिखती हूँ, you know, smoke glass से नहीं दिखती हूँ,
1: क्लैरिटी
0: से वो भी मुझे देख पाते हैं कि ये है कौन, ये क्या, कौन सी आत्मा है. दिस इज हाउ आई फील.
2: दैट्स बिकॉज द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन हैज गॉन. दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. गॉड कैन ऑलवेज सी यू, इट्स जस्ट दैट वी गेट टू सी हिम बेटर नाउ. जो डस्ट थी वो उनके आगे नहीं आई हुई थी, लेकिन डस्ट हैड डेफिनेटली कम इन फ्रंट ऑफ मी. एंड डस्ट इज ओनली माई नॉइज ऑफ थॉट्स, यू नो, जो आपने कहा क्लॉगिंग जो हो जाती है, तो इट्स इधर उधर की संकल्प, थॉट्स, इमोशंस, वो सब है. इफ यू आर एबल टू साइलेंस दैट, देन यू आर एबल टू फर्स्ट सी योर सेल्फ एंड देन यू आर एबल टू कनेक्ट टू हिम. एंड देन द आंसर इज डजंट हैव टू कम इमीडिएटली, बट द आंसर कम्स.
0: यस, इन सम आई कैनॉट एक्सप्लेन, बट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, एक इंसिडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ कॉल आ जाएगा. ऑल्सो वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइटनेस, विच यू कीप सेइंग, बिकम लाइट, डोंट कैरी बर्डन ऑफ थॉट्स. सो वंस यू बिकम लाइट, यू फील ऑल्सो दैट आई फील इवन नाउ दैट आई हैव बिकम, आई हैव, देर आर थिंग्स जो हमारे प्रीवियसली जो हुआ है, हमारे साथ बुरा हुआ है, जिस किसी ने कहा है या वट एवर हैपन, थोड़ा बहुत तो वो रहता है बिकॉज आई वी आर सो ह्यूमन, यू नो. बट now I've, like you've always said, that whatever is not necessary, try and delete it immediately, you know. So I do be conscious about it and say, okay, this is not important.
1: Finish it out. Delete.
0: Yeah, delete. Get it out. You know, if somebody said something to me also that's hurtful, it's not important. Get it out. So you feel lighter. You feel better.
1: Right. So हम अपने अपने सभी दर्शकों के साथ एक बार फिर शेयर करें कि हम समीना जी के साथ, जो कि खास सिंगापुर से आई हुई है हमारे साथ, वो इसी प्रोग्राम के एक दर्शक के रूप में जुड़े थे, लेकिन अब हमारे परिवार का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं, जैसे आप बन गए हैं, और हम उनके साथ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. समीना, अगर हम देखें लाइफ में जो परिवर्तन हुआ, एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बात ये भी जनरली कही जाती है, जो बहुत से लोग अपने मन में कई बार सोचते हैं कि फैमिली लाइफ के साथ साथ रहते हुए अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते, जैसे अब आप कह रहे हैं कि 40 मिनट्स मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि सारा दिन ना फिर ध्यान में बैठे रहेंगे, ये सारा ये अलग ही हो जाएंगे, या मतलब फैमिली से दूर हो जाएंगे. आपका अपना अनुभव ने क्या कहा कि क्या हुआ, मतलब
0: एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिसकंसेप्शन जो ब्रह्मा कुमारी के साथ ही है, दैट जो भी उनकी बातें सुनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब यू नो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं माउंट आबू भी गई है. जब मैं वहां से विदाई भी ले रही थी उन सीनियर ब्रदर्स के साथ, दे ऑल सेड गो इन हैप्पीनेस एंड स्टे हैप्पी इन योर फैमिली.
2: नोबडी सेड स्टे हियर,
0: नोबडी सेड कम बैक. किसी ने नहीं कहा कि आ जाओ वापस यहीं पर रहो, ऐसा कुछ नहीं है. एंड यू नो इवन इन रिलेशनशिप्स, यू नो अगर देखा जाए तो इनफैक्ट रिलेशनशिप्स उन लोग कहते हैं स्ट्रेंथन करो, ना कि वीक करके तोड़ के चले जाओ. तो इट्स वो मिसकंसेप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि लोग, अगर लोग कोई छोड़ के चले जाते हैं तो दैट इज देयर अप टू देम कि वो उनकी चॉइस है. ये कोई नहीं कहता वहां पे कि आप लोग सब छोड़ छाड़ के वहां पे आ जाओ. और मुझे छोड़ना भी नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली, आई वॉन्ट टू बी विथ माई फैमिली, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट. ध्यान में बैठना, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ. हम लोग चार चार घंटे टीवी देख लेते हैं तो 40 मिनट्स मेडिटेशन में बैठना क्या प्रॉब्लम कोई है? आई डोंट थिंक सो. आई वुड रादर टेक आउट टाइम, दिस इज माय प्रायोरिटी. हम सब अपने लिए वक्त निकालते हैं फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, दिस इज माय प्रायोरिटी. That I want to spend some time.
1: You happy.
0: But it's giving me, it's benefited me. So I don't see, I've not heard anybody in the family complain.
2: They will not complain when there's a transformation.
0: जहाँ
2: result दिखाई देगा कि आपके अंदर इतना change आ रहा है, तो they will say it's good. This thing is working for her.
0: Yes.
2: तो वो इसलिए फिर मना नहीं करेंगे. But did it clash with your, let's say, religious beliefs?
0: No. Not at all, because I am. There's nothing religious about this belief system or this the way of life that you all are teaching. Because it's not telling me to stop being a Muslim. I've not stopped being. I've become a better Muslim, because when I pray with single-minded thought that I am this time with God. So, ulta, ye to hume fayda deta hai. And it's another thing that यहाँ पे ना कोई मंत्र मंत्र मंत्र है या कोई पूजा करनी है या nothing is just telling you a way of life. That's all. They're just telling you that you can make your life better. That's all we're doing. There's nothing wrong in that, you know. अगर हमें अगर मुझे कहा जाता कि यू नो अगर आप मंदिर में जाओ ये पूजा करो 10 दिन तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, तो शायद मैं ना करूँ. Because it is not my belief system. But yahan to there's, it doesn't clash with anything. So I feel that on the contrary, it's made me a better Muslim today.
2: But did others have a problem with that? Did
0: yes.
2: your friends, families or whatever?
0: I would say the most important people in your life is your parents and your spouse. You know, huh? Those are the two most important people. My mother, she had a little problem because she... उन्हें ये मेरी भी मिस्टेक थी कि मैंने उनको समझाया नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ. वो समझे कि मैं जब मेडिटेट कर रही हूँ तो मैं कुछ जाप कर रही हूँ या ऐसा कुछ. उनको समझ में नहीं आया कि मैं सिर्फ शांत बैठी हूँ. तो जब शी अंडरस्टूड दिस देन शी ऑल्सो स्टॉप सेइंग एनीथिंग टू मी. ऑफकोर्स माई हस्बैंड तो बिगिनिंग से ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ही इज बीन विद मी ऑन दिस जर्नी. ही ऑल्सो मेडिटेट्स बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क एंड आफ्टर ही एंड ही कम्स बैक जस्ट बिफोर ही स्लीप्स इन द नाइट. बोथ ऑफ अस यू नो acquired for that time. That's all. There is nothing more happening. So it's just a way of life. Your thought process is changing and you're meditating. That's all we do. Nothing more. Then let me make it clear, there is no religious things happening anywhere.
1: Samina, it has been amazing jab aap se mujhe baat ki aur jo aapka jis tarah ki personality aa rahi hai, you come across as a very very loving person aur jis tarah ki attachments family ke sath rahi hongi. और यू नो लाइक आप एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, एक डॉटर हैं, डॉटर इन लॉ भी हैं, जिस तरह से आपके परिवार के बारे में बात है, तो आपका रिलेशनशिप अपने पूरे परिवार के साथ कितना स्ट्रांग बाइंडिंग्स का था जो हम कहते हैं सपोजिटली, वो कैसा रहा है, कैसा था पहले?
0: ओके, देयर इज ऑलवेज लव, बट वी ऑलवेज लव्ड एंड वी वर अटैच्ड. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट केम अप दैट यू हैव टू लव अनकंडीशनली, लव completely, यानी दिल खोल के प्यार करो, लेकिन अटैच थोड़े डिटैच रहो. इन द सेंस के जब हम बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है तो जब वो इंसान गिरता है तो आप उसके साथ गिरते हो. दिस इज समथिंग दैट आई लर्न दैट वेन द पर्सन, जब इंसान गिरता है तो तुम्हें संभलना चाहिए
1: क्योंकि आप साथ साथ गिर रहे हो.
0: अगर तुम भी साथ गिरोगे तो सब गिर जाएंगे. तो दैट हैपन वेरी मेनी टाइम्स विद माई हस्बैंड, दैट अगर इफ ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम देन आई डोंट गो डाउन इन डिप्रेशन विथ हिम. I stay where I am so that I can help him out. There's no point in two of us diving into the pool at the same time. So hame

0: डिटैच्ड इन दैट सेंस कि हमें हमें स्टेबल रहना है.
1: लेकिन आप जो पहले बहुत ज्यादा अटैच थे
0: तो
1: एक कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ये आदत भी हो जाती है कि मैं रोऊंगी तो वो रोएगा ही रोएगा, या मैं करूंगी मैं प्रॉब्लम में आऊंगी तो मम्मी को प्रॉब्लम आएगी ना, मम्मी भी तो प्रॉब्लम में आएगी आएगी. देखिए सो मच यूज टू ऑफ इट. तो अब आपके में जो परिवर्तन आया कि आप उतने प्रॉब्लम में नहीं आते थे, कहीं आपके कहीं बच्चों को या हस्बैंड को या किसी को ऐसा लगा कि अब मम्मी मेरी केयर नहीं करती?
0: नो, आई डोंट थिंक सो. इनफैक्ट आई टेल माई मदर दिस बिकॉज हम लोग अलग रहते हैं. मेरी मदर इंडिया में है, मैं सिंगापुर में हूँ, एंड शी वरीज ऑल द टाइम. आई सेड डोंट वरी फॉर मी, प्रे फॉर मी, मेडिटेट फॉर मी, सेंड मी ब्लेसिंग्स. आपके वरी करने से मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपका प्रेशर बढ़ेगा, मुझे और प्रॉब्लम हो जाएगी.
1: मैं हेल्प थोड़ा कर सकती हूँ वरी करना. शी वाज यूज्ड टू से कि कैन आई
0: हेल्प
1: नॉट वरी अबाउट यू,
0: एंड आई सेड डोंट वरी. इफ यू आर कंसर्न्ड क्या यू नो इफ आई एम सपोज इफ आई एम सिक ओवर देयर या इफ आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी विच यू अराइव, देन सिट इन दैट टाइम एंड सेंड मी ब्लेसिंग्स. यू नो वो पॉजिटिव मेरे लिए काम करेगा, वो नेगेटिव वरीज मेरे लिए कुछ नहीं करते.
1: लेकिन अब जो आपका बच्चा कभी पेन में जाता है या आपका हस्बैंड कभी पेन में जाते हैं, पेन किसी भी चीज को लेके, कोई भी थॉट प्रोसेस को लेके, अब आपका रिएक्शन कैसे स्टेबल रह पाता है? यू नो बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग वाई वी आर टॉकिंग, बिकॉज यही एक बहुत अभी भी बात होती है कि जैसे ही हम सारी चीजें अपने ऊपर तो कर रहे होते हैं, जैसे ही हमारे अपने पे आने लगती है चीजें, जो हमने समझा होता है वो कहीं ना कहीं यू नो लाइक हमें सोचना पड़ता है उसके ऊपर.
0: नो एक्चुअली पेन के साथ स्पेशली बिकॉज बोथ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग ओवरसीज, तो जब वो पास नहीं होते हैं दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, नॉर्मली क्या होता है पेरेंट उसके साथ प्रॉब्लम में वो भी चले जाते हैं. ओ माई गॉड अभी क्या होगा, ऐसा हुआ वैसा. I am concerned, you know, it hassles me because they are my children, you know, I have brought them into this world. But I will first think, now what should we do? You know, there's no point in reacting immediately, but now ye situation hai, abhi karna kya hai, you know. So in fact it works out more positively, because if you go in the trouble with them, then you are not helping them, neither you're helping yourself. But if you become a little bit detached and think, now how should we handle this, then I think you can give them more, I think jo results nikalte hai usme se, they are more positive. And if I have really some situation jahan I don't know an answer, mujhe pata hi nahi ki what I should do, ye bhi theek lag raha hai, wo bhi theek lag raha hai, I really don't know what to choose, then I will leave it to the divine. I just sit down in meditation, I said, जो भी वहां से जवाब आएगा, जो भी सिचुएशन बनेगी, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट बिकॉज आई कैन नॉट कंट्रोल दिस. दिस इज बियॉन्ड मी एंड वट एवर वर्क्स आउट, इट यूजली वर्क्स आउट ओके.
1: फाइनली
0: इट वर्क्स आउट ओके. यस, बट इन सच अ बिग एग्जांपल ऑफ डिटैचमेंट. लेकिन वही हमने प्रोग्राम पे भी कितनी बार डिस्कस किया कि जब हम डिटैचमेंट थ्योरी में डिस्कस करते हैं तो जो फर्स्ट एक इमेज आता है डिटैचमेंट का, दैट लुक्स लाइक अ वेरी रूखा पर्सन, यू नो, जिसको बिल्कुल कंसर्न नहीं है किसी के लिए. एंड इवन नाउ स्पिरिचुअलिटी डिटैचमेंट, दीज टू वर्ड्स गो हैंड इन हैंड. यू नो अ लॉट ऑफ पीपल फील के स्पिरिचुअल मार्ग पर जाएंगे तो हम लोगों से डिटैच्ड हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट वी बीन शेयरिंग अगेन एंड अगेन कि लोगों से नहीं डिटैच होंगे, परिस्थिति और लोगों के प्रभाव से डिटैच हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस से डिटैच हो जाएंगे, और इन्फ्लुएंस से डिटैच होंगे तो दर्द में नहीं आएंगे, स्टेबल रहेंगे, और स्टेबल रहेंगे तो फिर उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, एंड देन यू हेल्प देम टू कम आउट ऑफ पेन. ऑल्सो बिकॉज अटैचमेंट समटाइम ब्रिंग्स पोजेसिवनेस, इट्स एन ओनरशिप, यू नो.
1: And you don't own anything
0: actually, you know, you can't own your husband, you can't own your children, they're there because they love you. That's all. So if they want to go away, I will not be able to help that. They will go away anyway. But if they love me honestly, then they will be with me, there's no question about that. And for me this is more important.
2: That means the relationship should be, you know, कि हम स्नेह का एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज कर रहे हैं. सो इवन इफ दे गो अवे, लेट्स से दे जस्ट गो ऑन देयर ओन एंड देयर नॉट देयर, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज इफ चिल्ड्रन गो अवे वंस दे हैव ग्रोन अप, द पेरेंट ऑन द अदर साइड इज जस्ट इन पेन. अब वो मेरे साथ नहीं है, अब मेरा क्या, अब मेरी वो परवाह भी नहीं करते हैं, क्योंकि यू आर यूज टू दोज टू चिल्ड्रन जस्ट रनिंग अराउंड यू, यू नो, फॉर अबाउट 15-20 ईयर्स, एंड यू आर देयर.

0: center of living. And aapki puri jeevan wo unke around revolve karti hai. And suddenly, you're that identity. Sara problem hota hai identity crisis ka. Ki I am a mother. So wo wali identity suddenly crash ho jati hai. Ki there is no one running around me and looking up to me for everything. And then we say, ab to mere paas koi bhi
1: nahi hai.
0: Ab mere jeevan
1: no, on the contrary. This is the time. This is the time that I feel it's a new... Everything is new. You have to keep on seeing it that way. So, okay, we had a very good time with them and they're growing up. They were with us. Now they've gone off. Now it's a relation that I'm going to work on with my husband, that we do things together. This is a new thing. And when the kids come back and they want to stay back with us, that will be a new thing. So you just take life as it comes. Let the flow just be there. Wonderful. Don't resist the flow.
2: Very good.
1: Change.
2: Good. Wonderful. But it was amazing to have you with us. In fact, Sister Shivani, this was our prayas tha aur ye hua ki Samira ji yahan thi aur Singapore se yahan aayi hui thi. आप सबके साथ और हमारे साथ भी ऐसा लगता है कि परिवार के हम सदस्य बैठ के बातें कर रहे हैं. और एक बार मुझे किसी ने कहा था कि मुझे याद है कि एक वो राइटर्स की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हमें आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है. और वो बहुत बड़ी राइटर थी. उन्होंने कहा कि मेरे लिए पहले ये बहुत मुश्किल था ये सोच पाना कि दो औरतें बैठकर बात कर रही हैं और वो बातचीत आधे घंटे तक कर रही हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बैठ के देख सकती हूं. लेकिन आज आप लोग हमारे परिवार का, हमारे ड्राइंग रूम का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गए हो. तो हम आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि ये परिवार इतना बढ़ता जा रहा है, हमें आपने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, थैंक यू सो मच. लेकिन ये परिवार शिव बाबा का है, परमात्मा का परिवार है. जितना बढ़ता जाएगा, जितने लोग और जुड़ते जाएंगे, उतना ही प्यार बढ़ता जाएगा. इनफैक्ट उसे शिवानी, इनफैक्ट इसी को हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं. जैसे समीना जी आज हमारे साथ हैं, अगर बाकी लोग भी जो शेयर करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे कि हाउ विल इट हेल्प, यू नो व्हाट विल रियली हैपन.
0: एक्चुअली आई थिंक इट्स वेरी गुड इज वन कि अगर जैसे आज समीना जी हमारे साथ हैं, इट वुड बी नाइस कि और भाई बहने भी अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी यात्रा, अपना परिवर्तन और अपना अनुभव औरों के साथ शेयर करते हैं, तो वन द फर्स्ट पर्सन हु बेनिफिट्स इज द पर्सन ऑन दैट सीट. सी वंस यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट जस्ट गोज थ्रू यू ऑल ओवर अगेन. तो जब आप शेयर करते हो, वो पहले आपके अंदर पक्का हो जाता है. एंड दूसरा, आपसे आज लाखों लोग प्रेरणा लेंगे. Many people, because they will see her and they will say, if she can do it, I can do it. You know, and that becomes, you know, so you become the source of inspiration for millions of people today. And इसीलिए हम शायद इस प्रोग्राम के माध्यम से अब अपने सारे भाई बहनों को इन्विटेशन देते कि मोस्ट वेलकम, प्लीज कम ओवर. हम सबसे भी मिलने का, हमें भी उनसे मिलने का चांस मिलेगा. और उनके द्वारा वो अगर अपना एक्सपीरियंस औरों के साथ शेयर करते हैं, आई थिंक द फैमिली विल जस्ट कम क्लोजर एंड क्लोजर. इट विल बी अ वेरी गुड.
2: जितनी बड़ी होती जाएगी, उतनी और क्लोज भी होते जाएंगे. तो समीना, थैंक यू सो मच. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. शांति शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत में आप भी रहे. और बहुत वही बात की ऐसा लगता है कि हम कभी रुके नहीं और कभी बिछड़े नहीं. हर बार ये लगता है जब भी हम ये यहाँ से भी विदा ले रहे होते हैं. थैंक यू सो मच. एम शांति. तो जो भी दर्शक या परिवार के सदस्य इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि ईमेल पर हमें अपना अनुभव लिखकर भेजें कि क्या आपने अनुभव किया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा. और आप अपना छोटा सा एक परिचय भी हमें भेजें ईमेल पर, तो फिर हम आपको वापस कॉल बैक करेंगे. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-666-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अब एक निगम दामा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आने वाले कड़ियों में बहुत सी और बातें करते रहेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

0: कर सकता है, ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है, ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स, कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट हेज हैपन्ड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट वेन वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खास जिया करते हैं। कोशिश हमारी ये है कि जीवन के हर पल को उत्सव के रूप में जिए, लेकिन कई बार मुमकिन नहीं हो पाता। कई मोड़ ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, खासकर तब जब हम विक्टिम्स बन जाते हैं। डिप्रेशन की इस पूरे एस्पेक्ट पर हम बात करते आ रहे हैं। उसमें हमने विक्टिम्स के ऊपर बात की थी कि किसी हादसे के अगर हम शिकार हो जाते हैं तो किस तरह से डिप्रेशन का एक पूरा दौर चलता है, उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कार्मिक थ्योरी भी काम करती है और कहीं ना कहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट का जो पूरा एस्पेक्ट है वो भी काम करके हमें उस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकाल सकता है। आज इसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। हमने डॉक्टर पटेल कई तरह के विक्टिम्स के ऊपर बात की थी पिछली कड़ी में, अगर हमें याद हो तो देखें तो हमने इनफैक्ट रेप विक्टिम्स के एस्पेक्ट को भी लिया था कि किस तरह से माफ करके फिर ही हम भूल पाएंगे और भूल के जिंदगी को आगे बढ़ाना है। आज हम शुरुआत करते हैं एक मेल से। सिस्टर शिवानी, इतने मेल्स आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो टच कर रही हैं, एहसास हो रहा है। एक ये मेल आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और ये चाहती है कि नाम आप ना लें मेरा, लेकिन ये कह रही है कि मैं पिछले 20 सालों से मैरिड हूं और कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम चल रही थी हस्बैंड से। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि हस्बैंड जो है वो क्यों मुझे विक्टिमाइज करते थे, क्यों मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे, जबकि हमारी लव मैरिज थी, हम एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते थे, वो उनके फैमिली फ्रेंड थे। और कुछ वक्त पहले ही उन्हें ये बताया है उनके हस्बैंड ने खुद कह के कि ये जो लेडी है इनके फादर ने बचपन में या जो भी जिस भी उम्र में ये मिले होंगे, 12th में होंगे, इनके हस्बैंड को विक्टिमाइज किया था। ही वॉज अब्यूज्ड बाय हिज फादर इन लॉ। इट वॉज अ मेजर शॉक फॉर द गर्ल ऑल्सो, फॉर दिस लेडी ऑल्सो। एंड शी फेस कि अब मैं इतने डिप्रेशन में हूं, मेरे को अपनी पिछले 20 साल की जिंदगी भी याद आती है कि मैं किससे गुजरी कि, और मेरे हस्बैंड भी अगर इससे गुजरे तो वो बहुत पेन में गुजरे। एक तरफ मेरे फादर हैं, एक तरफ मेरे हस्बैंड हैं, एंड मैं क्या करूं। इतना मेजर डिप्रेशन मुझे सीप इन कर गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं विक्टिम हूं, मेरे हस्बैंड विक्टिम है या कौन विक्टिम है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
1: कहीं इतना मल्टी फैक्टोरियल इनफैक्ट ना, कहीं इश्यूज को देखना पड़ेगा इसमें। एक तो जो उनके हस्बैंड है उनकी पर्सनालिटी डिफेक्टिव है, मे बी बिकॉज ऑफ अब्यूज, लेकिन पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं वो परवर्जन आया है कि जिसके कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब ये महिला को क्या करना चाहिए, रादर नो शी हैज अ गुड सिचुएशन इनफैक्ट, कि हस्बैंड के प्रति एक सिंपैथेटिक अगर एटीट्यूड हो कि भी उनके सामने ऐसा व्यवहार

0: हुआ इसके कारण उसके नेचर में ये बातें आ गई, और साथ साथ में भल जो भी हुआ है उससे तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, फादर की जो टेंडेंसी थी तो उसके बारे में ज्यादा सोच करके डिप्रेस होने से फायदा नहीं है, उल्टा इस सारी सिचुएशन को कुछ हद तक एक्सेप्ट करे, हस्बैंड के प्रति एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड वास्तव में करे, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखे, उसके साथ डील करे। उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है, जो उसके हस्बैंड है उन्हें अगर ठीक से काउंसलिंग कराया जाए तो सारे सिचुएशन का एक पॉजिटिव आउटकम हो
1: मुझे लगता है कि लेडी से ज्यादा शायद हस्बैंड को ही बातचीत
0: की। बात नहीं, लेडी को भी जरूरत है, ये नहीं उसको जरूरत नहीं है, बिकॉज नो शी माइट हैव अ डिफरेंट गिल्ट भी हो सकती है, मेरे फादर ऐसे नो दैट गिल्ट फीलिंग कैन बी देयर, शी माइट हैव अ फीलिंग ऑफ रिवेंज ऑल्सो, मेरे हस्बैंड ने पहले क्यों नहीं बोला, 20 साल पहले बोल देते तो हम उसको रिजोल्व कर लेते ठीक प्रकार से। तो लाइक नो शी ऑल्सो नीड गुड डील ऑफ काउंसलिंग,
2: फीलिंग ऑफ हेट्रेड ऑल्सो फॉर द फादर
0: इज पॉसिबल, या फादर के प्रति
1: हेट्रेड। एक्चुअली वही क्या अल्टीमेटली शी शुड एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इट माइट बी अ कार्मिक डेथ समवेयर।
2: नहीं, वो तो है ही, मतलब उसके बिना तो ऑब्वियसली वो हुआ ही नहीं है, वो तो है ही एक कार्मिक अकाउंट, लेकिन अब उसको कैसे यू नो सेटल करना। एक होता है हमारे साथ कुछ होता है वो एक हमारा कार्मिक अकाउंट है, एक है हम एक कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं, दूसरा होता है हम नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते जाते हैं। यू नो दिस इज वेरी डीप, हमें ये नहीं पता चलता कि कब हम एक पहले किसी अकाउंट को सेटल कर रहे हैं या हम एक नया अकाउंट अब क्रिएट कर रहे हैं जिसको फिर हमें आगे जाके सेटल करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे साथ बाह्य परिस्थिति आती है, सपोज दिस और एनीथिंग, इट्स अ कार्मिक अकाउंट विच आई एम सेटलिंग, लेकिन अब उसको जब वो सामने मेरे सिचुएशन आती है, अब मेरे अंदर किस तरह की थॉट्स जेनरेट होती है अपने प्रति और दूसरे व्यक्ति के प्रति, जैसे भाई साहब ने कहा कि गिल्ट फीलिंग जेनरेट हो सकती है, हेट्रेड फीलिंग, तो इस तरह के फीलिंग्स का अब निर्माण होना दूसरे के प्रति, ये एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। यू नो, तो अब अगर मैंने किसी के प्रति हेट्रेड की फीलिंग जेनरेट की, फिर उसको भी मुझे सेटल करना पड़ेगा आगे। सो दैट्स वाई वेन वी से दैट वी आर सेटलिंग अ कार्मिक अकाउंट, दैट मीन्स द माइंड शुड बिकम still, you know, still. That's why we said forgive and forget, because forgive and forget ही एक साधन है जिससे the mind can become still. कोई एक नई और energy account नहीं create हो जाए सामने वाले व्यक्ति के साथ. And the husband should also understand that it's not the wife's fault. ये सबसे बड़ी बात है कि भले वो ठीक है उनकी बेटी है, लेकिन फिर भी two different individuals. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई कमजोरी थी तो वो इसका दोष नहीं है, ये भी नहीं है कि इसके अंदर भी कोई कमजोरी है। यू नो, सो डोंट कनेक्ट द टू। ये जो उन्होंने किया कि इतने साल किसी और के लिए अपने अंदर भरी हुई नफरत उनके ऊपर निकालते गए, फादर के लिए भरी हुई नफरत अपने अंदर, उसको निकाल नहीं पाए, उसको चैनलाइज कर दिया तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया।
1: यहाँ यही बात सामने, ये एक इससे जुड़ी ये बात निकलती है कि जब चाइल्ड अब्यूज होते हैं तो दे डोंट इवन रियलाइज यू नो हाउ लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट उस पूरी जो इंसिडेंट हुआ है उसका, क्योंकि कहीं कोई आउटलेट नहीं मिला। अब चाहे वो बड़ा हादसा था जो हमने पिछली बार बात की थी कि भाई कोई रेल एक्सीडेंट हुआ, कोई आग लग गई, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक आउटक्राई भी हुई, कहीं हमारी आउटक्राई हुई, हमें एक आउटलेट मिल गया, हमने रोए और सब कुछ हो गया, निकल गया, गुस्सा भी कर लिया। इवन रेप विक्टिम ऑल्सो हैज यू नो वन वे, वन आउटलेट इज लाइक मेरे साथ गलत हुआ है। चाइल्ड अब्यूज में तो ये देखा गया है कि वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। इवन बच्चा जो है वो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता खुद को भी कई बार कि मेरे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेशन में भी कई बार होता है। व्हाट टू डू अबाउट दैट?
0: नहीं नहीं, मेजर तो क्लोज रिलेशन में ही होता है। इट हैज बीन सीन नो मे बी मोर देन 75% वो क्लोज रिलेशन ही है। सबसे पहले तो बच्चे को ये ट्रेन करना कि बेनो एक सिंपैथेटिक लविंग टच एन अब्यूजिव टच, व्हाट्स द डिफरेंस। बच्चे अधिक तो रिकोगनाइज भी करते हैं, इवन वी नीड टू ट्रेन है, वह एक बात। दूसरी बात जो बच्चों में दिक्कत आती है कि पेरेंट्स कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैंने ऐसे कई केसेस डील किए, समझो भी मामा ही अब्यूजिव है, भी माँ का ही भाई, और बच्चे ने जाके माँ को कहा तो माँ एक्सेप्ट ही, उनके बेटे को चांटा लगा दिया कि भी मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, और तो बच्चा एकदम ही शांत हो जाएगा और पहले से डर होता है। तो

0: ये बच्चों को सुनना, उस बात को ठीक से एनालाइज करना कम से कम कि भी क्या बात है। और अधिकतर में तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, बड़े शायद हो सकते हैं कि और कोई फायदे के कारण कुछ झूठ बोले, किस पर ब्लेम लगाए, परंतु बच्चा ऐसे ही ब्लेम नहीं लगाएगा।
1: तो वही तो उस बात को सीरियसली लेने के डरता भी है वो बच्चा जो है, उसमें वो हिम्मत ही नहीं है कि वो वहां तक जा पाएगा बच्चा, माँ तक भी जा पाए। सो वो जो पूरा इंसिडेंट है, माँ बाप को कितना केयरफुल ये भी रहना चाहिए कि कहीं मेरा बच्चा चुप तो नहीं हो गया। कई बार ये देखा गया है कि वो बच्चा चुप हो जाता है। तो डज इट रियली हेल्प उनसे कंटिन्यूस पूछते रहना
0: या तो उनके साथ ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करना कि बच्चा ओपन रहे, जो भी बात है उसकी वह माता पिता के सामने शेयर करे, न केवल अब्यूज की। स्कूल में भी कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम है और चीजें हैं, अगर बच्चे ओपन है, इफ यू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, तब वह सचमुच कहेगा उन बातों को।
1: एंड वंस इट्स एक्नॉलेज्ड, शिवानी ये बात पता चल गया कि बच्चा अब्यूज से गुजर गया है, इंसिडेंट हुआ है, अब वो बड़ा होके किसी और कॉम्प्लेक्सिटी जो ये आई है, और भी कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज अब सामने आ रही हैं कि जो मेन रीजन हैज बीन कि वो अब्यूज रहा है बच्चा बचपन में, तो वो उसको किस तरह से काउंसिल करके, किस तरह की उसको, क्योंकि वो इंसिडेंट जो है वो कहीं घाव की तरह, एक वो रिश्ता हुआ घाव की तरह ना रह जाए, उसे वो भर के, वो फॉरगिव एंड फॉरगेट, इतने छोटे बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं होगा, उसके साथ किस तरह उसमें पूरा काउंसिलिंग या पूरा सेल्फ टॉक या पेरेंट्स की टॉक हेल्प करे,
2: क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट में सेल्फ एस्टीम एकदम लो हो जाएगा। यू नो इट कुड बी दिस काइंड ऑफ अब्यूज, इवन एनी अदर काइंड ऑफ अब्यूज ऑल्सो, इवन जैसे कहा कि रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड का, कई बार वो एक फिजिकल अब्यूज होता है, कई बार वायलेंट अब्यूज होता है ना, अब्यूज कितने तरह से हो सकते हैं। तो वो एक चाइल्डहुड में इतना एक सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, तो वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करेगा, और वो हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर निकल कर आएगा, बिकॉज दैट इज माई पर्सनैलिटी ना। तो इस तरह के केसेस में आई थिंक उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम को वापस उसको, और ये पेरेंट्स ही कर पाएंगे, वो रोल डेवलप करेंगे कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज समथिंग एल्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, यू आर वेरी फाइन, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें, ये सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन उसको वो ना सिंपथी नहीं लेकिन एम्पावरमेंट, सिंपथी भी कई बार फिर दूसरे को बहुत विक्टिमाइजेशन की फीलिंग में ले जाती है, उसको वो सिंपथी अच्छी लगने लग जाती है, बट सिंपथी विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन, आपको एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी उसको, हम जितना वो फील करवाएं एंड नॉट आर्टिफिशियली। पेरेंट्स को भी पहले ये कन्विक्शन होना चाहिए कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड। कई बार हम दूसरे को एम्पावर करते हैं लेकिन बहुत आर्टिफिशियली, सिर्फ बोल से, बोल कभी एम्पावर नहीं करते हैं, बोल तो सिर्फ एक माध्यम है, जो एम्पावर करते हैं वो है थॉट्स। कई बार हम ये सोचते हैं हमने तो दूसरे को अच्छा ही बोला, उसकी विशेषता कोई हाईलाइट किया, लेकिन अंदर सोच क्या थी, जो एम्पावर कर रहा है वो है एनर्जी, कि हम क्या वाइब्रेशंस। अगर मैं आपको कहूं नहीं आप बिल्कुल ठीक है, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, अंदर से सोचो बेचारी कनुप्रिया उसके साथ क्या क्या हो गया, आई कैन नॉट एम्पावर यू,
1: बिकॉज वो झूठ है ना,
2: झूठ भी नहीं है लेकिन मेरी थॉट वो नहीं है, मेरी थॉट फिर भी है कि आप बहुत बेचारे हैं आपके साथ, सो आई विल हैव टू थिंक वॉट आई एम सेइंग, एंड से ओनली दैट। सो फर्स्ट पेरेंट्स को अपनी थॉट्स को बिल्कुल एम्पावर करना पड़ेगा, फिर वो एम्पावरमेंट शायद बहुत इजीली हो जाएगी बच्चों की।
1: आर्टिफिशियल बोल दैट इंसिडेंट,
2: इंसिडेंट को रिपीट नहीं करें,
0: आई थिंक इंसिडेंट्स नहीं रिपीट करे तो ठीक है, लेकिन जो आपने पहले कहा कि यू आर नॉर्मल, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी, वो जो कुछ चीजें हैं वो रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस में गया है,
2: रीअफर्म करते जाएंगे।
0: सबकॉन्शियस में क्या जाता है, जो चीज इमोशनली होती है वो सबकॉन्शियस में जाती है।
1: डॉक्टर पटेल, यहाँ बच्चे के साथ किस तरह से पेरेंट्स डील कर रहे हैं ये बात तो हमें समझ में आई, ये तो बहुत जरूरी हो जाता है। हाउ अबाउट डीलिंग विद द पर्सन हु हैज कमिटेड इट, बिकॉज ही इज अ रिलेटिव, ही और शी हूएवर, एंड से The person is a relative, very close relative, and रोज का interaction है, what to do with that? And अगर वो long term, life long relationship है, so बच्चे का उस व्यक्ति के साथ relationship क्या दोबारा develop किया जा सकता है, करना चाहिए, या what to do about that? Because that's a big dilemma.
0: The very first step is to punish that person. It can be internal punishment even. Sometimes you may like it, such a close relation, कि आप पुलिस कंप्लेन करो, ऐसा नहीं करना चाहो, लेकिन इंटरनल एक स्ट्रांग

0: पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि उनको लेसन मिले।
1: वो पनिशमेंट कैसे हो सकती है? मतलब अगर हम सोचें तो सच में, जैसे मामा की बात ली आपने, तो क्या पनिशमेंट हो सकती है, कैसे करें पब्लिकली उन्हें?
0: पब्लिकली तो नहीं, इंटरनली परिवार में भी एक स्ट्रांगली बताया जाए, इवन अ फिजिकल पनिशमेंट कैन बी बीटन ऑल्सो आई थिंक, कुछ एक्सट्रीम है तो इनफैक्ट नो यू शुड नॉट हेजिटेट,
1: तो जब
0: पुलिस कंप्लेन करने में भी फिर तो हेजिटेट नहीं
2: वो व्यक्ति भी मेंटली स्टेबल नहीं है ना उतना, तो ये पनिशमेंट से रियली बहुत बेनिफिट होगा।
0: लेकिन रियलाइजेशन तो होगा ही,
2: एक रॉन्ग
0: अगर लगता है तो फिर ट्रीटमेंट भी करनी है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट अप्रोच हो सकता है कि आपको लगता है कि उनमें भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न केवल डिप्रेशन, पर्सनालिटी ड्रॉबैक्स है, सिजोफ्रेनिक टेंडेंसी लग रही है, तो उनकी प्रॉपर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी
1: कराई
0: जाए।
1: पनिशमेंट नहीं हुई तो दैट विल बी रिपीटेड।
0: रिपीट, हाँ वो एक बात, और दूसरी बात तो ये कि भी सारे समाज में अगर मैं स्ट्रांग एक्शन लूंगा तो और भी स्ट्रांग एक्शन लेंगे, तो डिफरेंट स्टोरी है। अभी मुझे याद आ रही आप बोल रहे हैं, बड़ा मीडिया में भी आया था कि जो नहीं डावरी की ये बात थी कि भाई मैरिज हो रहे थे तभी ही उन्होंने कहा कि अभी इतने पैसे दो तो ही हम मैरिज कराएंगे, और लड़की को पहले तो पता नहीं चला, उसने सोचा कि शायद मेरे मैरिज है इसलिए माता पिता नर्वस हो रहे हैं, लेकिन जब अंदर में सारी बात होने लगी तो उसको ये हुआ और उसने हिम्मत करके पूछा। जब पेरेंट्स ने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है, तो आपने भी पढ़ा होगा
1: कि कौन
0: ने
1: कहा,
0: एक ने किया तो अभी दूसरों में भी हिम्मत आई
1: और वो पब्लिकली मांगने की हिम्मत खत्म हुई। यू नो, एक जो अथॉरिटी से मांगा जाता था वो कम से कम खत्म हुआ कि ये कोई आपका अधिकार नहीं है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: यहाँ एक और बात ना हम ये जाना चाहिए,
0: तो यहाँ भी करना चाहिए अब्यूज में भी, भले मेरे रिलेटिव भी है तो इससे अब्यूज भी हो तो 5-10 किस्से हो गए तो वो टोटली स्टॉप होगा।
1: कहीं ना, क्योंकि जो जिसने अब्यूज किया है उसे ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये बच्चा क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा, और मैं
0: बहन है वो मुझे कुछ नहीं करेगी।
1: डॉक्टर पटेल, यहाँ ये बात और जरूरी हो जाती है कि जो इस तरह के बच्चे हैं जो इससे गुजर रहे हैं उनके सामने उस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस, उस वक्त के उनके रिएक्शन है वो तो फिर भी पता चल जाते हैं कि सोशली भी कम बात करने लगते हैं, उनके एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आने लगती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन पेरेंट्स नीड टू नो, इवन द विक्टिम जो उससे गुजरा है उसको भी पता होना चाहिए कि क्या कहां तक लीड कर सकती है।
0: अगर प्रॉपर काउंसिलिंग ना हो, अगर ठीक से थेरेपी हो, काउंसिलिंग हो, तो बच्चा कम्प्लीटली नॉर्मल हो सकता है, और ठीक से ना हो तो एक तो डिप्रेशन तो होगा ही होगा, साथ साथ पर्सनालिटी डिफेक्टिव हो जाएगी पूरी। वो पर्सनालिटी के कई परवर्जन्स हैं, वो हो सकते हैं, वो सिजोफ्रेनिक भी हो सकते हैं आगे चल के, उस समय क्योंकि अंदर में कॉन्फ्लिक्ट तो चलना ही चलना है, आगे चल के वो सिजोफ्रेनिक भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही सीरियस बात है कि जिसको हमें ठीक से डील करना चाहिए।
2: कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और बिटरनेस भी, मैंने कहा बड़ा नहीं भी हो लेकिन एक छोटा इस तरह के ऊपर, ये भी छोटे नहीं है लेकिन ये इफेक्ट्स बहुत लाइफ लॉन्ग चलेंगे।
1: शिवानी, जब हम बात ये कर रहे हैं कि जो जागरण की बात करते हैं, जो इंटरनल जर्नी की बात करते हैं, वो बहुत पहले से ही शुरू होनी चाहिए, वी बीन टॉकिंग अबाउट इट, इन केसेस में तो ये जो इंटरनल काउंसलिंग है या पेरेंट्स के साथ बैठ के ये जो इंट्रोडक्शन टू अगेन यू नो स्पिरिचुअलिटी और पूरा एस्पेक्ट ऑफ introspection and internal counseling.
2: And I think meditation will also help a lot.
0: Yeah.
1: So what has to be done? हमसे बच्चे के साथ किस तरह की बातचीत करनी बहुत जरूरी है, बच्चा अपने आप से भी क्या बात करे,
2: क्योंकि बिटरनेस बहुत फैल जाएगी ना अंदर, और वो बिटरनेस को अगर नहीं निकाला गया अभी तो फिर वो बिटरनेस लाइफ लॉन्ग आप कैरी करते हो, वो फिर आपके और रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी, तो दैट बिटरनेस कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय लव। हील अगर करना तो उसको बिटरनेस को लव से रिप्लेस करना होगा, हमें उस सारी बिटरनेस को बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसमें पेरेंट्स, लेकिन अगेन मेडिटेशन, बिकॉज गॉड्स लव यू नो विल हील एनी वूंड, क्योंकि परमात्मा का प्यार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, यू नो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे सेट होने लगता है, आप फील नहीं करते कि आप वर्दी है क्योंकि किसी ने आपके साथ इस तरह से किया, तो आपको अंदर गंदा सा महसूस होने लगता है, तो आप भले लोग नहीं आपको शो करें लेकिन आप ही लोगों के सामने जाने से या इंटरेक्ट करने से शायद थोड़ा हेसिटेट करते हैं, लेकिन परमात्मा का प्यार

0: क्योंकि अनकंडीशनल होता है और आप उसको अनुभव करना शुरू करते हैं मेडिटेशन के दौरान कि हम चाहे कैसे भी हैं, चाहे हमारे अंदर क्या कुछ नहीं है, परमात्मा मुझे बहुत प्यार करता है। और वो ऐसे भरता जाता है मेडिटेशन, जब हम you know, परमात्मा से रिलेशनशिप जो डेवलप होती है वो प्यार ऐसा भरता है कि जो भी इस तरह की जो बिटरनेस है, यू नो, यू फील समथिंग तो दूसरी चीज को तो निकलना ही पड़ेगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती है, तो वो प्यार भरता जाता है, कड़वाहट खत्म होती जाएगी। बिकॉज नहीं तो काउंसलिंग ये सब चीजें तो बहुत यूजफुल है, लेकिन फिर भी टेम्पररी है और थोड़ी सी चैलेंजिंग है, लेकिन ये बहुत इजी है। व्हेन यू गेट अ सोर्स ऑफ लव, यू नो, वो इतना गशन कर देगा, इतना प्यार आपके अंदर भर देगा कि वो इतनी सी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात, कहीं बच्चे को कंटिन्यूसली भी रहे कि इट्स नॉट समथिंग एबनॉर्मल विच हैज हैपेंड,
0: नथिंग, दैट्स व्हाट एक्सेप्टेंस उसी में आ जाएगी ना सारी,
1: कुछ ऐसा नहीं हो गया कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, यू नो, लाइक इट इज ओके, लाइफ कैन गो,
0: यू नो, इट कैन बी ट्रीटेड लाइक मे बी लाइक एन एक्सीडेंट, यू नो, इट कैन बी ट्रीटेड लाइक एन एक्सीडेंट कि ये एक्सीडेंट हो गया है, यू नो, कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड एंड नथिंग इज रॉन्ग, आई एम स्टिल परफेक्ट internally also and externally also, move on. तो उसको उस तरह से ट्रीट करके आगे चल सकते हैं।
2: पहलू जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को एडमायर भी करो, डांटने के बदले कई बार डांट देते हैं कि ऐसा तुम क्यों कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा फॉल्ट है,
0: वो तो बहुत ही डांट,
2: उसको एडमायर करो, तुम करेजी हो, तुमने अच्छा किया, कि इसी से तुम जीवन में भी और प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी आप ऐसे फेस करोगे और आप महान बनोगे, इस प्रकार से बच्चे में तो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी।
1: एंड इट वॉज जस्ट अ प्रॉब्लम, ये भी एहसास उसको दिलाओ कि ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो गया जिंदगी में कि सब बदल गया, इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम,
2: एक्सीडेंट है।
0: और जैसे हम बच्चों को तो समझा सकते हैं कि जीवन की यात्रा में ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, ये भी एक ऐसा था, इसको हमने हटाना है, आगे बढ़ना है, एंड ये ऑब्स्टिकल विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर, डोंट लेट इट मेक यू weaker, come out stronger and be ready, you know, for other challenges to come. So it's all that talk that we will have to do with the child and the child will do with himself.
2: और एक पूरा issue है कि वो prevent कैसे करे, और उसे prevent करने के लिए तो है कि बच्चे को सिखाना पड़ेगा,
1: constant
2: जैसा कुछ भी हो तो नहीं, even you shout,
1: yes,
2: ऐसा नहीं, उस तभी सहन नहीं कर लो,
1: और वो टच की जो आपने बात,
2: वो एक बात है, वो शुरुआत है समझो, और भी वो अब्यूज बढ़ गया कभी तो तब कई बार बच्चे तभी शाउट नहीं करते, जोर से रोते हैं, ये कीक ही वॉट एवर, नहीं उस समय आप करो तो मोर देन 50% चांसेस आर देयर दैट यू विल बी सेफ,
1: रिएक्ट, लर्न टू रिएक्ट। एक्चुअली यहाँ एक और मेल आया, हम डिप्रेशन की ही बात कर रहे हैं, तो ये लेडी है, बैंगलोर से है, एंड शी सेज आई एम वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, और जो मेरे मेल कलीग मेरे साथ हैं, खासकर एक के साथ, मैं अब इतनी डिप्रेस हो चुकी हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट मुझे जो है हैंकरिंग करते रहते हैं कि मेरी प्रोग्रेस जितनी भी है वो इसीलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और कंटिन्यूस उनका सब लाइन जो है ना वो अंडरकरंट चलता रहता है, यू नो, इट इज लाइक एक उस सिचुएशन में पहुंच गया है कि वो एब्यूज ही लगने लग गया है, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो मुझे मेरी औरत होने का एहसास दिलाते रहते, तो मुझे कई बार लगता है कि मेरी प्रॉब्लम यही है कि आई एम ए वुमेन, यू नो, ही ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट ऑल माई अचीवमेंट्स टू मी बींग अ वुमेन, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और मैं अपने बॉस के पास भी अगर जाती हूं तो मैं क्या कहूं, तो आई फील सो डिप्रेस्ड कि वाई आई एम बींग विक्टिमाइज्ड अगेन, you know, like these kind of depressions at workplace, especially for women, बहुत ज्यादा देखा गया है कि ये सामने आते हैं, तो इनको क्या कहा जाए,
2: इसको एब्यूज भी कहेंगे, लेकिन अभी पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, अगर ये महिला ये सोचे कि भल वैसा बोल रहे हैं, 10% उसमें ट्रूथ भी है, परंतु मैं तो आगे बढ़ रही हूं, वो एक साइकोलॉजिकली मेरे साथ प्ले कर रहे हैं, तो वो मैं अलाउ नहीं करूंगी,
1: लेकिन
2: कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी,
1: देखिए कॉन्स्टेंट जब आपके कलीग होते हैं, एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ कि कॉन्स्टेंट कलीग जो है जिसके साथ आपको कॉन्स्टेंट काम करना है, औरत कहीं ना कहीं जब बाहर निकली है तो एक प्रेशर के साथ ही निकली है कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को, अभी भी थोड़ा वो इस प्रेशर में जी रही है, जब कॉन्स्टेंट वो कोई बोलता जाता है तो आपकी जो पूरी जो वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रेशर कर रहा होगा उनको,
2: तो एसर्ट करो,
1: हाँ डेफिनेटली,
2: तब अपनी बात को बताओ कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं भी है मुझे कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, वुमन देयर में भी सम डिसएडवांटेजेस जो आप देख नहीं रहे, वो डिसएडवांटेज को ओवरकम करके मैं आगे आई हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ,
1: सबमिसिव रह जाती है, तो हाउ स्ट्रांग शी शुड बी एक्चुअली,
2: अगर तुरंत थोड़ा सा

0: मेंटली प्लानिंग करके उनको सुना दे वह बात तो भी कुछ न कुछ तो कमी जरूर आएगी। सीनियर्स को भी बताने में हर्जा नहीं है कि भी इस प्रकार से वह साइकोलॉजिकली मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर सीनियर्स भी कुछ एडवाइस देंगे तो इस प्रकार का जो वर्बल अब्यूज इससे तो कहेंगे कि वर्बल अब्यूज उनका कम हो सकता है।
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, व्हाट वुड यू से?
2: आपने कहा कि वो औरत है, उसको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा।
1: नहीं करना पड़ेगा नहीं, लेकिन आज के वक्त में अभी भी ये जनरली देखा गया है कि वो कर रही है, करना पड़ेगा। इज लाइक नॉट
2: बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, फिजिकल स्ट्रेंथ पे देयर कैन बी अ डिफरेंस, मेंटल स्ट्रेंथ पे इट्स नॉट, बिकॉज मेंटल स्ट्रेंथ आत्मा की है एंड आत्मा मेल या फीमेल नहीं है। आज आप एक फीमेल कॉस्ट्यूम में हैं, इससे पिछले 30 इयर्स बैक आप एक मेल कॉस्ट्यूम में हो सकती थी, तब आपकी स्ट्रेंथ अलग थी जस्ट बिकॉज यू वर वेयरिंग अ डिफरेंट कॉस्ट्यूम। नो, यू वर द सेम। एंड अगर आज हम रियली डिटैच होकर देखें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कह सकते हैं कि यू नो औरतें ज्यादा स्ट्रांग हैं या मेल ज्यादा स्ट्रांग मेंटली। फिजिकल यस, बॉडी स्ट्रक्चर दैट्स फाइन, बट उसको तो अब तो हम उसको भी ओवरकम कर पाते हैं। लेकिन जहां ये वर्क प्लेस, एक आईटी कंपनी में आपकी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं यूज हो रही है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो मेल और फीमेल में डिफरेंट नहीं हो सकती है बिल्कुल भी, ये खुद हम इस डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। इट्स द वुमन, आई थिंक ये अपने आप को यू नो हम क्रिएट करते हैं जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि आई एम अ सोल, you know, and so is the other person. There is no difference. Hum dono same hai apni capacity ke andar. So there is no question ki dusra hame daba sakta, dusra hame nahi suppress karta, hum khud apne aap ko suppress hone dete hain. Dusre ko jo comment pass karni hai wo pass kar de. I can say anything to you, ab usko lekar aapko kya karna hai? I can say Kanupriya you are very weak, to kya hua? बोलने से आप वीक हो गए? नहीं, आपने उस सेंटेंस को लिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप सोचने लग गए कि मैं तो हूं ही कमजोर, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं तो इस बात का फायदा उठा रही हूं। वो आप तब सोचेंगे जब आप सचमुच फील करते हैं यू नो उस तरह की कोई थॉट। तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें एक्सप्लेन करती है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, आई एम एनर्जी एंड एनर्जी हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, उसको हमें यूज करना है। एंड अगर उस सामने वाले व्यक्ति में पावर है मुझे सप्रेस करने की, तो मुझ में पावर है कि यू नो नॉट टू गेट सप्रेस्ड, आई कैन स्टैंड ऑन माय ओन।
1: आई थिंक एट टाइम्स यू नो व्हेन वी टॉक लाइक दिस, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी हम इन
2: इट्स बिकॉज ऑफ दीज बिलीफ सिस्टम्स नो, अगेन ये सारे जो हमने बिलीफ सिस्टम
1: निकाल देते हैं एंड द रियल पोटेंशियल ऑफ माई सोल, आई द सोल एक्चुअली, कि उसको हम नहीं रियलाइज कर पाते कि किस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं।
0: इवन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो वुमेन में ज्यादा है, इवन इट इज प्रूवन, ब्रेन पावर इफ यू से इंटेलेक्चुअल पावर इज मोर, इसलिए तो लड़कियां टॉपर्स है
1: क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके कहीं और बाकी चीजें पेशेंस है यू नो
0: लाइक वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज ऑल्सो बेटर
2: राइट, बट वैल्यूज भी अगर हम ले, आई थिंक दे आर सेम इन बोथ, क्योंकि यू नो पावर्स भी दे आर सेम इन बोथ, इट्स जस्ट दैट कौन अपने अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। इसी जैसे आपने कहा कि वुमेन में ज्यादा पेशेंस है, या हमने समझते आज तक सुनते आए कि वुमेन में ज्यादा एडजस्टमेंट पावर है, नो इट्स लाइक बिकॉज वो लाइफस्टाइल ऐसे रही इतना टाइम कि उन्होंने अपने एडजस्टमेंट पावर को ज्यादा यूज किया क्योंकि सोसाइटी ने उनको उस तरह से किया, बट दैट डजंट मीन कि एक वुमेन के अंदर ज्यादा एडजस्टमेंट पावर है और एक मेल के अंदर नहीं है। इट्स जस्ट दैट द मेल डजंट एडजस्ट सो मच बिकॉज ही इज यूज्ड टू गेटिंग हिज वर्क डन, लेकिन द फीमेल इज यूज्ड टू ऑलवेज एडजस्टिंग, बट द पावर विल डेफिनेटली बी द सेम इन बोथ ऑफ देम बिकॉज द सोल इज द सेम। इट्स जस्ट दैट इन्होंने ज्यादा यूज किया और इन्होंने उतना नहीं, लेकिन अगर आप अभी जेनरिक देखें तो दोनों में सेम चीजें हैं, डिफरेंस नहीं हो सकती, पावर्स एंड वैल्यूज दोनों में सेम होंगे क्योंकि आत्मा की चीज है वो।
1: बिल्कुल, अगेन यू नो द बेस ऑफ एवरीथिंग कम्स डाउन टू रियलाइजेशन, यू नो सेल्फ रियलाइजेशन, कि क्या किस तरह से हम खुद को ये रियलाइज करवाएं कि एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिप्रेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, समथिंग लाइक एस यू लाइक टू से डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल ये बात सही है, इस केस में तो मैं ये भी कहूंगा कि भी वो खुश भी हो कि भी अच्छा है, भी मुझे कुछ एडवांटेज मिल रहे हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसको करना है वो करने दो, दिस इज जस्ट एन सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड विच शी कैन डेवलप,
2: द अदर पर्सन इज एक्चुअली साइकोलॉजिकली प्लेइंग विद हर, यू नो, तो डोंट लेट समबडी प्ले विद यू,
1: यू नो हम फिर वो अधिकार किसी और को

0: हम किसी को रिमोट कंट्रोल दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि मेरा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और जो मेरी प्रोफेशनल यू नो लाइफ है उस पर उसका इफेक्ट आएगा. तो जो वो चाहते हैं वो सक्सीड हो जाएंगे क्योंकि मैं खुद अपने आप को पीछे लेकर जाऊंगी, कोई और नहीं लेकर जाएगा क्योंकि मैंने अपने माइंड को इस नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स की तरफ ले गई हूँ. सो ही विल अचीव व्हाट ही वांट्स एंड आई एम गिविंग हिम द पावर टू डू.
1: तो आप इनके लिए यही सलाह रहेगी कि ये जो कह रही हैं कि मैं छुट्टी लेके बैठ जाना चाहती हूँ वो ना
0: वो वही चाहते हैं,
1: ज्यादा काम करने लगे, ज्यादा वक्त गुजारे वहां पर और खुश रह के उनके साथ भी अच्छा था यू नो अगर व्यवहार करेंगी तो शायद उनको भी रियलाइज हो कि नाराज क्यों नहीं हो रही है मुझसे
0: और फिर फाइनली गिव अप कर देगा.
2: एक बार एसर्ट जरूर करें.
1: एसर्ट ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमने अभी पूरी तरह से नहीं एक्सप्लोर किया है. हमने एंगर को भी जाना था. एंगर भी कहीं ना कहीं आपने कहा था कि एंगर जब अपने ऊपर होने लगता है तो वो डिप्रेशन को लीड करता है और एसर्टिवनेस जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एंगर उसी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. क्या है एसर्टिवनेस, क्या है एंगर, इसको ज्यादा डिटेल में अगली कड़ी में जरूर जानेंगे. लेकिन फिलहाल डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है. ये हंसती मुस्कुराती जिंदगी हम और आप सब पा सकते हैं. कोशिश यही करते हैं कि हर लम्हे को जिए, लेकिन जब ऐसे मुकाम आते हैं कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब खुद से बात करना शुरू करें और शायद जो दोस्त हमारे अपने पास ही है, जो अंदर है, वो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट फिर ले आए, जिंदगी को फिर से उत्सव के रूप में हमारे सामने ले आए. आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका. आप हमें फोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसी के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. अगली कड़ी में असर्टिवनेस और एंगर, इसमें क्या फर्क है और कितना जरूरी है एसर्टिव होना और कितना जरूरी है कि गुस्सा ना करें, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे. लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए.

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था?
1: नहीं,
0: आ रहा था।
1: नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
3: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई छिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना या उठना, बैठना है, खड़े होना, हाथ ऊपर करना, नीचे करना? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण को पढ़ने से कुंभकर्ण का जो परिचय मिलता है वह बड़ा ही विचित्र सा है। उसमें लिखा है कि कुंभकर्ण जो है वो रावण का एक भाई था, जो 6 महीने सोया करता था और जगाए जाने पर 1 दिन के लिए उठता था और फिर सो जाता था। वास्तव में कुंभकर्ण कोई संज्ञावाचक नाम नहीं है, बल्कि एक लक्षणिक नाम है। जिस मनुष्य के कर्ण कुंभ यानी कि घड़े के समान हो, वह व्यक्ति कुंभकर्ण है। कुंभ की विशेषता यह है कि उसके मुख के पास यदि आप बोले तो उसमें आवाज जाएगी। हाँ, आवाज तो जाएगी, तो सही और थोड़ी गूंजेगी भी, परंतु कुंभ वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। उसमें आपका कहना है कि फलीभूत नहीं होगा। मान लीजिए आप कहते हैं जागो जागो आत्माओं, भगवान अवतरित हो चुके हैं, उनके आत्मी नाता, हाँ, उनसे क्या करता है, उनके साथ जो हमारा आत्मिक नाता है उसे जोड़कर सुख शांति के भागी बनो। तो यह कथन कुंभ में जाकर थोड़ा प्रतिध्वनित तो होगा, परंतु उसमें धारण नहीं होगी। कड़ा तो वही पड़ा रहेगा, उसके लिए जागने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वभाव का है कि कोई अच्छी और लाभदायक बात अथवा ज्ञान का कोई अनमोल रहस्य सुनने पर भी नहीं सुनता, उसे क्रियान्वित अगर हम देखें नहीं करता, तो मानो कि वह कुंभकर्ण ही है। एक देखते हैं यहाँ पर, ये भी देखते हैं, चेष्टाहीन, बुद्धिहीन, आलसी, निद्रा प्रिय ही कुंभकर्ण है। अगर किसी मनुष्य की बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती तो प्रायः कहा जाता है कि यह मनुष्य

0: पत्थर होती है। अगर कोई मनुष्य बात को सुनने और समझने पर भी उसे क्रियान्वित नहीं करता है, अपने आचार और व्यवहार में नहीं लाता है, तो कहा जाता है कि यह तो जड़ है। अगर कोई मनुष्य बात को सुनकर और समझकर जीवन में गंभीरता पूर्वक व्यवहार करता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि यह तो सागर की तरह गंभीर है। अतः जैसे बुद्धि से जैसे बुद्धि की जो शिथिलता होती है, उसकी शिथिलता को पत्थर के से उपमा दी जाती है। क्रियाहीनता की तुलना जड़ से की जाती है और गंभीरता की तुलना सागर से की जाती है। वैसे ही मनुष्य बहरा तो न हो, परंतु बात को सुनकर भी उस पर निर्णय ले सके, अनसुनी कर दे, तो उसके कानों की उपमा कुंभ से की जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: नयन वरदानी हस्त वरदानी, नयन वरदानी हस्त वरदानी, दिव्य मुस्कान सजाए हैं, ममता की मूरत है, स्नेह की सूरत है, पल भर में सबको अपना बनाए हैं, पल भर में सबको अपना बनाए हैं। तेरे साथ हमने ईश्वर का साथ चख लिया, तेरे साथ हमने ईश्वर का साथ चख लिया, तुम्हें नहीं दी विदाई हमने, अपने दिल में ही रख लिया, अपने दिल में ही रख लिया।

और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंशुनी अगर जो बात को कर दिया जाता है तो वहाँ पर एक ही शब्द होता है कि कुंभकर्ण है। ऐसा कहकर से हाँ उसकी उपमा हम कुंभ से की जाती है, यानी कि पत्थर के तो देखते हैं कि कान ही नहीं होते हैं, उसमें तो आवाज प्राय जाती ही नहीं, इसलिए कानों की उपमा पत्थर से नहीं की जा सकती। अर्थात किसी व्यक्ति को पत्थर कर्ण नहीं कहा जा सकता। कुंभ की यह विशेषता है कि उसके ऊपर का जो मुख है और उसकी गर्दन की शक्ल यानी कि उसकी आकृति बहुत कुछ मनुष्य के कान से मिलती है, बस शक्ल ही मिलती है, अक्ल नहीं मिलती। जिसके कान के पर्दे के साथ लगकर अनमोल रहस्य वापस लौट आता है, जैसे कि घड़े के पेंदे के साथ आवाज टकराकर वापस लौट आती है, वह चेष्टाहीन बुद्धिहीन आलसी निद्रा प्रिय जड़ जैसा जो मनुष्य कुंभकर्ण ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देह का अभिमान कई कठिनाई से जगाए जाने पर अगर कुंभकर्ण फिर जाग भी जाता है, जो मनुष्य राम से प्रिय मिलन नहीं मनाना चाहता, नहीं मनाता बल्कि उसका विरोध करने को उतारू हो जाता है और राम के मिलन को खुमारी में रंग कर मदिरा की मस्ती में चूर रहता है, तमोगुणी नशों में ही लगा रहता है, वह नर भी कुंभकर्ण ही है। वह जागा भी तो क्या जागा, वह सचमुच असुर अथवा राक्षस भी ठहरा। राम का पक्ष लेने की बजाय जो रावण अर्थात असुराई की ओर से लड़ा, वह ईश्वर विमुख मनुष्य सचमुच कुंभकर्ण तो है ही, परंतु असुरी बुद्धि वाला होने के कारण असुर भी कहलाता है। उसे रावण का भाई माना जाता है क्योंकि रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला और रावण के 10 मुख पुरुष में और स्त्री में 5 विकार जो है काम क्रोध लोभ अहंकार की व्याप्ति के प्रतीक है। 5 विकारों का पिता है देह अभिमान, सुस्ती निद्रा अथवा आलस्य का पिता है भी देह अभिमान ही है। अतः हम देखते हैं कि एक ही देह हाँ देह अभिमान रूपी पिता की संतान होने के कारण कुंभकर्ण को रावण का भाई कहा गया है। यहाँ पर एक चीज हम और देखते हैं कि सुस्ती के शिकार कई महावीर भी हुए हैं। इसी आलस्य निद्रा अथवा तमोगुण के ने कई ऋषियों को अप्सराओं को तथा कई वानरों को भी खा लिया था। भाव यहाँ पर यह है कि भगवान की खोज करने वाले कई ऋषि भी इससे प्रभावित होकर इस आलस्य के कर्म में चले गए थे। जो माताएं बहने ज्ञान और योग रूपी परो द्वारा सूक्ष्म देवताओं के लोक की ओर भी ध्यान में उड़कर चली जाती थी, उसमें से भी कई ऐसे थे जो इस सुस्ती अथवा अति निद्रा रूपी कुंभकर्ण का शिकार हुई थी और राम की सेवा में लगे कई नर भी इस आलस्य रूपी कुंभकर्ण द्वारा हताहत हुए थे। इसलिए आलस्य और निद्रा रूपी यह कुंभकर्ण बहुत ही बलशाली असुर माना गया है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्र पद की बजाय नेत्रा पद। भला जो मनुष्य ब्रह्मा जी से भी इंद्र पद अर्थात क्या होता है, देवताओं के भी राजा का पद लेने की बजाय नेत्रा पद लेवे, आप उसे कुंभकर्ण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञानियों में श्रेष्ठ माने गए हैं, उनका मत उत्तम माना गया है, वे जगत के पिता हैं, अतः अपने प्रजा पिता से तो मनुष्य ज्ञान रूपी वरदान प्राप्त करके सब कुछ

कर सकता है, परंतु उनसे भी कोई निद्रा की प्राप्ति की चेष्टा करे तो वह सचमुच ही असुर ठहरा। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना कि सुग्रीव कौन है। यह जो कहा गया है कि कुंभकर्ण ने सुग्रीव को बंदी बना दिया, भला हाँ, इसका भला क्या भाव है? ग्रीव का अर्थ है कंठ अथवा गला का, जिसका गला सुंदर हो, अर्थात जिसकी वाणी मधुर हो, सुकोमल और हितकर हो, वही सुग्रीव है। जो राम के पक्ष की बात कहने वाला हो, ईश्वरवादी हो, जो अपने कंठ से प्रभु की महिमा गाए, वास्तव में उसी का गला तो सुंदर है। ऐसा नर ही वास्तव में राम के सेवकों का सेनापति है, क्योंकि वह ईश्वर का परिचय देता है, ईश्वर का सहयोगी होकर वर्तता और अपने वाक बल तथा प्रभु प्रीति से असुराई का कुशलता से सामना करता है। ऐसा मनुष्य भी कभी कुंभकर्ण द्वारा बंदी बन जाता है, अर्थात सुस्ती या निद्रा ऐसी चीज है कि इसके सुहावने जाल में ऐसे लोग ही फंस जाते हैं। सुस्ती मनुष्य की मधुर कल्याणकारी को भी बंद कर देती है। तो भाव यह हुआ कि हमें रावण के साथ साथ उसके सहोदर अथवा भाई कुंभकर्ण को भी जलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी कुंभकर्ण जिंदा है। कैसे? हम देखते हैं कि आज भी कुंभकर्ण जिंदा है। हर एक मनुष्य पर आलस्य निद्रा और ईश्वर विमुक्ता का कुछ न कुछ प्रभाव है, मानो कुंभकर्ण का उनके मन में प्रविष्टा है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। जैसा कि आज हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार मनुष्यों को जब यह संदेश देते हैं कि जागो जागो, अब परमपिता परमात्मा अवतरित होकर सुख शांति का वरदान दे रहे हैं, तो भी वे जागते नहीं है। उनके कानों में यह आवाज पड़ने पर भी उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भगवान से इंद्रप्रस्थ का वरदान लेने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि सोए रहते हैं, मानो उन्होंने पित्रा पद का अभिशाप पाया है। वे मधुर कल्याणकारी तथा ईश्वर प्रेम के वचन भी नहीं बोलते, अर्थात उन्होंने सुग्रीव को भी बंदी बना रखा है। वे राम के मिलन का आनंद नहीं मनाते, बल्कि धन की मदिरा अथवा मान शान की मदिरा के 200 घड़े पीने में मस्त रहते हैं। और तो क्या, वे राम का अथवा भगवान का विरोध करते हैं, अर्थात विपरीत बुद्धि की न्यायी बरतते हैं। और जो लोग भगवान के ज्ञान ध्यान में तत्पर हुए राज ऋषि हैं अथवा भगवान के कार्य में लगे हुए वानर सेना है, उन्हें भी मारने को अथवा कष्ट देने को दौड़ते हैं। फिर ऐसे भी तो लोग हैं

ज्ञान का घोष सुनने पर जागते हैं, परंतु एक दिन जाकर फिर 6 महीने सो जाते हैं। अर्थात 6 महीने तक ज्ञान लेने का अथवा ज्ञान जागृति का नाम भी नहीं लेते। तो क्या यह कहना सत्य नहीं है कि कुंभकर्ण आज भी जिंदा है? यहाँ पर अपने मन को हम टटोल कर देखिए। ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार जो है परम पिता परमात्मा शिव के अवतरण का स्पष्ट संदेश दे के अतिरिक्त आने वाली जो भी यहाँ पर प्राकृतिक आपदा होगी, गृह युद्ध होगी तथा विश्व युद्ध की भी सूचना देते हैं, परंतु इन सब कुछ सुनकर भी वो अनसुनी कर देते हैं। वे कहते हैं बहन जी इसमें हमारी रुचि नहीं है, अथवा अभी हमारे पास समय नहीं है, अर्थात हमें अज्ञान निद्रा में सोए रहने दीजिए। इतना ही नहीं बल्कि वे तो काम रूपी विष के 200-200 घड़ी भी पीना चाहते हैं। क्या ऐसे नर साक्षात एक एवं साकार रूपी कुंभकर्ण नहीं है? वह समय दूर नहीं है जब ऐसे नर भी विनाश के धमाके सुनकर जागेंगे अवश्य, परंतु उस समय देर हो चुकी होगी और उनके मुख से ये शब्द निकलेंगे, ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रकट भी हुए परंतु हम उतनी देर तक निद्रा में सोए रहे, हमने उनसे इंद्र पद का वरदान न पाया। हाय हमें जगाया गया परंतु समय पर न जागे। अब हर एक जो भी यहाँ पर श्रोतागण है उनको चाहिए कि अपने मन को टटोल कर देखें कि कहीं उनके मन भवन के किसी कोने में कुंभकर्ण कहीं सुस्ती निद्रा अज्ञानता अहंकार रूप मद ईश्वर विमुक्ता आदि आदि के रूप में छिपा तो नहीं है, हाँ कहीं बैठा तो नहीं है? यदि छिपा बैठा है तो आज ही रावण की इस भाई का योगाग्नि द्वारा अंतिम संस्कार करके इसका दाह संस्कार करके इसे राख कर डाले। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: जाफेकर बंधु पुणे के रहने वाले थे। स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ओजस्वी वाणी ने उनके अंतर में राष्ट्रीयता का सागर उद्वेलित किया और वे भारत माता के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प मन में ले बैठे। बात उन दिनों की है जब पुणे में भयंकर प्लेग फैल गया था। प्लेग की रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित करने के लिए कमिश्नर के पद पर वॉल्टर चार्ल्स रेंट की नियुक्ति हुई। रेंट बचाव करने के बहाने घरों की तलाशी लेकर निर्दोषों पर अत्याचार करता था और स्त्रियों को अपमानित किया करता था। सारा पूना शहर रेंट के अत्याचारों से त्रस्त हो उठा। तब दामोदर जाफेकर और बालकृष्ण जाफेकर ने लोगों को इस त्रास से मुक्त कराने की सौगंध उठाई। जाफेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को मिस्टर रेंट का शिकार करने का निश्चय किया। इस दिन महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण दिवस हीरक जयंती के रूप में मनाया जाना था। तय दिन दामोदर जाफेकर ने मिस्टर रेंट को और बालकृष्ण जाफेकर ने मिस्टर आयरिस्ट को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नौकरी और पुरस्कार के प्रलोभन में आकर द्रविड़ बंधुओं ने पुलिस को ये भेद दे दिया कि ये काम जाफेकर बंधुओं का था। देशद्रोही द्रविड़ बंधुओं को वासुदेव जाफेकर ने गोली मार दी। 8 अप्रैल 1898 को दामोदर जाफेकर को फांसी दे दी गई। इसके ठीक एक साल के बाद 10 मई 1899 को बालकृष्ण जाफेकर को और 8 मई 1899 को वासुदेव जाफेकर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। भारत माता की आजादी के लिए तीन वीरों ने अपने प्राणों की बलि दे दी।
2: यार मैंने आज तक ऐसा नाटक नहीं देखा।
3: नाटक का एक एक संवाद मानो शरीर में खून को तेज करता है।
2: हाँ यार, वो डायलॉग था ना, कौन सा?
3: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
4: देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
2: राम राम काका।
5: राम राम बेटा, राम राम। क्या बात है, आज बड़े जोशीले दिख रहे हो और शेरो शायरी भी उसी तरह कर रहे हो।
2: हम नाटक देख कर आ रहे हैं।
3: वो भी भगत राजगुरु सुखदेव के ऊपर था।
5: अरे वाह वाह वाह वाह वाह, तब तो बड़ा मजा आया होगा।
2: क्या बताएं काका, एक एक सीन ऐसे लग रहे थे मानो सचमुच हम उस काल में पहुंच गए हों।
6: और काका, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के फांसी वाले सीन में, उसमें तो मुझे रोना आ गया था।
2: अरे तुझे क्या, सभी को रोना आ गया था काका। उनके माता पिता को कितना दुख हुआ होगा
6: यार। किसी परिवार का बेटा फांसी चढ़ जाए तो किसे दुख नहीं होगा।
3: क्या लोग थे भाई, वो भी जो जिए एक साथ मरे एक साथ,
2: वो भी अपने देश के लिए।
6: भाई मैंने आज तक इतिहास में ऐसे वीरों के बारे में नहीं सुना।
3: सच है यार।
5: तो आज मैं तुम्हें ऐसे ही तीन वीर शहीदों की कहानी सुनाता हूँ। अरे बैठो ना, बैठो बैठो बैठो।
6: क्या सचमुच काका,

0: उनके कानों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोशीली वाणी से राष्ट्रीयता की मशाल जल चुकी थी। उनके मन में ये बात घर कर गई कि उन्हें अपनी भारत माता के लिए कुछ कर गुजरना है। दामोदर और बालकृष्ण को बचपन से ही व्यायाम और अस्त्र शस्त्र चलाने में रुचि थी। सामान्य शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने सेना में प्रवेश करके भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाने का संकल्प किया, लेकिन
1: साइलेंस, सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं। अब जिसका नाम पुकारा जाएगा वो यहाँ आएगा। सुरेश नाथ, ओंकार सिंह, बनवारी लाल, गणेश प्रसाद, बस अब भर्ती खत्म, अब बाकी लोग वापस जाएं।
2: क्या हुआ भाऊ?
3: इस बार भी भर्ती नहीं हुई।
2: तो क्या हुआ, दो बार नहीं हुआ ना, हम तीसरी बार कोशिश करेंगे।
3: नहीं, अब हम अपनी सेना तैयार करेंगे, उन्हें प्रशिक्षण देंगे और इस गोरी सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे।
4: शाबाश, मजबूती से जमे रहो।
5: अरे कमजोर आदमी क्या अंग्रेजों से लड़ेगा, जरा जोर लगाओ।
4: नहीं भाई, तलवार ऐसे नहीं, ये यहाँ से पकड़ो मजबूती से, और सामने वाला वार करे तो ऐसे रोको।
0: दोनों भाई अपनी सेना तैयार करके खुश तो बहुत थे, लेकिन अभी तक उन्हें अपने जोहर दिखाने का मौका नहीं मिला। इसी बात का उन्हें मलाल था, लेकिन जल्द ही उन्हें एक सुनहरा अवसर मिल गया।
6: भाऊ, तुम्हें तो पता है पूना में भयंकर प्लेग फैल गया है।
3: हाँ, तो
6: प्लेग की रोकथाम के लिए इस गोरी सरकार ने वाल्टर चार्ल्स रैंड को कमिश्नर बना दिया है।
3: इस रेंड ने तो हमारे शहर में हाहाकार मचा दिया है,
6: लोग उसके नाम से कांपने लगे हैं।
2: ये रेंड अपनी गोरी सेना के साथ प्लेग की रोकथाम की आड़ में हमारे मंदिरों मस्जिदों को अपवित्र कर रहा है।
6: और तो और, ये लोग घरों में घुसकर घर के लोगों को मारते हैं।
2: कई जगह तो उसने प्लेग के कीटाणु मारने के लिए घरों को आग लगा दी। इस रेंड का आतंक बहुत बढ़ता जा रहा है भाऊ,
6: सारा पूना इस रेंट के नाम से थरथरा रहा है।
3: उस रेंट को प्लेग की रोकथाम करने दो, हम उसकी व्यवस्था करेंगे।
2: लेकिन हम ये सब करेंगे कब?
3: रेंट और उसके लाल मुंह के बंदर हमारे यहां भी सफाई अभियान के लिए आएंगे, उसी वक्त हम उन्हें खत्म कर देंगे।
2: भाऊ, मैंने सुना है कि वो लोग आज ही इस तरफ आने वाले हैं।
3: ये तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही वो लोग यहां आएंगे और उन लोगों में से किसी ने भी किसी भी तरह से दुर्व्यवहार किया तो तुम उन लोगों पर हमला बोल देना, और तुम्हारे हमला बोलते ही मैं रेंड का काम तमाम कर दूंगा। बालकृष्ण, तुम समझ गए ना?
2: जी भाऊ।
3: अच्छा, मैं जाता हूं।

0: Carlo. Ciao, Piccolo. Ciao, Piccolo. Dante, want a butt in your hat? Oh, pass, I took car. Chai, you hump of car, chai, car. Chai, he chai, ho.
1: Oh, God!
2: देखा हमारी भैंस कितनी राष्ट्रीय है, वो जानवर होकर भी तुम लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर रही, तो हम इंसान होकर तुम्हें कैसे बर्दाश्त करें?
1: Oh my God! चलो इधर से समय हो रहा है।
3: क्या हुआ बालकृष्ण, वो लोग चले क्यों गए?
2: हमारी इस देश प्रेमी भैंस की वजह से।
3: मतलब जैसे ही वो बोरा आगे बढ़ा, हमारी इस राष्ट्रपिता से ओतप्रोत भैंस ने उसे जोरदार टक्कर मारकर चारों खाने चित कर दिया।

0: तो फिर क्या उन्होंने कमिश्नर रैंड को छोड़ दिया?
1: नहीं, उस दिन किस्मत ने उसे बचा लिया, लेकिन चाफेकर भाइयों ने तो उसे मारने का अटल इरादा कर ही लिया था। वो लोग लगातार 3 महीनों से कमिश्नर रेंड की टोह ले रहे थे। वो कहाँ रहता है, कहाँ आता जाता है, वासुदेव ने बारीकी से कमिश्नर रेंड की रुचि अभिरुचि के बारे में पता कर रखा था।
2: तो उन लोगों ने अभी तक रेंड को क्यों नहीं मारा?
1: क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कमिश्नर रेंड ही मारा जाए। उसका मरना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने इस काम को करने के लिए पूरा प्लान बनाया था। और वो दिन आ ही गया जिसका चाफेकर भाइयों को बेसब्री से इंतजार था। तारीख थी 22 जून 1897। महारानी विक्टोरिया का राजरोहण दिवस हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा था। चाफेकर भाइयों ने सुबह जल्दी उठकर उपवास रखने का संकल्प लिया। पूजा अर्चना करके घर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भैंस के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा।
3: हमें आशीर्वाद दो ताकि हम उस कमिश्नर रैंड को हमेशा हमेशा के लिए इस पवित्र माटी से हटा दें।
4: चलो बालकृष्ण, गवर्नमेंट हाउस चलते हैं।
5: चलो भाऊ चलो।
6: बस वो रही हमारी मंजिल।
4: यहाँ तैयारी चल रही है। मैं रैंड को उस तरफ देखता हूँ, तुम यही रुको।
5: क्या हुआ भाऊ?
4: वो यहाँ नहीं है। चलो वो साइड मरीज चर्च में होगा।
5: चलो चलो।

0: यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है, लेकिन वो कहाँ है?
1: कहीं देखा?
0: यहाँ तो बहुत भीड़ है भाऊ।
1: पूरा वहां।
0: चलो भाऊ चलो।
1: नहीं यहाँ नहीं, गोलियां चलने से भगदड़ मच सकती है और इस भगदड़ में कई बेकसूर लोग भी मर सकते हैं।
0: तो क्या करें भाऊ?
1: शाम को गवर्नमेंट हाउस में बड़ा जलसा होने वाला है, तुम्हें पता है। शाम को रेड भी वहां आएगा, हम वहीं उसका काम तमाम कर देंगे।
0: ठीक है चलो।
1: महादेव, मैं मुख्य फाटक पर रहूंगा, मुझसे थोड़ी दूर बालकृष्ण तुम रहोगे और उसके आगे महादेव तुम रहोगे। इसी रात का हमें इंतजार था। देखो, किसी प्रकार की कोई भी भूल हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसीलिए हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा।
2: तुम ठीक कहते हो, अब जल्दी करो, वो निकल ना जाए।
1: अपना ध्यान रखना तुम लोग।

0: रात हो चुकी है, वो बाहर आता ही होगा।
1: रेंट के पीछे ये किसकी बग्घी है? भाऊ को बताना होगा कि अभी उस पर हमला नहीं किया जाए।
2: साहब, आपने हवा सुनी?
0: चलो, कोई जहाती है जो अपने किसी साथी को बुला रहा है।

0: हाँ कोई है? कौन कौन? उठो उठो भौजी से। कौन आते?
1: तेरी मौत।
2: ओ जीजा।

0: Mr. Harris!
1: Kawa!
0: Waha! Ocher mani gori ka vasuna! Or wasi mani kisi ka pati deka!
1: Hai, hai, apel! Kano-chum!
2: Diri bot! Help me!
3: बहुत अच्छा हुआ
4: उस अंग्रेज ने पूरे पूना में आतंक मचा रखा था
5: मगर वो लोग थे कौन जिन्होंने उसे मारा
3: वो जो भी थे मगर थे बहुत हिम्मत वाले
6: आज की ताजा खबर कमिश्नर रैंक और मिस्टर आयरस की गोली मारकर हत्या
1: छाछा आज 2 महीने हो गए हैं उन हथियारों का पता नहीं चला कुछ करो
7: बच्चा हमने हथियारों का नाम बताने वाले को 20,000 रुपए देने की बात कही थी उसे सुनकर भी कोई सामने नहीं आया
8: सर जो भाई 20,000 के लालच में आकर हमें उन लोगों का नाम बताने को तैयार हो गए हैं
1: वाई गॉड कहाँ है वो लोग
8: हाँ वो लोग बाहर खड़ा है
1: सुझाव भी करो उनको लेकर आओ
8: ओके सर
9: सर ये है गणेश शंकर ड्राइवर और ये है इसका छोटा भाई रामचंद्र
10: राम राम सरकार
1: राम राम देखो गणेश और रामचंद्र तुम लोग अगर हमें मिस्टर रैन और मिस्टर आयरस के कातिलों के बारे में बता दोगे तो हम तुमको 20,000 रुपया देंगे और इसके अलावा भी बहुत सा इनाम देंगे और तुम दोनों भाइयों को एक अच्छी नौकरी भी देंगे बताओ कौन से वो लोग बताओ
3: तो क्या फिर उन लोगों ने चापेकर भाइयों का नाम बताया
11: पैसे का लालच भाई से भाई को मरवा देता है और फिर द्रविड़ भाइयों को तो केवल नाम बताने के लिए 20,000 रुपए जैसी बड़ी रकम मिली थी और साथ साथ नौकरी का आश्वासन भी अंग्रेजों ने दिया था और वो लोग अंग्रेजों के बिछाए जाल में फंस गए और बाल कृष्ण चाफेकर का नाम बता दिया लेकिन द्रविड़ भाइयों को ये नहीं पता था कि जिस दिन चाफेकर भाइयों को उनके गद्दारी का पता चलेगा तो वो उन्हें क्या इनाम देंगे
3: फिर चाफेकर भाइयों का क्या हुआ काका
11: अरे होना क्या था वही हुआ जो अधिकतर क्रांतिकारियों के साथ हुआ अंग्रेजी सरकार को जैसे ही दामोदर और बालकृष्ण के बारे में पता चला उन्होंने चाफेकर भाइयों की धरपकड़ शुरू कर दी और उन्हें उसमें सफलता भी मिली दामोदर हरी चाफेकर पकड़ा गया सेशन जज क्रू की अदालत में मुकदमा चला

ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी दामोदर हरिचाफेकर ने कमिश्नर रैंक और मिस्टर आरेस्ट की हत्या नहीं की, मगर सबूत बताते हैं कि हत्या के समय दामोदर वहां उपस्थित था।

0: लिहाजा अदालत दामोदर हरी चाफे कर को दोषी मानती है और सजाए मौत का हुक्म देती है।
1: दामोदर को इस बात का जरा भी गम नहीं था, उसे तो इस बात की इतनी खुशी थी कि वो अपने शहर मगध, अपने देश के लिए कुछ कर सका। वो अपने आप को धन्य मान रहा था और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की दी हुई गीता को हर समय अपने सीने से लगाए रहता था, नित्य पाठ किया करता था। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दामोदर के अनुरोध पर अपनी निजी प्रति हस्ताक्षर करके उसे दी थी। दामोदर मानो उस गीता को अपना पुरस्कार समझकर हमेशा अपने पास रखता था। 18 अप्रैल 1898 के दिन जब उसे फांसी दी जानी थी, उस रात दामोदर गहरी नींद सोया। सुबह जल्दी उठकर नहाया, प्रभु वंदना की, अपने देश, अपने घर वालों, अपने साथियों, अपने आदर्श लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद कर सीना चौड़ा कर मौत के दरवाजे खटखटाने चल दिया और मौत के शिकंजे ने उसे अपने पंजों में दबा लिया। मगर मौत का पंजा भी दामोदर के हाथ से अंतिम समय तक गीतानुमा पुरस्कार को उससे अलग ना कर सका।
2: काका, फिर बालकृष्ण का और बाकी लोगों का क्या हुआ?
1: बालकृष्ण शायद अंग्रेजों के हाथों कभी नहीं लगता, पर जब उसने देखा कि उसके नाम पर निरपराध लोगों को सताया जा रहा है तो ये बालकृष्ण नहीं सह सका और स्वयं पुलिस के पास पहुंच गया। बड़े भाई की मौत से बालकृष्ण को गहरा धक्का लगा था, भाई की मौत से वो अस्वस्थ हो गया था।
2: काका, उन देशद्रोही द्रविड़ भाइयों का क्या हुआ?
1: शाफेकर भाइयों में से एक भाई तो देश पर कुर्बान हो चुका था और एक जेल में था। छोटा भाई वासुदेव बाहर था, पर वो ये जानता था कि भाई दामोदर की तरह मंझले भाई बालकृष्ण को भी फांसी का दंड मिलेगा। वासुदेव ये जानता था कि वो अपनी माँ का आखिरी सहारा है।
3: माँ, तेरे दोनों बेटे भारत माता के प्रति अपना अपना कर्तव्य निभा चुके हैं, अब अपने इस छोटे बेटे को भी आशीर्वाद दो माँ, और आज्ञा दो कि वो अपने भाइयों की तरह अपने देश के लिए कुछ कर सके। आशीर्वाद दो माँ।
4: जा बेटा जा, मुझसे ज्यादा इस देश को तेरी जरूरत है, जा।
5: आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि दामोदर भाव और बालकृष्ण की खबर पुलिस को किसने दी।
6: अब आप लोग ही बताएं कि गणेश और रामचंद्र का क्या करना है।
7: महादेव भाव, आप हम सबसे बड़े हैं, आप जो कहेंगे हम सबको स्वीकार होगा, क्यों भाइयों?
8: हाँ, ये बिल्कुल ठीक है।
6: उन दोनों ने पुलिस से अपना इनाम तो ले लिया, पर हमारा इनाम अभी देना बाकी है। आज रात मैं, वासुदेव और साठे उनका इनाम उनके घर पर देकर आएंगे।
7: हम भी आपके साथ चलेंगे।
6: नहीं, ज्यादा लोगों की वजह से परेशानी बढ़ सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को खबर पहुंचा दी जाएगी। वंदे मातरम।
8: वंदे मातरम।
9: वासुदेव, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है?
3: जी।
9: साठे, तुम बाहर गली के मोड़ पर नजर रखना।
10: ठीक है, मैं जाता हूँ।
1: 8 फरवरी 1899 की वो रात, वासुदेव पंजाबी लिबास पहना था। वासुदेव द्रविड़ भाइयों के घर पहुंचा। उसने देखा कि द्रविड़ भाई अपने कुछ मित्रों के साथ ताश खेल रहे हैं। उसने नीचे से ही आवाज लगाई।
11: ओए गणेश।
12: अरे गणेश, देखो बुला रहा है।
11: तुझे और तेरे भाई को प्रवीण साहब ने थाने बुलाया है, चेती कर।
10: ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं।
13: छोटे, इधर तो आ। ये भुईन साहब ने इतनी रात गए क्यों बुलाया है?
14: भैया, शायद किसी के बारे में जानकारी वानकारी चाहते होंगे या फिर कुछ इनाम इनाम देना चाहते होंगे। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो।
13: अच्छा दोस्तों, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, ताश की बाजी अपन फिर कभी जमा लेंगे।
14: अरे भैया, जल्दी चलो।

0: जल्दी ये अंग्रेज टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। और सोचो इतने बड़े साहब ने खुद बुलाया है अपने को।
1: हाँ छोटे, देखना हम इन अंग्रेज साहबों की कृपा से कहाँ पहुँच जाएंगे।
2: हाँ गद्दार, तू जानता भी नहीं है कि तू कहाँ जाएगा।
0: बचने
2: मगर तेरा सबसे बड़ा इनाम मैं तुझे अभी देता हूँ। ये ले। और तू कहाँ भाग रहा है? ये ले।
3: फिर क्या हुआ काका?
4: अरे होना क्या था बेटा, भाइयों का बदला लेकर वासुदेव और महादेव पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गणेश तो घटना स्थल पर ही मारा जा चुका था और रामचंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
3: बस फिर वही मुकदमा और फांसी है ना काका?
4: हाँ।
3: क्या निडर लोग होते थे उस समय?
4: अरे निडर, अरे लोहे का कलेजा था उनका, लोहे का। वो वीर फांसी का फंदा तो ऐसे खुश होकर गले में डालते थे कि जैसे कोई दूल्हा वरमाला पहन रहा हो। अदालत ने वासुदेव चाफेकर 8 मई, महादेव रानाड़े 10 मई और बालकृष्ण चाफेकर 12 मई 1899 फांसी की तारीख तय की। और जब 8 मई को वासुदेव को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में वो कोठी पड़ी जिसमें उसका बड़ा भाई बालकृष्ण अपनी फांसी की बाट जो रहा था। वासुदेव ने कहा,
5: भैया अलविदा, मैं जा रहा हूँ, बहुत हिम्मत से काम लेना, मैं बहुत शीघ्र ही तुमसे आकर मिलूंगा। वंदे मातरम।
6: वंदे मातरम।
3: सही बात है काका, ऐसा जज्बा ऐसा जुनून कहाँ देखने सुनने को मिलेगा।
7: काका क्या उस दौर में सभी ऐसे दीवाने होते थे?
4: हाँ बेटा, समय की मांग यही थी उस समय, और वो नौजवान अपने देश की मांग को समझते थे। उनको अपने प्राणों से ज्यादा देश की आजादी प्यारी थी।
3: हाँ काका, इन देशभक्तों के आगे तो सिर्फ श्रद्धा से अपने आप ही झुक जाता है।
4: सही कहते हो बेटा, सही कहते हो। उन सारे देशभक्तों को जितना सराहा जाए कम है, बहुत कम है।
7: काका लेकिन मैं ये सोचकर सिहर जाता हूँ कि उस माँ का क्या हुआ होगा जिसके तीनों बेटे शहीद हो गए थे। उस पर क्या बीत रही होगी, उसका क्या हाल हुआ होगा। दिल तहल उठता।
4: सभी को ऐसा ही लगता था। पर बेटा, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। तीन शेर जैसे बेटों की जननी क्या किसी शेरनी से कम होगी? बस ऐसा ही कुछ सोचकर स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता चाफेकर बंधुओं के घर पहुंची। उनके कोमल हृदय में ये मानवीय भाव उमड़ रहे थे कि चाफेकर भाइयों की मां बिन पानी की मछली जैसे तड़प रही होगी, रो रोकर उसका बुरा हाल होगा।
3: सच है काका, जिस मां के तीन जवान बेटे ना रहे हों उसका ये हाल तो होना ही है। हाँ काका, किसी माँ पर एक साथ दुखों का पहाड़ गिर जाए तो उसके लिए रो रोकर प्राण देने के अलावा कुछ नहीं रह जाता।
4: हाँ सिस्टर निवेदिता यही सोचकर सांत्वना भरे शब्दों का, संवेदनाओं का, मानवीय भावनाओं से भरा शब्दकोश लेकर पहुंची थी। लेकिन उस शब्दकोश के तो पृष्ठ भी नहीं खुल सके।
7: क्यों,
3: ऐसा क्या हुआ?
4: जब सिस्टर निवेदिता ने चाफेकर भाइयों की माँ को देखा तो ये पाया कि उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज है, अलौकिक गर्भ की दीप्ति है, अद्भुत गंभीर युक्त संयत शांति है और वेदना की एक भी रेखा नहीं है। ये देखकर सिस्टर निवेदिता ने सोचा, ऐसी माँ के प्रबोधन के लिए शब्द कुछ भी नहीं, और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उस माँ के चरण छूकर अपने आप को धन्य मान लिया।
3: सच है काका, धन्य है ऐसी सारी माताएं जिनके कारण भारतवर्ष इन गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया।
4: अरे ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्होंने भारतवासियों के हृदय में एक नए दर्शन का प्रकाश दिया। उनके बलिदानों की कथाएं हम सबको वीरता की प्रेरणा देती रही हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी

0: वीरता की प्रेरणा देती रहेगी।
1: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
2: थैंक यू सो मच।
1: हम प्यार की बात कर रहे थे, और प्यार भी कब, जब बहुत बहुत बहुत इंसान को जरूरत होती है उसकी। खुशी में तो सभी कर लेते हैं, अच्छे समय में तो सभी कर लेते हैं। बहुत अच्छा था लास्ट एपिसोड, लेकिन एक लाइन मैंने और पढ़ी थी, दोबारा पढ़ता हूँ। परफेक्ट मैच्योरिटी इज व्हेन अ पर्सन हर्ट्स यू एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एंड डोंट हर्ट देम बैक।
2: परफेक्ट।
1: अब देखिए, जब एक इंसान लव चाहता है और उसको बहुत बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी गलती करके आ गया, कोई बड़ा नुकसान करके आ गया, बिजनेस डील रॉन्ग करके आ गया, अब इस वक्त वो ना चाहते हुए भी उसने फैमिली को तो हर्ट कर ही दिया ना।
2: राइट। इस वक्त ना चाहते हुए भी उसने फैमिली को हर्ट कर ही दिया। मतलब उसने कर्म ऐसा कुछ किया, कर्म ऐसा किया जिससे परिवार हर्ट हुआ। बट देन व्हाट डज इट से, इफ समवन हर्ट्स यू अंडरस्टैंड देम एंड डोंट हर्ट देम बैक। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम हर्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हैं किसी। इवन हर्ट तो बहुत बड़ी चीज के लिए भी नहीं ना, छोटी छोटी बात के लिए भी हो सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हम हर्ट हो गए हैं। तो उन्होंने जो किया, हम हर्ट हो गए, लेकिन हम अब ऐसा कुछ ना करें या ऐसा कुछ ना कहें जिससे, क्योंकि हम हर्ट हैं, हम वो कह दें या कर दें जिससे सामने वाला भी हर्ट हो जाए। बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम अ कंटिन्यूअस विशेष साइकिल। आप सारा दिन में आज देखें, एक चीज हो रही है जो बहुत कहीं कॉमन हो गई है, हम में से मेजोरिटी ये कर रहे हैं। हम लोगों के व्यवहार को कॉपी करते हैं। बहुत सिंपल, इतना हर्ट में भी नहीं, ये तो बड़ी बात, छोटी बात। मतलब जैसे एक पार्टी में गए या कहीं भी गए जहां लोग हैं, किसी ने मेरे से प्यार से बात की, हमने प्यार से बात की, किसी ने मुझे देखकर बात ही नहीं की, हमने भी बात करना जरूरी नहीं समझा, किसी ने मुझे देखकर मुंह उधर मोड़कर इग्नोर करके, वेरी ऑब्वियस इग्नोर करके उस तरफ मुड़कर चले गए, तो हमने भी कहा ठीक है नहीं बात करनी, तो हमें भी क्या जरूरत थी आपसे बात करने की,

0: भी मुड़ गए, उस तरफ चले गए। किसी ने हमारे बारे में औरों से बात करनी शुरू कर दी, हमारे बारे में चार बातें बोल दी। वहां हमें पता चला हमने चार लोग और ढूंढ लिए, जिनके बारे में हमने इनके बारे में उनको बोलना शुरू कर दिया। सारा दिन में एक कॉपी कॉपी कॉपी कॉपी हम करें, सिर्फ नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में भी कॉपी हम कॉपी करते जाते हैं। अब इससे क्या होता जाता है, जो एनर्जी एक स्टार्ट कर देता है और दूसरा उसको कॉपी करता है, और क्योंकि दूसरा उसको कॉपी करता है, सामने वाला फिर वही कॉपी करता है, मैं फिर वही कॉपी करूंगी वही कॉपी करूंगी, तो वेरी सून जो एनर्जी है, स्पेशली इफ इट इज अ हेवी नेगेटिव एनर्जी, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम कॉपी करते गए। इवन सिंपल चीज में, गुड मॉर्निंग, उन्होंने तो गुड मॉर्निंग बोला नहीं आज मुझे, उन्होंने तो आज ये किया नहीं, मैं ये हर टाइम करूं तो मैं भी उनको कॉपी करने लगती हूँ। उन्होंने बर्थडे पे मुझे विश नहीं किया, मैंने तो किया था, अब मैं भी नहीं करूंगी। वो हमारे यहाँ फंक्शन पे नहीं आए थे तो फिर हमें भी जाने की जरूरत नहीं है, वो तो लेकिन आए थे तो फिर हमें भी जाना होगा।
1: हमारे लिए इतने की गिफ्ट लाई थी, सिर्फ 1000 रुपए की या 250 की या 5 की, जाओ ये उसके पास जाओ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलर के पास जाओ, इसकी वैल्यूएशन करा के लाओ, उन्होंने हमको 10,000 की दी या 5 की, तो हम वही देंगे। यहाँ तक कॉपी है
0: हर लेवल पे।
1: एक मेरा दोस्त था, वो उसको मैं गोपाल जी, गोपाल भाई, गोपाल जी करता था, पता नहीं कहीं दोस्ती में बातों बातों में एक दिन मैंने उसको बोले गोपाल, तो उसने बोले आप बोल सुरेश। तो हम एक दूसरे को गोपाल जी, गोपाल भाई, सुरेश जी, सुरेश भाई, तो एक सेकंड लगा उसको, इतना अटैक किया उसने, तो मेरे को रिमाइंड किया कि भाई आप इस तरह बात करोगे तो मैं भी करूंगा। मैंने कहा यार गोपाल भाई सॉरी,
0: दिस इज इट,
1: क्या करूं,
0: दिस इज सो डीप। अब अगर उन्होंने ऐसा बोला, अब आपने रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है ना, आपने पहले उनके अकॉर्डिंग टू आपने रिस्पेक्ट नहीं की, आपने जी नहीं लगाया
1: एक बार,
0: लेकिन इमीडिएट रिफ्लेक्शन वहां से क्या आया, उन्होंने भी जी नहीं लगाया। अब अगर उस बात को भी आप कॉपी कर देते, कि आप भी फिर थोड़ा सा गुस्से से बोल देते, फिर उसको वो कॉपी करते, दिस इज हाउ इट विल बिकम
1: टेनिस मैच,
0: इट इज लाइक दैट। ये पिंग पोंग एनर्जी गेम ही तो चल रहे है सारा दिन में। और अब जैसे आपने
1: पिंग पोंग एनर्जी,
0: हाँ ये पिंग पोंग एनर्जी, इट डजंट चेंज ओनली ना। कॉपी करना कितना इजी होता है, आपने मुझे स्माइल किया मैंने भी स्माइल कर दिया, आपने प्यार से बात की मैंने भी प्यार से बात की, आपने नई बात की मैंने भी नई बात की, इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सामने वाले को कॉपी करते जाओ। लेकिन आपने प्यार से नई बात की, आपने तो इग्नोर कर दिया, आप देखकर ऐसे होकर चले गए, या आपने गलत बात की, रूडली बात की, उसमें फिर मुझे अगर कुछ और क्रिएट करना है, ये थोड़ा सा अटेंशन, अवेयरनेस एंड फिर एफर्ट, ये लगता है। इट्स लाइक सब लोग रॉन्ग साइड पे अगर गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रही हूँ तो कौन सी बड़ी बात, विद द क्राउड, लेकिन सब रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं, उनके बीच चलते हुए एक अलग साइड पर जाना, उनको भी अवॉइड करना कि कहीं टक्कर ना हो जाए, और खुद राइट साइड पे चलाना, अटेंशन, अवेयरनेस, थोड़ी सी मेहनत। आज टाइम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। नेचुरल की डेफिनेशन में उन्होंने ऐसा किया, ऑब्वियसली आई डू दिस, शी बिहेव लाइक दिस, ऑब्वियसली आई डू दिस, शी डिडंट कॉल मी, व्हाई शुड आई कॉल, हाउ मेनी टाइम्स विल आई डू इट, मैंने 3 बार किया, उन्होंने नहीं किया, मैंने भी नहीं करना, इजी गेम,
1: माइंड गेम,
0: ये इजी गेम हो गई, कॉपी कॉपी कॉपी कॉपी करते।
1: सिस्टर मेरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का क्या होगा, फिर मैं कौन हूँ,
0: ब्यूटिफुल,
1: मैं दिन में 25 आदमी से मिलूँ, 25 आदमियों की तरह बिहेवियर करूँ। सपोजिंग एक फिल्म में जिसके साथ कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ तो आपकी कॉपी, फलाने हीरो के साथ कर रहा हूँ तो उसकी कॉपी, 10 फिल्म में उन्हीं की कॉपी करता रहा तो सुरेश ओबेरॉय की इंडिविजुअलिटी कहाँ गई।
0: मतलब एज एन एक्टर ना, आपकी एक्टिंग स्किल क्या रही, जब अगर आपने, वैसे भी कहते हैं ना किसी की कॉपी नहीं करना एक्टर,
1: नंबर 2 हो गया ना,
0: हाँ नहीं पर कॉपी की तो अपनी क्रिएटिविटी ना, आपके अंदर एक टैलेंट है, वो आपका टैलेंट सबसे अलग होगा, लेकिन उसको नहीं बाहर निकाला, सिर्फ किसी और एक्टर की कॉपी कर दी, इवन इफ इट मीन्स कि आपने दुनिया के बेस्ट एक्टर की कॉपी की, यू नो, अगर आप बेस्ट एक्टर की कॉपी करेंगे

0: तो वो अपने आप में काफी अच्छा होगा क्योंकि आप बेस्ट एक्टर की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं होंगे, वो किसी की कॉपी होगी और वो कॉपी में फिर आपकी जो निकल के आनी चाहिए टैलेंट क्रिएटिविटी, जिससे आपको खुशी मिलेगी, जब तक हमारी अपनी एनर्जी क्रिएटिविटी वो नहीं निकल के आएगी, देयर इज नॉट गोइंग टू बी सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस।
1: सही बात है, ओरिजिनैलिटी। और लेकिन इवन अ पेंटर एक पेंटिंग रख के उसकी कॉपी कर दे,
0: yes.
1: और खुद क्रिएट करे इमेजिनेशन से, नेचर को देखे,
0: एनर्जी अलग होगी,
1: देखते हुए भी नेचर को अपना कुछ ऐड करे।
0: अब ये तो अच्छी चीजों की कॉपी में भी हो रहा है, अच्छी चीज की कॉपी ना, बेस्ट एक्टर की कॉपी करें, बेस्ट पेंटिंग की कॉपी करें, यू स्टिल कॉपिंग समथिंग नाइस बट इट्स स्टिल नॉट ओरिजिनल। अब लेकिन इसमें जैसे आपने कहा, अगर सारा दिन में 5 एक्टर्स के साथ काम किया और हर समय जिसके साथ काम किया उसको ही कॉपी कर दिया, तो खुद क्या बन गए? एटलीस्ट अगर एक की कॉपी करें तो किसी एक के जैसे बन जाएंगे, है ना, मैं एक की कॉपी करूं सिर्फ तो उनके जैसा उनकी कॉपी बन जाऊंगी, लेकिन 10 की कॉपी करूं तो 10 की कॉपी करते करते करते तो मेरी पर्सनालिटी ही पूरी डिस्टॉर्ट, इनके साथ ऐसे, इनके साथ ऐसे, इनके साथ ऐसे, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी, आई बिकम एन इमिटेशन ऑफ ऑल द पीपल आई मीट, एंड द मोर आई कॉपी एंड इमिटेट अदर पीपल आई एम फिनिशिंग माई ओन इंडिविजुअलिटी। अब इसमें भी अगर नेगेटिव बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं तो फिर वो जो रिलेशनशिप बनेगा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सिंपल चीज, सुबह बहू ने उठ के विश नहीं किया, कितने इनलॉज ये बोलते हैं, छोटी है उसको आकर पहले पैर पड़ने चाहिए थे, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, नमस्ते बोलना चाहिए, उसने नहीं बोला। अच्छा, उसने नहीं बोला, हम भी तो बोल सकते थे, नहीं हम क्यों बोले जब उसने नहीं बोला तो?
1: अब तो बोलेगी देर से तब भी हम जवाब नहीं देंगे
0: क्योंकि उसने नहीं बोला।
1: हाँ, तो उसको याद रहे ना, सुबह नहीं बोला दोपहर को बोल रहे,
0: तो हमने क्या कर दिया, उसकी कॉपी कर दी। अब अगर
1: दोपहर को आके भी अगर बोल दिया,
0: हाँ,
1: तो सुबह की नमस्ते कहाँ गई, अब याद आया,
0: यस, क्योंकि उसने रूड बिहेवियर को रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, रूडली। अब यही देर कुड हैव बीन अनदर ऑप्शन। एक, अगर हम सारा दिन, जब हमें ये समझ में आ जाता है ये कॉपी गेम अगर हमारे आसपास के मेजोरिटी कर रहे हैं, तो इस चीज को अगर हम अंडरस्टैंड कर ले, एक्सेप्ट कर ले और इसको अब एक्चुअली यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम बन जाती है। अब मुझे अगर ये समझ में आ गया कि मेरे आसपास के लोग, मेजोरिटी लोग कॉपी करते हैं, तो मेरे लिए काम बहुत इजी हो जाता है। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे उनको कॉपी नहीं करना है, मुझे ये मालूम है कि वो मुझे कॉपी करेंगे, मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं उनको नहीं कॉपी करूं, लेकिन मैं वो बनूं या मैं वो व्यवहार करूं जो मुझे उनसे चाहिए, और जब मैं वो वैसा व्यवहार करूंगी वो तो कॉपी करने वाले हैं क्योंकि सब लोग कॉपी करते हैं आज।
1: नेसेसरी है, गेस
0: सी लाइक दिस, इट्स अ वेरी,
1: आप मुझसे अच्छा बात करोगे तो मैं अच्छा बात करूंगा, जरूरी है
0: 100%। चलो 99% तो डेफिनेट,
1: सही बात है, किसी को आप मुस्कुरा दो तो मुस्कुरा देते ही,
0: नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगे आप,
1: सही है,
0: चाहे ऊपर से ही सही शुरुआत हो जाएगी ना। सपोज आपके मन में कोई अभी प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई गुस्सा है, तो आपने स्माइल ही नहीं किया, कोई पास्ट की बात है जिसकी वजह से आप नाराज हैं, तो आपने इग्नोर कर दिया। अब अगर मैं खुद से आपके पास आऊं और खुद से बात करूं, प्यार से बात करूं, तो आप और कुछ नहीं, अंदर की हर्ट रख के भी ऊपर से एक मिनट स्माइल करके बात नहीं करेंगे? करेंगे, करना ही पड़ता है।
1: कभी कभी ऐसा भी होता है सिस्टर, देखिए जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए मैं रिहर्सल कर रहा था, मैं स्टेज पे था, तो मैंने देखा कि एक तबला के मेस्टर बहुत बड़े आदमी वहां बैठे हैं, फिर मैंने बोला कभी जिंदगी में मुलाकात तो हुई नहीं, मैं हेलो बोलूं नहीं बोलूं, बोलूंगा जवाब देंगे नहीं देंगे, किस टाइप के हैं नहीं, मतलब थोड़ा सा उस वक्त स्कूल कॉलेज में जो होता है ना ऐसा हो गया था, थोड़ा सा मैं ऐसे हो गया, चुपचाप उनको बात किए बिना मैं अपना स्टेज पे गया, रिहर्सल किया और लौट के आया, फिर उठे अपनी कुर्सी से, वहां तक आधा रास्ता है, बोले कैसे सुरेश भाई, मेरा नाम सुनसो, तो मुझे इतनी शर्म आई और मैं इतना सीखने को मिला, मैंने कहा यही चीज मैं कर सकता था।

0: जैसे उन्होंने किया
1: मैं पिघल गया एकदम.
0: लेकिन आपने क्या किया?
1: मैं बहुत ज्यादा डबल रिस्पेक्ट दिया.
0: दिस इज इट, हो गया. दिस इज इट. अब यही ऑपोजिट फील.
1: ये मैं कब सीखूंगा कि मैं वो बनूं जो उठ के खुद जाऊं और बोलो कैसे हैं आप अहमद सर?
0: रीजन कोई भी हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है. आप अगर इस समय मुझसे बात नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा, ये भी रीजन हो सकता है. रीजन तो कितने हो सकते हैं. हो सकता है आपने मुझे देखा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है. हमारे पार्टी में आपने देखा ही नहीं. देखा
1: बहुत कॉमन एक्सक्यूज है.
0: ये कॉमन एक्सक्यूज
1: नहीं, हेलो
0: एक्सक्यूज नहीं. वे लुकिंग एट दी ऑप्शन.
1: मैंने तो आपको देखा ही नहीं.
0: सुनने के लिए नहीं है, मुझे चेकिंग के लिए है कि उन्होंने मुझसे अगर बात नहीं की. कितने सारे रीजंस हो सकते हैं. देखा नहीं, देखकर रजिस्टर नहीं हुआ, मूड ठीक नहीं था, या खुद किसी बात की वजह से, जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं इतने बड़े व्यक्ति से जाके बात करूं, इसलिए बात नहीं की. रीजंस कितने सारे हो सकते हैं. या हर्ट है मुझसे, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ऊंचे हैं, मुझसे बात करना उनके लिए जरूरी नहीं. रीजंस तो कितने सारे हो सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू ऑल दैट. फॉर मी, व्हाट डू आई वॉन्ट टू डू? मैं चाहती हूं, मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं प्यार से बात करूं. एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी दिस नाउ. अगर उन्होंने बात नहीं की या कुछ भी, किस तरह से बात की, अगर हम उनको कॉपी नहीं करें, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू चेंज एनी रिलेशनशिप टूडे. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू बी हैप्पी, टू रेडिएट हैप्पीनेस एंड टू चेंज एनी रिलेशनशिप. डोंट कॉपी, बिकम दैट व्हाट इज नेचुरल एंड वेट फॉर देम टू कॉपी यू, क्योंकि वो कॉपी करेंगे.
1: व्हाट इज नेचुरल सिस्टर?
0: व्हाट इज नेचुरल? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे. लेट्स से वो इन लॉज को अच्छा नहीं लगा कि बहू ने आके मॉर्निंग में विश किया, तो उनके लिए राइट की डेफिनेशन क्या थी? उनके लिए राइट की डेफिनेशन ये थी कि वो सुबह उठकर आए, गुड मॉर्निंग बोले, इवन अ सिंपल थिंग लाइक दैट. तो क्या चाहिए? चाहिए कि वो आके प्यार से गुड मॉर्निंग बोले. नहीं बोला, उसने नहीं बोला, हम बोल सकते थे. क्योंकि अगर हम बोल देते तो बोलकर हमें अच्छा लगता, इंस्टेड ऑफ सिटिंग लाइक दिस होल्डिंग इट. विश भी नहीं करते, ये ऐसे है वैसे है.
1: लोगों के त्योहार खराब हो जाते हैं, न्यू ईयर्स खराब हो जाते हैं. वेट कर रहे हैं कि अभी तक फोन नहीं आया. इनका मुझे, मैं तो बड़ा हूँ घर का ही बड़ा हूँ. एक बार मैं गोल्फ खेल रहा था तो मेरे रिश्ते में किसी का फोन नहीं आया जिसका एक्सपेक्टेड था. तो गोल्फ खेलते खेलते मैंने बोला, यार इन लोग कैसे हैं, बर्थडे पे भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, क्या है, कैसा रिश्ता है? तो मैंने फोन उठा के किया, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर. खेलते खेलते बीच में गैप था. ओ, मैं आपको करने ही वाली थी, मैं ये भी था वो भी था. एक बार हुआ, दूसरी बार फिर किया, दूसरी उसमें अभी हालत होगी, वो सीख गए कि वो खुद करते हैं
0: कॉपी. दिस इज इट. यही तो करना है सिर्फ. जो आप सी, एक है उन्होंने आपको विश नहीं किया, ठीक है. सो यू आर एक्सपेक्टिंग, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो विश करेंगे. उन्होंने नहीं किया तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हर्ट, गुस्सा भी. अब जितनी देर हम उसमें हैं, हमारी भी तो स्थिति अच्छी नहीं है. हम चाहते थे कि हम प्यार से बात कर लें, नहीं हुआ. अब हमारे पास दो चॉइसेस है, गुस्से में रहे, हर्ट क्रिएट करें पता नहीं कितनी देर या कितने दिन, या उनकी ना कॉपी करें, लेकिन जो हम चाहते थे कि वो करें वो हम कर दें. और हम करेंगे जब, तो 99% तो सही, वो कॉपी करेंगे. वो कॉपी करेंगे
1: तो हुआ है ना?
0: ये कॉपी करेंगे, ये सबके साथ होता है. सिर्फ अभी हम इसको रूल को एवरी टाइम विद एवरीबडी अप्लाई कर दें. जस्ट कीप दिस फिक्स्ड हियर. सारा दिन चलते मिलते, छोटी छोटी बातों में या बहुत बड़ी बातों में कॉपी नहीं करेंगे. उन्होंने ठीक से बात नहीं की, उन्होंने जोर से चिल्ला दिया, ओके. उन्होंने झूठ बोला, ओके. उन्होंने ये किया, ओके. बट व्हाट डू आई हैव टू डू? नॉट कॉपी.
1: आई हैव टू बी द ओरिजिनल.
0: द ओरिजिनल एंड व्हाट? माय ट्रू पर्सनालिटी. वो ट्रू पर्सनालिटी क्या है? आई वॉन्ट के मेरा रिश्ता उनके साथ अच्छा हो जाए. यू नो एवरीबडी सेइंग लाइक दिस, आई वॉन्ट के ये रिश्ता.
1: अपना इंडिविजुअलिटी, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य भी बोल सकते हैं ना.
0: इट्स माय,
1: जैसे वो कहानी आती है किस पानी में वो ब्राह्मण नहा रहा था, तो बार बार वो क्या कहते हैं उसको,
0: बिच्छू
1: बार बार वो पानी से उसको वो किनारे रख रहा था, वो बार बार
0: डंक मार रहा था,
1: डंक मार रहा था उसको.

0: और बेटर, उसका आप रिस्पॉन्ड करेंगे धीरे धीरे। अगर कॉन्फ्लिक्ट था भी, कॉन्फ्लिक्ट था भी, वो कौन से डायरेक्शन में अब जाना शुरू कर जाएंगे, रिजॉल्व होने के, जहां ऊपर ऊपर से ठीक होने लग गया तो धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते अंदर की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर रुक गए, हाँ आउट से इन ऑल्सो, व्हाई नॉट।
1: फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ रहा था 74-75 की बात है, तो डांस क्लास में मेरा मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल बैठा बैठा बैठा, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करूंगा, टीचर आने दो। तो पहले मैं उदास था बहुत, फिर मैंने क्या कि जबरदस्ती के स्टेप्स किए, तो आउटसाइड से जब बॉडी को हिलाते हिलाते हिलाते अपने आप मन ठीक हो गया।
0: बिल्कुल, आई रेड समवेयर इन द न्यूज़पेपर द अदर डे कि आपका मूड बहुत उदास है, अगर आपका मन बहुत परेशान है, सिर्फ एक स्माइल कीजिए। अब हम नॉर्मली सीखते हैं क्योंकि इनसाइड आउट है ना, डीपर लेवल पे, कि मन उदास है तो क्या स्माइल करेंगे, स्माइल करने का मन भी नहीं करता है उस टाइम, और वो स्माइल कितनी आर्टिफिशियल है, क्या फायदा है ऐसी स्माइल का, झूठा। अब उसमें लिखा था बहुत ब्यूटीफुल कि नहीं भी मन है, रो रहे हो ना अगर अंदर से, तो भी स्माइल कीजिए। एंड इट्स सेड वेरी ब्यूटीफुली, द एक्ट ऑफ स्माइलिंग, द एक्ट ऑफ स्माइलिंग ट्रिगर्स केमिकल्स इन द बॉडी विच विल फाइनली चेंज योर माइंड।
1: ब्यूटीफुल, आईने में देख के करना चाहिए
0: दिस इज, क्योंकि एटलीस्ट आप एक अलग डायरेक्शन में, चाहे बेमन से ही, जो हमने पहले भी देखा था कि गुस्सा अंदर अभी भी आ रहा है, अगर बीइंग लेवल पे, उसको डूइंग लेवल पर नहीं लेकर आना है, अंदर है बाहर नहीं लेकर आना है, बाहर को डिफरेंट कर दो। तो इनसाइड आउट नहीं भी चेंज अभी ला पा रहे हैं, आउटसाइड भी अगर चेंज ले आए तो वो आउटसाइड भी इनसाइड को धीरे धीरे, लेकिन वो अटेंशन फिर हम रखेंगे, ऐसे नहीं हमारे जीवन बीत जाए कि हम आउटसाइड बहुत मीठे हैं और अंदर तो, बट द प्रोसेस बिगिंस, एक यात्रा एक अलग डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो एनर्जी को चेंज कर देगी। तो ये हमें, इसलिए ये जो लाइन आपने पढ़ी, इफ समवन हैज हर्ट यू, अंडरस्टैंड देम, एंड मैच्योरिटी मीन्स डोंट हर्ट देम बैक, दिस इज परफेक्ट मैच्योरिटी। ये अब हम सारा दिन कर सकते हैं, एनर्जी, बिकॉज जो हम सोचते हैं फील करते हैं वो एनर्जी है। एनर्जी जब हमारे पास आती है किसी से भी, आप जो मेरे लिए सोचेंगे वो एनर्जी है जो मेरे पास आती है, कोई भी एनर्जी के साथ तीन चीजें हम कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट इट, अब्सॉर्ब इट और ट्रांसफॉर्म इट।
1: थोड़ा सा समझाएंगे,
0: कोई भी एनर्जी, इवन लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, कोई भी एनर्जी के साथ हम तीन चीजें कर सकते हैं,
1: रिफ्लेक्टेड,
0: अब्सॉर्ब इट, ट्रांसफॉर्म इट।
1: ट्रांसफॉर्म
0: मतलब आपने जो मुझे भेजा, आई रिफ्लेक्टेड बैक,
1: सेम।
0: आपने गुस्से से बोला, मैंने भी गुस्से से बोला, आपने गलती की, मैंने भी गलती की, इजी, रिफ्लेक्टेड बैक। सेकेंड, अब्सॉर्ब इट, मतलब आपने किया, मैंने वापस नहीं किया सेम, लेकिन अंदर
1: पी गया,
0: लेकिन अब्सॉर्ब किया, मतलब कंज्यूम कर दिया उस एनर्जी को। थर्ड, ट्रांसफॉर्म इट, आपने किया, उसको बदल कर आपके पास वापस भेज दिया। ये बदलना, जैसे बच्चा रोता है, बच्चा गलती करता है, बच्चा मस्ती करता है, मदर सेम नहीं करने लग जाती उसके साथ, मतलब लेती है लेकिन उसको चेंज करके उसको प्यार ही करती है उसके बाद। हम ये सब के साथ कर सकते हैं।
1: मदर क्या लेती है?
0: एक बच्चा, छोटा बच्चा है,
1: हाँ?
0: वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गलती भी कर रहा है, छोटा है जब, मदर क्या करते हैं उसकी एनर्जी को, वो थोड़ी उसके साथ रोने लगती है, वो जोर से चिल्लाता है तो वो उससे भी जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, वो तंग कर रहा है तो वो भी तंग करना शुरू कर देती है, नो। या वो उसकी गलती को, तंग को, रोने को देखकर वो खुद उदास हो जाती है।
1: आ रहे, दो मिनट बस,
0: और आके फिर क्या करूंगे,
1: आप ही के लिए दूध गर्म कर रही थी, आप ही के लिए कर रही थी,
0: और फिर उसके बाद आकर क्या देगी,
1: प्यार देगी, खाना के लिए।
0: ट्रांसफॉर्म एनर्जी, ना रिफ्लेक्ट किया, ना अब्सॉर्ब किया, एनर्जी को लिया, समझा और ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये हम सबको आता है करना, ये हम सबको आता है। इट्स जस्ट दैट जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमारी ईगोज जब ब्लॉक

0: करती है हमारी एनर्जी को, तो हम जहाँ फियर है, जहाँ हम नहीं रिएक्ट कर सकते, जहाँ पोजीशन का फियर है, रिश्ते का फियर है, हम अब्सॉर्ब कर जाते हैं। जहाँ फियर नहीं है वहां तो हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो आपने दिया वो आपको वापस। लेकिन जहाँ प्यार है वहां हमें उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, एंड वी कैन डू दैट विद एवरीबॉडी। हम उसको हर एक के साथ कर सकते हैं।
1: मेरी गुरु हमेशा कहती थी, बेटा बदला नहीं लेना, बदल जाना। आज समझ में आया मीनिंग?
0: बदल जाना, बदल कर दिखाना। गाना है इतना सुंदर, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। और अगर आप बदल कर दिखाएंगे, आप जग को बदल देंगे, बिकॉज आपके परिवर्तन को देख अनेक परिवर्तन होंगे। बिकॉज सी, इट्स अ वाइब्रेशन दैट रेडिएट्स। If I am not in a good mood, I don't talk properly to you, I use wrong language, wrong energy, everything wrong. But आप उसको reflect नहीं करते, आप same तरह से मुझे नहीं करते, आप उसको absorb भी नहीं करते, which means आप अपनी स्थिति को अच्छा रखते हैं। And फिर आप मुझे समझ कर, जो इससे कहा कि understanding them, आप transform करके वो energy को वापस भेजते हैं। तो आप प्रोटेक्ट हो गए पहले, योर हील्ड, आपकी एनर्जी फील्ड एकदम स्ट्रांग रही। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसने मेरे लिए कितना कमाल किया। आपने वो जो एनर्जी वापस भेजी, मैं उस एनर्जी को यूज करूंगी अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दिस इज व्हेन आई विल नाउ स्टार्ट कॉपिंग यू, मीन्स आपकी एनर्जी ने मेरी हीलिंग करने शुरू की। जस्ट इमेजिन अ सीन, इसको विजुअलाइज करने की जरूरत है। अगर हम सब एक दूसरे की कॉपी करने की बजाय, स्पेशली नेगेटिव में, अगर हम ये प्यार की एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, और छोटी चीजों में, अभी इसको बड़ी चीजों में नहीं करना, उसने गलत बोला मैं फिर भी अच्छा बोलूं, उसने बात ही नहीं की मैं फिर भी करूं, उन्होंने फोन नहीं किया मैं फिर भी करूं, उन्होंने विश नहीं किया मैं फिर भी करूं, ये छोटी चीजों में भी अगर हम करें तो वाइब्रेशन कैसे फैल जाएगी सारे। वी आर ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग from conflict to harmony. Is it just so simple? And जहां हम ये नेगेटिव चीजों में कॉपी करते हैं, उसने ऐसा किया ना तो मैं भी ऐसा करूं, उसने ऐसा किया, we are shifting from harmony to conflict. Harmony थी, सब अच्छा था, हम conflict की तरफ चले जाते हैं। दादी जी जो हमारे ब्रह्मकुमारीज के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो बहुत सुंदर बात हमें सिखाती है, कहती harmony means harmony. इट्स ओके, आपने ये भेजा, मैंने हार मानी, मतलब मैंने सेम चीज नहीं भेजनी आपको वापस, मेरे पास नहीं है आपके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की एनर्जी। मैं हार मानी तो हार्मनी हो गई। ये छोटी चीज आज हम प्रैक्टिस करते हैं सारा दिन।
1: हार वाली बात से एक ऐसे इमेजिनेशन मैंने किया कि जब आप किसी को हार पहनाते तो वो झुक जाता है।
0: सो स्वीट,
1: आपने हार पहन भी लिया।
0: एब्सोल्युटली। और फिर क्या होगा, जब आप झुकेंगे, आपका झुकना दूसरे को अंदर से झुका देता है। एक लॉ है, आपकी ह्यूमिलिटी ना, अगर कोई ऐसे अकड़ के खड़ा है, हम भी अकड़ जाएं, तो वो और अकड़ जाएगा।
1: ये बहुत सुंदर डायलॉग था हमारे एक मेरे फेवरेट एक्टर थे देव साहब, उनकी फिल्म में मुझे हमेशा बचपन से याद है ये लाइन। उन्होंने कहते हैं कि मैम साहब ये आप हार ले लीजिए, आपके गले में ये हार नहीं जीत लगेगी।
0: दिस इज इट,
1: देखो
0: दिस इज इट। इन छोटी छोटी चीजों को जो हम सारा दिन हमें मालूम है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वाह वाह भी करते हैं उसकी, लेकिन उसको जीवन में फिर ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं। उस टाइम ऐसे हो जाते हैं, उन्होंने किया तो फिर मैं क्यों करूं। छोटा सा, थोड़ा सा झुकेंगे वो कई गुणा झुक जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो झुकाने के लिए नहीं है किसी को, वो मेरी खुशी के लिए है, उनको खुशी भेजने के लिए है, एंड रिश्ते में हार्मनी, प्यार कॉन्स्टेंट के लिए।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर। जब जागे तब सवेरा, तो आज समझ में आए तो आज ही शुरू कर ले।
0: डेफिनेटली।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। नमस्कार।
2: परफेक्ट मैच्योरिटी इज व्हेन अ पर्सन हर्ट्स यू एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एंड डोंट हर्ट देम बैक। When we respond to people in the same manner as they have behaved with us, we are copying them. When we keep copying each other,

0: कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती,
0: मगरबत्ती,
1: अगरबत्ती,
0: मगरबत्ती,
1: अगरबत्ती,
0: मगरबत्ती।

VIP. I better be headed by the

0: अरे बाबा चाल देखो, घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी, इस पगर से बट पर वोट मतलब क्या। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी, हिंदी ले आइए आसान की ये भी।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें कटाई रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा।

Yeah.

ए समल सुर पकड़ के धीरे से जाना, धीरे से जाना खटियन।

0: अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम,
1: अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम।
0: आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम।